107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन रविवार, ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 7 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

श्री राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, एक नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि सुबह 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आप सबके समक्ष उपस्थित हूं भक्ति और आध्यात्मिकता से सुगंधित आपका प्रिय कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। और सदैव की तरह आध्यात्मिक यात्रा इसकी शुरुआत करते हैं प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना के साथ।

जो प्रत्यक्ष हैं, जो साक्षात हैं, जिनकी एक रश्मि मात्र से चराचर जगत जागृत हो उठता है, उन भगवान भास्कर को हमारा पहला अर्घ। हे भुवन भास्कर, आप केवल अंधकार का नाश नहीं करते, आप हमारी बुद्धि, हमारे विचारों और हमारी आत्मा को प्रदीप्त करते हैं। आज की इस नई सुबह को अपनी दिव्य आभा से अलौकित करें और हमें कर्म पथ पर बढ़ने की शक्ति दें। आइए श्रोताओं, इसी प्रार्थना के साथ भगवान सूर्य को नमन करें।

श्रोताओं, जैसे एक छोटा सा फूल पूरे उपवन को महका देता है, वैसे ही सुबह की एक छोटी सी प्रार्थना आपके पूरे दिन को महका देती है। भक्ति की इसी सुगंध को अपने भीतर महसूस कीजिए और आइए प्रभु भजन में एक बार और रम जाते हैं।

श्रोताओ, 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। शांत रूप में जो कैलाशपति हैं, महाविनाश के समय वही तंत्र मंत्र के अधिपति महाकाल हैं, जिनकी जटाओं से गंगा की धारा बहती है और जब तीसरी नेत्र खुलती है तो ब्रह्मांड की हर बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। कंठ में हलाहल विष, हाथ में त्रिशूल और डमरू का वो प्रचंड नाद जिससे काल भी थर थर कांपता है। जो आदि हैं, अनंत हैं और उस पूरी सृष्टि के एकमात्र नियंत्रण हैं, उन कालों के काल महाकाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आइए उनके भजन करें।

श्रोताओ, भक्ति वो डोर है जो स्वयं को शून्य कर उस अनंत एक से जोड़ देती है। आइए उस अनंत से जुड़ने का एक और प्रयास करें और खो जाएं इस मधुर भजन में।

शब्द जब संगीत बन जाते हैं तो वो सीधे ईश्वर के चरणों में पहुंच जाते हैं। आज हमारे पास चंदन और अक्षत भले ही ना हो, पर हमारे पास श्रद्धा के ये पुष्प और सुरों की ये अंजलि जरूर थी, और इसी इस यात्रा को अंतिम विदाई इस खूबसूरत से भजन के साथ करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु भजन में लिप्त हों और इस यात्रा को अब समाप्त करते हैं इस भजन के।

हेलो एंड सलाम नमस्ते कानपुर। सुबह के बज चुके हैं 7, तारीख है 7 जून सन 2026 एंड विशिंग यू ऑल अ प्लेजेंट संडे मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज गौरव और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में।

तो बिस्तर छोड़िए और मुस्कुराइए जनाब, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग इन आवर वेरी ओन कानपुर। तो चलिए दोस्तों, आपकी मॉर्निंग को परफेक्ट और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए थोड़ी गपशप और बेहतरीन गानों के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज इस ट्रैक के साथ।

वरुण जैन की मखमली आवाज में ये ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे फिल्म तेरी बातों में, ऐसा उलझा जिया से, जिसका म्यूजिक कंपोज किया था सचिन जिगर ने और लिरिक्स थे इंद्रनील के। तो चलिए दोस्तों, इस रिफ्रेशिंग ट्रैक के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज पूरे दिन हम किन किन प्रोग्राम्स के साथ आपको करते रहेंगे एंटरटेन। तो अब से थोड़ी देर बाद यानी 8:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। और आपकी एंटरटेनमेंट यात्रा जारी रहेगी प्रोग्राम रसभार के साथ, जिसका टाइम होगा रोज की तरह सुबह 9 बजे का, और इसके तुरंत बाद 9:45 पर विविधा में एंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम पॉप टाइम। और प्रोग्राम हमनवा के साथ सजेगी बातों मुलाकातों की महफिल सुबह 11 बजे। एंटरटेनिंग म्यूजिक के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम म्यूजिक आर के साथ दोपहर 3 बजे। और आपका चहेता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर का वक्त होगा शाम 4 बजे। सो फ्रेंड्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस टू फेवरेट म्यूजिक चैनल 102.2 FM रेनबो कानपुर, जहां आपके एंटरटेनमेंट का है पूरा इंतजाम।

एक था टाइगर सुपरहिट मूवी का ये सुपरहिट ट्रैक आप सुन रहे थे के और पलक मुच्छल की आवाज़ों में, जिसको लिखा था अनविद दत्त ने और म्यूजिक कंपोज किया था सोहेल सेन ने। 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, जहां हम सब एक और ब्रांड न्यू दिन का स्वागत कर चुके हैं। आसमान में सूरज की किरण हम तक एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर पहुँच चुकी है। और दोस्तों, पद्मश्री और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित एक प्योर हार्ट व्यक्तित्व वाली मदर टेरेसा का कहना है कि कल बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है, यानी कि हमारे पास केवल आज है। इसलिए अपनी लाइफ में आप जो भी व्यस्त करना चाहते हैं उसकी शुरुआत आज से कीजिए। और दोस्तों, यही था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 102.2 एफएम रेनबो कानपुर।

कर हर मैदान फतेह। दोस्तों ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। विक्रम मोन्टेरोस का म्यूजिक था और शिखर अस्तित्व के बोलते। और दोस्तों प्रोग्राम में अब टाइम है थोड़ा सा अंगूठा चलाने का, यानी कि सोशल मीडिया पर क्या ब्लिंक कर रहा है ये जानने का। तो दोस्तों सबसे पहले तो बड़ा ही प्यारा पोस्ट सामने आ रहा है जो गुलजार साहब ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आपके संस्कार में आपके माँ बाप झलकते हैं, कोशिश कीजिए कि वे सुंदर दिखें। बहुत ही खूबसूरत बात कही है उन्होंने। और दूसरी तरफ चेस खिलाड़ी प्रज्ञा नंदा के नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई देते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि प्रज्ञा नंदा को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय मील का पत्थर है जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। और साथ ही साथ इरफान पठान और कई क्रिकेटर स्टार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडियन क्रिकेट टीम के नए कैप्टन श्रेयस अय्यर को अपने कैप्टन बनने और बेबी बॉस यानी कि वैभव ऑफ सूर्यवंशी के आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया में अपने सिलेक्शन होने की खूब बधाइयां मिल रही हैं। और फिलहाल दोस्तों प्रोग्राम में वक्त है आपको एक और गाना सुनाने का।

आतिफ असलम और तुलसी कुमार की मेलोडियस आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म सत्यमेव जयते से। रोचक कोहली का म्यूजिक था और लिरिक्स थे कुमार के। इतिहास का पन्ना पलटने का। तो भाई आज की तारीख है 7 जून और आज का दिन इंडिया के इतिहास में बेहद खास है। साल 1893 में आज ही के दिन साउथ अफ्रीका के पीट्समैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को सिर्फ इसलिए ट्रेन से उतरना पड़ा क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद वो आश्वेत थे। और इस घटना ने बापू के अंदर सविनय अवज्ञा की वो आग सुलगाई जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और दोस्तों ईयर 1979 में आज ही के दिन भारतीय पृथ्वी संसाधन मौसम विज्ञान उपग्रह भास्कर 1 का प्रक्षेपण किया गया था। और दोस्तों आज ही के दिन साल 1975 में क्रिकेट के फर्स्ट वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया था और भले ही हम वो मैच हार गए थे लेकिन वो एक शुरुआत थी जिसने आज इंडिया को क्रिकेट का चैंपियन बना दिया। तो मित्रों चलिए इतिहास से निकल कर वापस आते हैं अपने दौर में और सुनते हैं ये गाना।

के और शिल्पा राव की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे, फिल्म बचना ए हसीनों से विशाल शेखर म्यूजिक था और लिरिक्स थे अनविद दत्त गुप्तन के। और दोस्तों प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, हम यू गए और यू वापस आए। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

सेगमेंट में अपने शहर के सेगमेंट अपने स्टूडेंट मित्रों को बता दें कि CSJMU यानी छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस पर्यावरण विज्ञान विषय में PhD प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इस पहल के जरिए पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा भी मिलेगा। और इस अपडेट्स के बाद आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गाना।

ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर में, और आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज एक गौरव। तो चलिए दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं सिटी अपडेट्स के साथ, और अपने कानपुर के लिए फिलहाल है आज प्राउड मोमेंट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए एक गुड न्यूज़ है। राज्य का कुल एक्सपोर्ट इतिहास में पहली बार 2,00,000 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। इस बंपर कामयाबी के साथ ही उत्तर प्रदेश अब देश का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राज्य बन गया है, और इस ऐतिहासिक कामयाबी में हमारे कानपुर नगर ने भी अपनी धाक बरकरार रखी है। कानपुर लेदर प्रोडक्ट्स, इंजीनियर गुड्स और टेक्सटाइल के दम पर राज्य के टॉप 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर डिस्ट्रिक्ट में शामिल रहा। और दोस्तों

फिल्म रांझना का ये ट्रैक आप सुन रहे थे जावेद अली और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में। इसका म्यूजिक कंपोज किया था यार रहमान ने और इरशाद कामिल के बोलते। दोस्तों प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना सुनिए। कानपुर देहात एवं उन्नाव जनपद के उपभोक्ताओं की डाक सेवा डाक विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु अधीक्षक डाकघर कानपुर प्रखंड के कार्यालय कक्ष में, जिसका पता है कानपुर जीपीओ भवन बड़ा चौराहा, दिनांक 15 जून 2026 को समय 11 बजे डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं के पंजीकरण वस्तुओं, धनादेशों, बीमाकृत वस्तुओं, बचत बैंक एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अपनी समस्याओं शिकायतों के निदान हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित अधीक्षक डाकघर कानपुर प्रखंड कानपुर के कार्यालय में दिनांक 10 जून 2026 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि तक परिवाद प्राप्त न होने पर परिवाद समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

और लीजिए पेश खिदमत है रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का ये गाना जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने, सलीम सुलेमान का म्यूजिक है और जयदीप सैनी के बोल हैं।

सो फ्रेंड्स, इस ट्रैक के बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है खास दुनिया में। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि दोस्ती, रिश्ते, कम्युनिटी बनाने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है और कैफे रेस्टोरेंट नहीं बल्कि फिटनेस सेंटर बन रहे हैं नई जनरेशन के सोशल क्लब। जी हाँ दोस्तों, अब बड़े शहरों में दोस्ती और सोशल लाइफ की परिभाषा बदल रही है। अमेरिका और यूरोप के कई महानगरों में जिम और फिटनेस स्टूडियो केवल शरीर को फिट रखने की जगह नहीं है बल्कि रोजमर्रा की सोशल लाइफ का हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे शहरों में लोग पहले कैफे, रेस्टोरेंट या पब में मिलते थे, बट अब ग्रुप एक्सरसाइज सेशन, रनिंग ग्रुप और अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज में मिलने लगे हैं। कुछ सालों में डिजिटल लाइफ बढ़ने से लोगों के आमने सामने मिलने का जो ट्रेंड था वो तो जैसे खत्म ही हो गया था, बट ऐसे में अब फिटनेस स्पेस उनके लिए आसान विकल्प बन गया है जहां सोशल कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। और हम यहां आपको कनेक्ट कर रहे हैं अगले गाने से।

अजब प्रेम की गजब कहानी, ये फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आतिफ असलम और अलीशा छिनोई की आवाजों में। म्यूजिक कंपोज किया था प्रीतम ने और लिरिक्स थे इरशाद कामिल के।

और फिलहाल दोस्तों प्रोग्राम में वक्त हो चला है मौसम का हाल जान लेने का, जो थोड़ा नरम और थोड़ा गर्म बना हुआ था, मगर बीते शुक्रवार रात से मौसम में गर्मी फिर बढ़ गई। कल यानी शनिवार की सुबह से तेज धूप, लू और भी बढ़ गई और उमस ने शहरवासियों को दिन भर बेहाल रखा। मगर अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने रविवार को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण स्थानीय स्तर पर हल्की बारिश की पूरी संभावना है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री सेल्सियस जाने की पॉसिबिलिटी है। मगर दोस्तों याद रखिएगा, मौसम चाहे कैसा भी हो, 102.2 FM रेनबो कानपुर पर हम आपका मौसम सुहाना बनाए रखेंगे।

और आई एम श्योर दोस्तों, ये धुन सुनकर ना आपको बारिश का एहसास जरूर होने लगा होगा। क्योंकि बारिश ना सही, बारिश का एहसास ही सही। ये ट्रैक आप सुन रहे हैं फिल्म बागी से मीट ब्रॉस, और मोहन ठाकुर की आवाज है, मीट ब्रॉस का संगीत है और लिरिक्स है कुमार के।

और दोस्तों प्रोग्राम के एंड में हम आ पहुंचे हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स तक, जहां T20 इंडियन क्रिकेट टीम को मिल गया है नया कैप्टन। जी हां दोस्तों, IPL में लगातार अटैकिंग मोड में बैटिंग और इम्प्रेसिव कैप्टेंसी से लाइमलाइट में रहे श्रेयस अय्यर को इंडियन T20 टीम की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा IPL में प्रभावित करने वाले तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चुना गया। वहीं IPL के स्टार वैभव सूर्यवंशी को दोनों T20 सीरीज के साथ एशियाई खेलों की टीम में भी जगह मिली है। वहीं दूसरी ओर न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज अफगानी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी दिखे। कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान KL राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 368 रनों पर पहुंचा दिया।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप एंजॉय कर रहे थे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, आपके रेडियो दोस्त और शो होस्ट आज गौरव के साथ।

फिलहाल जहां वक्त है आपसे विदा लेने का, आप इंजॉय करते हैं फिल्म बर्फी का ये गाना जिसे गाया है पपोन ने, और इस शो से अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72

0: स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में

0: भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ता की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं।

प्रोग्राम की ये पहली पेशकश आप सुन रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी से किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, लिरिक्स हैं

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म अभिनेत्री से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और लिरिक्स हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।
1: सजना ओ सजना।

और लीजिए अब सुनिए राम बलराम फिल्म का ये गाना जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल हैं।

अमित कुमार, आशा भोसले, शैलेन सिंह और आरती मुखर्जी की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म परवरिश से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और लिरिक्स थे

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग कानपुर 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर संडे की इस खूबसूरत सुबह के साथ मैं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आचे गौरव आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं प्रोग्राम रस बहार में। दोस्तों संडे की सुबह जब सिर रख कर थोड़ी देर और लेटे रहें ऐसा सोचते हैं जब क्योंकि हम पुरानी यादों में खोए रहते हैं और आज का दिन तो बनाई यादों के नाम है क्योंकि दोस्तों आज यानी 7 जून को पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है वर्ल्ड वीसीआर प्लेयर डे। अब हमारी सेलिब्रेशन यानी कि जनरेशन के जो भी 90s के लोग हैं ना उनके चेहरे पर ये नाम सुनते ही एक बड़ी सी स्माइल आ गई होगी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं 90s के एरा के इस धमाकेदार ट्रैक के साथ।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर ये बेहतरीन म्यूजिक आप एंजॉय कर रहे हैं, बप्पी लहरी का कंपोज किया हुआ फिल्म थानेदार से, और ये गाना आप सुनेंगे बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इस फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं इंदिवर ने।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर प्रोग्राम रसबहार में आप सुन रहे हैं वर्ल्ड VCR प्लेयर डे स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, VCR का नाम सुनते ही ना वो ब्लैक कलर का बॉक्स और वो भारी सी कैसेट और वो रेंट पर आई हुई फिल्मों की कहानियां याद आ जाती हैं।

आज नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के जमाने में जहां एक क्लिक पर आपकी फेवरेट मूवी स्टार्ट हो जाती है, बट आई एम श्योर कि वीसीआर का वो जमाना आपको याद होगा। और जब घर में कोई शादी होती थी ना, तो वीसीआर आता था, पूरे मोहल्ले को इन्विटेशन दिया जाता था, ड्राइंग रूम में दरी बिछती थी और एक छोटे से टीवी स्क्रीन के आगे 40-50 लोगों की वो पूरी दुनिया बैठ जाया करती थी, जो आज खुद में सिमट कर रह गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ा टास्क पता है क्या होता था? दुकान से जब वीसीआर रेंट पर लाते थे ना, तो दुकानदार कहता था कि भाई साहब कैसेट रिवाइंड करके देना, नहीं तो 5 रुपए पेनाल्टी लगेगी। तो दोस्तों, आज तकनीक बदल गई है, लेकिन वो इंतजार का मजा ना बदला है और ना बदलेगा, जो आज डाउनलोडिंग में बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, इसी प्यार और इंतजार के नाम करते हैं अगला सुपर हिट गाना, और बने रहिए मेरे यानी आज गौरव के साथ।

0: दोस्तों, अपने जमाने के सुपर हिट सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में आप ये गाना सुन रहे थे फिल्म साजन से। नदीम श्रवण का संगीत था और लिरिक्स थे समीर के। और दोस्तों, प्रोग्राम रसबहार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

दोस्तों प्रोग्राम रजबहार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एंड शो होस्ट आचार्य गौरव और आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर। तो दोस्तों प्रोग्राम रसबहार में आज हम बात कर रहे हैं फ्लैशबैक में वीसीआर प्लेयर की दुनिया की जो अब सिर्फ यादें बन गई है। अच्छा दोस्तों वीसीआर प्लेयर के दौर की एक खास बात याद है आपको, जब फिल्म देखते देखते अचानक स्क्रीन पर झिलमिलाहट आने लगती थी और भूतिया लाइनें हिलने लगती थी, तब रिमोट पर एक बटन हुआ करता था जिसको कहते थे मैजिकल बटन, जिसका नाम था ट्रैकिंग। उसे दबाते ही स्क्रीन पर तब तक जो है साफ नहीं होती थी, तब तक आप सांसें रोक कर बैठते थे और जैसे ही स्क्रीन साफ होती थी तब पूरा कमरा राहत की सांस लेता था और खुश हो जाता था। तो चलिए यादों के इस धुंधले और खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और एंटरटेनिंग सॉन्ग के साथ आपको ये गाना सुनाते हैं।

आपने ट्यून इन किया है 102.2 एफएम रेनबो कानपुर और प्रोग्राम सुन रहे हैं रस बहार, जहां आज हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वीसीआर प्लेयर डे, जो यादों की पूरी दुनिया को ले आया है। तो आज का ये दिन जिसने टीवी देखने और यादों को सहेजने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। अपने टाइम के एक इन्वेंटर वीसीआर को पहली बार सन 1956 में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एम्पैक्स

ने जारी किया था। और सन 1980 और 1990 के दशक में ये एक हाई डिमांड इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन गया था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। फिलहाल आप पसंद कीजिए ये गाना।

दोस्तों 90s के गानों का कारवां और यादों का सफर इतनी जल्दी खत्म होने को आया कि पता ही नहीं चला। आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर। और दोस्तों वक्त के साथ VCR की जगह DVD ने ले ली, फिर पेन ड्राइव आया और अब सब कुछ हमारे मोबाइल स्क्रीन पर सिमट गया है। लेकिन VCR ने हमें जो अपनों के साथ बैठकर मनचाही फिल्म देखने की खुशी दी थी ना, वो अनमोल है। जैसे कि पहला प्यार।

तो दोस्तों मैं आपका रेडियो दोस्त एंड शो होस्ट आज गौरव रस बहार से विदा लेता हूं, लेकिन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर पर एंटरटेनमेंट रुकने वाला नहीं है। तो मुस्कुराते रहिए, संडे का मजा लेते रहिए और सुनते रहिए 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। मगर जाते जाते छोड़ जाता हूं आपको बेहद खूबसूरत गाने के साथ।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:15 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर
1: मेल मिलाप।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सभी का इस्तकबाल है प्रोग्राम पॉप टाइम में। और लीजिए, एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये पहला ट्रैक सोनू निगम की आवाज में।

0: दोस्तों, इस पॉप ट्रैक के साथ ही ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर। अगला ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की

नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत से 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मासिक सुख स्वास्थ्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मापन पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझ कर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा कल से 10 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार परीक्षा की तैयारियों का पुनराभ्यास किया गया। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे के स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी से सुरेंद्र राजेश्वरी की बातचीत।
6: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार स्वीकार कीजिए सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। हर किरदार कुछ सिखा जाता है, जिंदगी हर रोज नया मंच दिखाती है। अंदाजे बयां ही पहचान बन जाता है, वरना नाम तो हर किसी का होता है। किसी खास शख्सियत ने, मुझे लगता है कि ये शेर लिखे होंगे, और हमारा सौभाग्य है ऐसी ही एक सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री से सम्मानित श्रद्धेय अनिल रस्तोगी जी आज हमारे मेहमान हैं। अनिल जी, आकाशवाणी लखनऊ के तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार।
6: बड़ा सौभाग्य है आज का दिन, क्योंकि आर्ट, संस्कृति

0: विज्ञान सब कुछ अगर किसी एक व्यक्तित्व में समाते हैं तो नाम बनता है अनिल रस्तोगी। हमारे सुनने वालों को बताएं कि रस्तोगी जी, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो क्या है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई?
1: देखिए, मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मेरा जन्म लखनऊ में हुआ, मेरी सारी शिक्षा लखनऊ में हुई, मैंने जॉब भी लखनऊ में किया, और जॉब के साथ जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो मैंने थिएटर शुरू किया वो भी लखनऊ में शुरू किया। और लखनऊ से ही मैंने आकाशवाणी में कैजुअल आर्टिस्ट के तरह से ज्वाइन किया। 1975 में लखनऊ में ही जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो मैंने यहीं से दूरदर्शन शुरू किया, और 1986 में जब पहली फिल्म मैंने जो काम किया, ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा की, उनको एज डिबिटेंट इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, वो भी मैंने लखनऊ में की। तो मैं तो कहूंगा कि लखनऊ सब कुछ मेरे लिए रहा। मेरा परिवार एक बहुत ही आप कहिए एवरेज मिडिल क्लास परिवार था। मेरे परिवार में कपड़े का बिजनेस होता था, और मेरे पिताजी के भाइयों में 20-25 बच्चे थे, जिसमें इत्तेफाक से शिक्षा ज्यादा नहीं थी उस जमाने में, चलन बहुत होता था शिक्षा का। लेकिन मेरे बड़े भाई जो थे चंद्रकिशोर रस्तोगी, उनकी इच्छा थी कि मेरा भाई पढ़ लिख करके आगे बढ़े, तो मैं अपने परिवार से पहला, आप समझिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट था। तो उसके बाद फिर मैंने सरकारी जॉब CDRA मैंने जॉब किया, और यही चीज मेरी वाइफ के साथ भी थी है कि मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। मैं 18-19 साल का था, 16 साल की थी, वो भी हाई स्कूल पास थी। लेकिन आप ये समझिए, उस जमाने में तो बहुओं का पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बेटियों का पढ़ाना तक मुश्किल होता था,
0: मुश्किल होता,
1: लोग नहीं पढ़ाते थे। लेकिन मेरे ब्रदर ने, मेरे परिवार ने सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने हाई स्कूल से इंटरमीडिएट किया, फिर IT कॉलेज से BSc किया, फिर MA एंथ्रोपोलॉजी में किया, फिर PhD किया, और फिर उनारिशा निकेतन में उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इस्टेब्लिश किया, और 38 साल उन्होंने वहां पर पढ़ाया। तो इस तरीके से मेरा पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, और एक्टिंग का मुझे शौक हुआ 1961-62 में। तो मैंने तब पहला नाटक किया था, मुझे याद है उसका नाम था नूर जहां।
0: वाह।
1: और सुधांशु बोस जी उसके डायरेक्टर थे, सुराज बोस उनके भाई मेकअप करते थे, हालांकि बेसिकली वो बंगाली टीचर थे, लेकिन उन्होंने मेकअप किया था। फिर उसमें जो तारीफ मिली, वाहवाही मिली, तो मुझे लगा कि एक तो ये स्वांता सुखाए चीज होती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप कोई नया रोल करते हैं, और दूसरे एक पहचान मिलती है। तो ये शौक मेरा बढ़ता गया, और ये शौक फिर मेरा एक तरीके से नशा हो गया।
0: अनिल जी, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी रहे, और CDRA में उच्च पदों से आपने अवकाश प्राप्त किया।
1: जी, मैंने 41 साल मैंने CDRA में जॉब किया।
0: वाह वाह।
1: मैं वहाँ जूनियर रिसर्च फेलो होकर के गया था।
0: जी जी।
1: और मैं डायरेक्टर ग्रेड साइंटिस्ट और बायोकेमिस्ट्री विभाग का अध्यक्ष होकर के रिटायर हुआ 2003 में।
0: ये फिल्मी दुनिया, थिएटर, रेडियो, ये अचानक परिवर्तन हुआ या आपका पारिवारिक माहौल कुछ ऐसा था?
1: नहीं, माहौल हमारे कोई नहीं था, लेकिन हमारे एरिया में उस समय एक मदन मोहन हिंदू एसोसिएशन हुआ करती थी, उससे नाटक होते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो नाटक मैं अक्सर देखता था, और एक बाग मक्का में भी, क्योंकि उस समय रविंद्रालय वगैरह तो थे नहीं, या कोई रेगुलर थिएटर स्टेज रविंद्रालय 62 में बना है, लेकिन वहाँ अप्रोच कर पाना हम लोग के लिए मुश्किल था, महंगा भी था। तो हम लोग बाहरी नाटक करते थे, जैसे मैंने गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में नाटक किया, मैंने जो महानगर महापालिका का जो ऊपर त्रिलोकनाथ हॉल है, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां पर मैंने नाटक किए, मैंने DAV कॉलेज के मंच पे मैंने नाटक किए, यहाँ नाटक होते थे, जो आपका कैथीड्रल स्कूल है इसका ऑडिटोरियम है। पहला नाटक मैंने जो रविंद्रालय में किया था 1964 में था। तो मेरी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन जब मैंने किया तो मेरे घर वालों ने भी इसको प्रमोट किया। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैं CDRA गया, जैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते थे, आपने डबल कैरियर आपका जो है, पैरेलल कैरियर आपका कैसे चला, साइंस में भी और थिएटर में भी, तो उसकी वजह ये थी कि मुझे CDRA के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जब उन्होंने देखा मैं नाटक करता हूँ, तो मुझे लोग एक अलग ही नजर से देखते थे कि भाई इस बच्चे में कुछ और भी टैलेंट है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने कभी साइंस के साथ, मैंने उसे कोई कमी नहीं आने दी। जैसे बहुत से लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ जो उनका शौक होता है, तो शौक के साथ वो जॉब को अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहा। मैंने साइंस भी उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही तन्मयता के साथ लग करके की जितना मैंने थिएटर किया।
0: अनिल जी, आकाशवाणी, दूरदर्शन और फिल्मी दुनिया, सिने जगत तक आपने अपनी सेवाएं अभी भी आप दे रहे हैं। जब पहला ऑडिशन आपका आकाशवाणी में हुआ होगा उसका थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, कौन सा ये
1: जरूर देखिए, मैं तो सोच नहीं सकता था

0: आकाशवाणी को ऐसा मैं मानता था कि जैसे एक बड़ी मतलब फिल्म से भी बड़ी ग्लैमर की चीज मैं मानता था। और जब पहली मेरी मुलाकात जयदेव शर्मा कमल जी से हुई, मुझे याद है मैं शायद एमएससी का विद्यार्थी था या बीएससी का विद्यार्थी था, तो मैं अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पाया कि मैं कमल जी को देख रहा हूँ। ये ग्लैमर हुआ कहता था। अच्छा, फिल्म में तो जाने की कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। तो जब मेरे एक दोस्त थे एम एल बाला साहब, उनके साथ मैंने नाटक किया था जय सोमनाथ, बोले यार तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी, तुम रेडियो पे क्यों नहीं जाते? अरे मैंने कहा रेडियो में मैं? अरे नहीं भाई, मैं तो सोच भी नहीं सकता। बोले नहीं। तो वो मुझे लाए यहाँ, मुझे ऑडिशन दिलाया, इत्तेफाक से मैं पास हो गया। तो जो मैंने पहला नाटक किया था उसमें केल दुआ साहब यहाँ थे, एक दुआ कंपनी, एक स्पोर्ट्स की शॉप है
1: जी जी,
0: उसके मालिक थे, लेकिन वो वहाँ नैनीताल चले गए थे।
1: अच्छा।
0: तो जब भी वो नैनीताल से आते थे तो आकाशवाणी का सौभाग्य होता था उनकी रिकॉर्डिंग का। तो पहला नाटक मेरा केल दुआ साहब के साथ हुआ। और लल्लन भाई थे पी एन श्रीवास्तव साहब यहाँ आकाशवाणी के कलाकार, जिनके मैं बड़े नाटक सुनता था, बहुत मशहूर कलाकार थे। तो मैंने उनको अपना एक गुरु मन ही मन मान लिया था। तो मैंने जब पहला नाटक हुआ तो मैंने कहा गुरुजी मेरी आज पहली रिकॉर्डिंग है, आप भी सुनिएगा। बोले हाँ जरूर सुनूंगा। जब मैं रिकॉर्ड करके आया बाहर तो मैंने कहा गुरुजी गलती तो नहीं हुई? बोले अच्छा थिएटर बोले, अच्छा थिएटर बोले। क्योंकि बेसिकली मैं थिएटर उस समय मैं काफी कर चुका था, तो मुझे तो वही थिएटर की आदत थी। और रेडियो विधा ही बिल्कुल अलग है, जिसमें आप अपनी आवाज से ही पूरा सीन क्रिएट करते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन
1: जी, जी।
0: उन लोगों के साथ मुझे सीखने का मौका मिला। और आज भी जब मैं रेडियो नाटक करता हूँ तो मैं बता नहीं सकता मुझे क्या आनंद मिलता है।
1: अच्छा, जब किसी नाटक में या सिनेमा में फिल्मों में रेडियो में जब आप अपना किरदार निभाते हैं, आपको जो एक रोल दिया जाता है कि आपको ये करना है, उसको अपने अंदर समाहित करना कितना कठिन काम, आप कैसे करते हैं?
0: होता है जी कि जो कैरेक्टर आपको दिया जाता है, पहले आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो जो आपका कैरेक्टर है विस-अविस जिनके साथ आप और रोल कर रहे हैं उनसे आपकी क्या रिलेशनशिप,
1: जी जी जी,
0: आपका जो किरदार है वो किस स्तर का किरदार है, उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उसका सोशल स्टेटस है, क्या उसका एकेडमिक स्टेटस है, यू नो, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर आप कोशिश करते हैं। और बेसिकली मैं अपने को डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ, मैं अपने ढंग से करता हूँ, फिर डायरेक्टर से मैं पूछता हूँ कि भाई आप बताइए मुझे कैसे करना है। और अगर कहीं पे मैं डायरेक्टर से एग्री नहीं करता हूँ तो मैं अपना व्यू पॉइंट भी रखता हूँ, बट फाइनली जो प्रिवेल करता है वो डायरेक्टर ही प्रिवेल करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि डायरेक्टर का जो नजरिया होता है वो पूरे प्ले की टोटेलिटी में होता है।
1: जी जी,
0: चाहे वो फिल्म हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन हो, तो अल्टीमेटली मैं करता वो हूँ जो डायरेक्टर है। लेकिन डायरेक्टर के बताने के बाद फिर मैं उसको ग्रो करने की कोशिश करता हूँ कैरेक्टर। जैसे अभी मैंने एक प्ले डैडी किया।
1: अच्छा।
0: सूर्यमोहन कुलशेष जी के साथ
1: जी,
0: मेरा 99th प्ले था इस मंच
1: जी,
0: का।
1: जी, जी।
0: शो तो मैंने लगभग 1000 से ज्यादा किए पूरे हिंदुस्तान भर में।
1: जी, जी।
0: तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक बेसिक कैरेक्टर बता दिया कि डिमेंशिया का पेशेंट है। अब उसमें मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं और उसमें फूल पत्तियां और जोड़ सकता हूँ। कैसे अभी मैंने एक प्ले किया आखिरी वसंत, उसे मैं एक वो किरदार करता हूँ जिन पेरेंट्स के बच्चे बाहर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहला शो किया और अभी मैं करूं तो 28वां शो होगा, मुझे लगता है मैं हर प्ले में मैं ग्रो करता हूँ, मैं और गहराई में उसमें जाता हूँ। तो इस तरीके से सीखने को भी मिलता है और अच्छा करने को भी मिलता है।
1: अनिल जी, आज आप हिंदुस्तान के बड़े नामवर अभिनेता हैं, अपनी अदाई के लिए आप जाना जाते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में चूंकि संघर्ष तो जरूर रहा होगा, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को।
0: देखिए, इस मामले मेरा मानना है, मैं चूंकि बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ी है, एक फॉर्मूला है, हार्ड वर्क HW प्लस टैलेंट। देखिए, इनहेरेंट टैलेंट आप में जरूर होनी चाहिए। अगर टैलेंट नहीं है आप किसी नॉन टैलेंटेड पर्सन को टैलेंटेड नहीं बना सकते। टैलेंट की ग्रूमिंग की जा सकती है, तो वो टैलेंट होना चाहिए प्लस परसीवरेंस, लगे रहना। जैसे अब मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी फिल्मों के लिए अक्सर या टीवी कॉमर्शियल्स करता हूं, उसके लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ता है। बहुत से ऑडिशन देता हूं, हर एक में नहीं सेलेक्ट होता हूं, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर तुम्हें करने को नहीं मिलेगा। तो परसीवरेंस, लगे रहना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई लक। लक भी मैं आपको बताऊं बहुत काम करती है। और शायद इस मामले में ईश्वर ने मुझे बहुत सहयोग दिया, माँ सरस्वती का मेरे साथ साथ रहा कि मैंने जिस फील्ड में काम किया उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष लगभग पूरी कर चुकी है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आकाशवाणी को इतना प्यार करने वाला आकाशवाणी

0: के लिए जीने वाला आकाशवाणी के कार्यक्रम में शामिल होना और आकाशवाणी के कार्यक्रम को प्राथमिकता देना, ये नाप में आपने बहुत कुछ समझा।
1: इसकी मैं वजह बताऊं, इसकी वजह ये है कि जो भी मैं थिएटर में करता हूं, चाहे मैं टेलीविजन पे करूं या फिल्म में करूं, एक्टिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है कि आप कौन सा किरदार कर रहे हैं,
0: जी जी,
1: उसमें वॉइस का बहुत बड़ा खेल होता है। और वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो मुझे आकाशवाणी ने सिखाया है कि आकाशवाणी में, जैसे मैंने बताया अभी कहा कि आकाशवाणी में आपको अपनी आवाज से ही पूरा सीन क्रिएट करना होता है। आदमी कैसा है, बीमार है, डकैत है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ आपको अपनी आवाज से क्रिएट करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि मेरे साथ ही बहुत एडेड एडवांटेज रहा, बहुत कम मेरा ख्याल हिंदुस्तान में ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो कि चारों विधाओं में काम कर रहे हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीविजन और स्टेज। मैं शायद उन चंद लोगों में से एक हूँ, तो मुझे इसका बहुत फायदा मिलता है कि मैं आकाशवाणी का कलाकार हूँ।
0: आपने आकाशवाणी में इतनी प्लेस की है सर, कोई ऐसी घटना का जिक्र करें, कभी आप लेट हो गए हों या कभी कोई डायलॉग सही से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टर आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आकाशवाणी के
1: रेफरेंस। एक बार मैं आपको बताऊं, बहुत मजेदार बात हुई। यूजुअली जब से मैं आया हूँ रिकॉर्डेड ही प्रोग्राम होते हैं,
0: जी जी,
1: लाइव प्रोग्राम नहीं होते थे। मेरी इच्छा थी, हम बल्कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते थे यहाँ, कमल जी या जोशी जी या सुशील बनर्जी साहब या चंद्रप्रभा भटनागर जी, ये लोग सब हमारे डायरेक्टर सब प्रोड्यूसर यहाँ थे, कि कभी मुझे लाइव भी कराइए। बोले नहीं नहीं, लाइव आजकल नहीं होते। एक कमल वर्मा जी थी, बच्चों का प्रोग्राम प्रोड्यूस करती थी, तो उसमें उन्होंने मुझे एक बार चैलेंज दिया। अच्छा, मैं एक साल मैंने बच्चों का ही प्रोग्राम किया था, उस समय इत्तेफाक से शायद रजनलाल जी और शकुंतला दीदी यहाँ नहीं थे, तो एक साल मैंने बच्चों का प्रोग्राम किया है बाल संघ, तो उसमें 14 नवंबर एक पड़ा, उससे मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट करने को। अब मैं प्रोग्राम तैयार करके ले गया था, अब प्रोग्राम जो था वो एक घंटे का प्रोग्राम होना था, अब प्रोग्राम छोटा होने लगा। अब दीदी हमें इशारा कर रही है वहां से पीछे बैठ कर कि और बताओ और बनाओ, नहीं और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो वो इतना चैलेंजिंग हो गया था कि उसको कैसे कोप अप किया जाए, कैसे पूरा टाइम किया जाए, बड़ा भारी चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं बच्चों को साइंस की तरफ ले गया, किस्से सुनाने लगा, नेहरू जी के बारे में बताने लगा, और वो पूरा एक घंटे का प्रोग्राम किया। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए आकाशवाणी के लिए। तब मैंने महसूस किया कि लाइव ब्रॉडकास्ट कितना मुश्किल होता होगा।
0: आकाशवाणी से इतने लंबे अरसे से आप जुड़े हैं, और अपनी बात को कहने का तरीका, संवाद भी है, नाटक है और सीरियल्स हैं या वार्ताएं हैं, अपनी मनोभाव को साबित करने के लिए तमाम चीजों का सहारा हम लोग लेते हैं।
1: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि साइंस का विद्यार्थी था तो मैं साइंस की टॉक्स भी देता था, चूंकि मैंने उर्दू नाटक भी किए थे, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर थे शफात अली साहब, शफात साहब मुझे उर्दू के प्रोग्राम से ही बुलाते थे। अब मेरी उर्दू तो इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं क्या करता था कि मैं अपना साइंस का टॉक लिख लेता था, और यहाँ बहुत सीनियर एक्ट्रेस थे डॉक्टर आसफा जमानी, प्रोफेसर आसफा जमानी जो कि यहाँ पर पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड भी थी, तो मैं उनके यहाँ जाता था पहले और उनसे उसका उर्दू का तर्जुमा लिखवाता था।
0: क्या बात,
1: ताकि जो उर्दू के लिसनर्स हैं मेरे, उनको ये लगे कि कोई उर्दू स्पीकिंग ही आदमी बोल रहा है। क्योंकि देखिए, आप अगर उसमें हिंदी का प्रोग्राम कर रहे हैं, हिंदी में साइंटिफिक टॉक दे रहे हैं, तो फिर उर्दू सेक्शन को कोई मतलब नहीं,
0: मतलब नहीं रह जाता।
1: तो हम लोग बड़ी मेहनत करते थे। मुझे याद है, मुझे एक बार कमल जी ने बड़ा चैलेंजिंग रोल दिया था, भगवती चरण वर्मा जी का नाटक था चित्रलेखा, और मेरे गुरु जी कर चुके थे ललन भाई। अब मैं साहब कहां, ललन भाई कहां, मैं तो उसकी कोचिंग लेने में कमल जी के घर जाता था, घर में जाकर के मैं उनके प्रैक्टिस करता था, मुझे वो रिहर्सल कराते थे। उस जमाने में कम से कम तीन तीन चार चार दिन तो हम लोगों की रिहर्सल होती थी, और रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग होती थी। आज की तरह नहीं होता था कि उसी दिन रिहर्सल हुई उसी दिन रिकॉर्डिंग होगी। बहुत मेहनत करते थे हम लोग, और उसका नतीजा भी था कि आकाशवाणी लखनऊ के बहुत सारे प्रोग्राम राष्ट्रीय कार्यक्रम में भेजे जाते थे। मैं भी उन कुछ चंद लकी लोगों में हूँ जिनके नाटक आकाशवाणी दिल्ली से भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रसारित किए।
0: बहुत बड़ी बात। अनिल जी, संवाद के जरिए, नाटकों के जरिए, वार्ता के जरिए हम अपने दिल की बात अपने सुनने वालों तक पहुंचाते ही हैं। आकाशवाणी का एक और भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो गीत संगीत के जरिए भी अपने सुनने वालों को अपने पास रखती है। आपने जाहिर सी बात है, क्योंकि आप संगीत प्रेमी भी हैं, भले ही विज्ञान के छात्र हैं।
1: मुझे याद है आकाशवाणी में कार्यक्रम आता था बिना का गीत माला, तो वो तो इतनी मशहूर थी कि मैं, अमीन सयानी जी,
0: क्या बात,
1: उसको एंकर करते थे, क्या बेहतरीन चीज आती है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा संगीत प्रेमी तो नहीं रहा, लेकिन

0: मुकेश जी, लता जी, आशा जी और रफी साहब, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और आपको मैं बताऊं, मुकेश जी के साथ तो मुझे मंच शेयर करने का मौका
1: मिला। अरे वाह, क्या बात।
0: मैं 1967 में नाटक करने गया था मुंबई, तो उसके बाद मैंने देखा एक नौजवान आदमी हमारी ग्रीन रूम के बाहर स्क्रिप्ट लिए कुछ गुनगुना रहा है। मैंने उनको पूछा कौन है, उनका अरे ये तो मुकेश है। अरे मैंने कहा अच्छा, मेरे नाटक के बाद फिर मुकेश जी का गाना वहां पर हुआ मंच पर, तो बड़ा मेरा सौभाग्य था। ऐसे ही प्रवीण जैन जी के साथ मैंने मंच शेयर किया।
1: अच्छा।
0: आकाशवाणी की विविध भारती का, आपका जो बॉम्बे सेंटर विविध भारती के 25 साल हुए थे, तो उसके लिए मुझे मंच पे, उस समय एक्चुअली अब नहीं होते हैं, पहले आकाशवाणी की तरफ से मंच पे बहुत प्रोग्राम होते थे, लहरें कार्यक्रम होता था, आकाशवाणी अवार्ड फंक्शन होता था, उसमें मंच पे कार्यक्रम होते थे। और तो वहां पर मंच कार्यक्रम के लिए मैं गया था, मेरा एक प्ले था, थपलियाल जी ने लिखा था, उन्होंने डायरेक्ट किया था, चूचू का मुरब्बा, बहुत फेमस हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ था। उसको हमने बहुत सारे सेंटर्स में किया। उसके बाद साहब वहाँ हमारे कार्यक्रम के बाद रवीन जैन जी का प्रोग्राम था, तो मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। आप मुकेश जी का कोई गाना सुनवाइए, जो पुरानी फिल्में हैं, श्री 420 है, या भाई राज कपूर जी को तो वैसे ही वही देते थे।
1: जी जी, जी
0: उनके सारे गाने मुझे अच्छे लगे।
1: चलिए मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत हम भी सुनते और सुनने वालों तक पहुंचाते हैं।

0: देखिए, सिने जगत की बात तो यह है कि जब मैंने आकाशवाणी में शुरू किया था उस समय तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप सिनेमा में जा सकते हैं, क्योंकि मैं मंच ऑलरेडी कर ही रहा था। तो उसमें हुआ ये कि दूरदर्शन आया पहले यहाँ 1975 में, और दूरदर्शन में मैंने काम शुरू किया। इत्तेफाक से जाते ही वहां भी जो ऑडिशन हुए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं उसमें नाटक करने लगा तो क्या है कि जब आप विजुअल मीडिया में आते तो आपको एक पहचान मिलती है, और जाहिर है हर आदमी पहचान का भूखा होता है कि भाई मुझे लोग जाने। तो जब यहाँ पर फिल्म बन रही थी ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा जी की, क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था, उसमें मेरे दोस्त थे एक थिएटर के, उन्होंने कहा कि भाई आप चूंकि आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें रोल करें। तो मुझे जब रोल करने को मिला तो जाहिर है बड़े स्क्रीन पे करने का और चार्म होता था। मैं दूरदर्शन के कार्यक्रम करता था तो जो फिल्म मिली तो उससे मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला। तो इस तरीके से जो लखनऊ में, भाई जाहिर है मेरे लिए बंबई जाना तो संभव नहीं था, मैं ऑलरेडी जॉब में था तो, और मुझे लोग जानते भी नहीं थे और बंबई मुझे कौन बुलाएगा। लेकिन लखनऊ में जो फिर फिल्में यहाँ दूरदर्शन में, आरडी सिंह थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई मरीचिका, यहाँ लखनऊ में एक फिल्म और शूट हो रही थी खून बहा गंगा में, एक बड़ी हीरोइन थी उसमें, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसको लेकर के उससे मुझे काम करने का मौका मिला। तो इस तरीके से छोटे मोटे रोल मुझे फिल्मों में मिलने लगे, मैं करने लगा। लेकिन मैं बड़े पर्दे पे लग करके करूंगा वो मुझे मिला इशकजादे फिल्म से। जब इशकजादे यहाँ पर शूट हुई उससे मुझे इत्तेफाक से एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मिला अर्जुन कपूर के ग्रैंडफादर का। वो अगर आप देखें तो सेंट्रल कैरेक्टर था फिल्म का, जिसके अराउंड स्टोरी घूमती है, उससे मुझे बहुत पहचान मिली।
1: उस फिल्म का कोई डायलॉग अगर याद हो तो?
0: अब डायलॉग तो उसका याद नहीं है, लेकिन एक सुना देता हूँ, कोशिश करता हूँ सुनाने की। उसमें था कि देखो कमिश्नर साहब, ये इलेक्शन पास आ गया है, हमारे बंदे ने अगर कोई गड़बड़ की तो मैं उसे गुद्दी पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा, आप उसको जेल फांसी काला पानी जो समझ में आए आपको देना। लेकिन कुरेशियों को समझा लो, उनने अगर गड़बड़ की तो ये चुप नहीं बैठेंगे, गांधी बाबा का खानदान है हमारा, हम उन्हीं की परिपाटी पे चलते, समझा लो उनको, वो कुछ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कोई झगड़ा पवार नहीं होगा, वो आपको गारंटी देते हैं, हम आपको गारंटी का बाप देते हैं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत खूब।
0: उस फिल्म से मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली, और लोग बंबई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मुझे बंबई खास बुलाया गया।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: ऑलरेडी उस समय 70 मेरी उम्र होने वाली थी, तो बल्कि मैंने कास्टिंग डायरेक्टर से कहा कि बेटा तुमको जो शूट करना हो यहाँ आके लखनऊ में करो, मैं बंबई इस उम्र में कहा हूँगा। नहीं नहीं सर, ये तो डेली सोप है और चैनल ने आपका सिलेक्शन किया, प्लीज आ जाइए। फिर मैं गया, मेरी परिवार ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे वहाँ फ्लैट खरीद के दे दिया। फिर मैं 5 साल बंबई में रहा, फिर मैंने खूब जम के काम किया, और मुझे लगता है कि इशकजादे ने मेरा एक कैरियर ही बदल दिया कि आज मैं करीब 75 फिल्में कर चुका हूँ।
1: कौन कौन सी फिल्में हैं हमारे सामने, कुछ बताएं।
0: देखिए जो मेरी अच्छी फिल्में हैं उसमें जैसे इशकजादे है, मुक्ति भवन है एक मेरी फिल्म जो बनारस में शूट हुई थी, सुभाषीष भूटिया ने, एक यंग लड़का 25 साल का था उस समय, उसने डायरेक्ट की थी, उसको 30 इंटरनेशनल और 3 नेशनल अवार्ड मिले। मैंने अनुभव सिन्हा जी के साथ मूल की उनकी, उनके साथ मैंने थप्पड़ की, मैंने बहुत सारी फिल्में, नाम नहीं याद आ रहे हैं, जैसे फिल्म आई थी मेरी एक चतुर नार, मैंने एक फिल्म वहाँ देहरादून से ऊपर राउतू का राज, और काफी फिल्में मेरी बहुत पॉपुलर, जैसे बाटला हाउस मैंने की, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने की, रेड वन मैंने की, तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। तो चूंकि मैं बंबई 5 साल रहा, मैं बंबई गया था तो वहां जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनके डेटाबेस में मेरा नाम आ गया। मैंने एक शॉर्ट फिल्म अल्जाइमर पे की जिसको भी नेशनल अवार्ड मिला, रेणुका शाहने के साथ अल्जाइमर के ऊपर 10 मिनट की फिल्म मैंने की। तो इस तरीके से छोटी बड़ी फिल्में मिला करके, जैसे मैंने बताया, अब तक 75 फिल्में हो चुकी है, एंड आई रियली एंजॉय स्टिल डूइंग फिल्म्स। अभी मैंने वेब सीरीज की जिसमें करीब 14 मेरी वेब सीरीज हो चुकी हैं। पहली मेरी वेब सीरीज थी मीरा नायर जी के साथ, द सूटेबल बॉय, एक मेरा ख्याल विक्रम सेठ का नॉवेल है, शायद बहुत ही मशहूर नॉवेल है, उस पर उन्होंने बनाई थी। फिर मैंने सुष्मिता सेन जी के साथ एक वेब सीरीज है ताली, उसमें मैंने जज का रोल। अभी आजकल मेरी एक वेब सीरीज आ रही है बिंदिया के बाहुबली, उसे मैंने जज का रोल किया है। लेकिन जो सबसे पॉपुलर जो मेरी वेब सीरीज हुई वो थी आश्रम।
1: अच्छा,
0: जिसके 3 सीजन आ चुके हैं, तीनों मैंने रोल किया है। उसका 4th सीजन की अब शूटिंग शुरू होने वाली है अगस्त से फिर से। मुझे प्रकाश झा जी का मैसेज मिला है, उसे मैंने मुख्यमंत्री का रोल किया है। तो इस तरीके से मैंने टीवी कमर्शियल्स बहुत सारे किए, 22-24 में टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ। तो ये है कि लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट जो मेरा आया उसमें 2 चीजें थी। एक पहला था मेरा सीरियल उड़ान, जो 1989 में कविता चौधरी ने बनाया था। वो जब टेलीकास्ट हुआ उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था, राष्ट्रीय चैनल, तो वो पूरे हिंदुस्तान भर में देखा जाता था। और चूंकि उसमें मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया था, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो हीरोइन थी उसका बॉस भी था, उसका मेंटर भी था, उसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी वो पूरे हिंदुस्तान में। बल्कि आपको मैं बताऊं, मजा आता था क्योंकि अक्सर मैं एज ए साइंटिस्ट मैं मीटिंग्स अटेंड करने जाता था, कहीं मेरा पेपर प्रेजेंटेशन होता था, कहीं मैं लेक्चर देने जाता था, कहीं एग्जामिनर होके जाता था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये उड़ान के बशीर अहमद हैं।

0: अनिल जी, आकाशवाणी के नाटकों में आपने इतना सुंदर अभिनय किया, फिर ऑल ऑफ सडन या अचानक ही ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ कि आप सिने जगत की तरफ जाने लगे?
1: नहीं,

0: भी कमर्शियल कर चुका हूँ। तो ये है कि लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट जो मेरा आया उसमें दो चीजें थी। एक पहला था मेरा सीरियल उड़ान जो 1989 में कविता चौधरी ने बनाया था, वो जब टेलीकास्ट हुआ उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था राष्ट्रीय चैनल, तो वो पूरे हिंदुस्तान भर में देखा जाता था। और चूंकि उसमें मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया था, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जो हीरोइन थी उसका बॉस भी था, उसका मेंटर भी था, उसने मुझे बहुत पॉपुलैरिटी दी वो पूरे हिंदुस्तान में। बल्कि आपको मैं बताऊं, मजा आता था क्योंकि अक्सर मैं एज ए साइंटिस्ट मैं मीटिंग्स अटेंड करने जाता था, कहीं मेरा पेपर प्रेजेंटेशन होता था, कहीं मैं लेक्चर देने जाता था, कहीं एग्जामिनर होके जाता था, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये उड़ान के बशीर अहमद हैं, क्योंकि सीरियल बहुत पॉपुलर था। स्टेज आर्टिस्ट तो मुझे लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 64 साल मुझे हो गए, मैं 1961 से कर रहा हूँ थिएटर, और अभी मैंने 2025 में अपना 100वां नाटक किया था, और टोटल मेरे नाटकों के 1000 से ज्यादा शोज हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान पर। लेकिन जो फिल्म की मेरी पहचान हुई वो या वेब सीरीज में या टीवी कमर्शियल, वो उसका मेन रीजन रहा इशक साथी।
1: बहुत बधाई हो आपको कि सिने जगत में आप बेहतरीन कमाल कर रहे हैं। हमारे सुनने वाले को बताएं कि एक जो श्रोता वर्ग होता है वो फिल्म देखने जाता है, हॉल में जाता है, आपकी फिल्म देखता है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मैसेज वो अपने दिल में लेके जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्मों का समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है।
0: देखिए, फिल्मों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि क्या है कि हम ये मानते हैं कि विजुअल मीडिया जो है बहुत पावरफुल होता है। एक चीनी कहावत है कि जब आप कोई बात सुनते हैं तो वो सुन करके कान से निकल जाती है, जब आप उसको देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर होती है। तो फिल्म चूंकि एक विजुअल मीडिया है, जो आप देखते हैं उसका असर पड़ता है। अब देखिए क्या है कि बहुत सारी फिल्में आती हैं जो कि ये पहले आती थी, वो बेसिकली हीरो हीरोइन बेस्ड होती थी, हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, एक कॉमेडी हो गया, और अक्सर मैसेज नहीं होता था। लेकिन अब जो है कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, फिल्म का कंटेंट बेस्ड फिल्म आती है। आजकल आप देखिए जैसे धुरंधर फिल्म आई है, या कश्मीर फाइल्स आई थी, या सोशल फिल्में बहुत सारी आती हैं। मैं आपको बताऊं, नरगिस की फिल्मों मदर इंडिया आई थी, हमारे बलराज साहनी जी की फिल्म आई थी, वो बहुत मशहूर फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो एक या जैसे 3 Idiots आई थी, तो इन सब में जो सोशल मैसेज होता है, श्री 420 आई थी राज कपूर जी की फिल्म, गुरदत्त जी की फिल्में आती थी, तो इन फिल्मों में जो मैसेज होता था उसका बड़ा असर पड़ता था। और क्या है कि अब जैसे तमाम विलेन हैं, अब विलेन में आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं जो फिल्मों में चीजें दिखाई जाती है उसको पकड़ते हैं, आजकल आपको नए नए तरीके के विलेन मिलते हैं, तो ये उसका निगेटिव एस्पेक्ट है। अभी बीच में OTT आया था, OTT पे आप देखिए तमाम गाली गलौज शुरू हो गई थी, लोगों को लगता था गाली गलौज चूंकि लोग लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वहां बोलना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें शॉर्ट टर्म होती है। असली चीज होती है वही थिएटर में मैं करता हूँ। थिएटर में जैसे अभी मेरा प्ले डैडी है, वो डिमेंशिया की कहानी है, एक डिमेंशिया पेशेंट की। मैं आपको लिटरली बताऊं, लोग रोते हैं उसमें, तमाम लोग मुझसे आके बाद में मिलते हैं कि मुझसे कहते हैं साहब जो आपने दिखाया मेरे घर की यही कहानी है। मैंने एक प्ले किया था शनिवार रविवार, चाइल्डलेस कपल की कहानी है कि वो अपना समय काटते हैं, खुशी खुशी काटते हैं, करते हैं, लेकिन जो एक दर्द मन में रह जाता है बच्चे न होने का। और इसके जरिए जैसे रामायण है, अब रामायण क्यों इतनी पॉपुलर हुई कि रामायण की वजह से लोग अपने घर में बच्चों को शिक्षा देते हैं कि भाई तुम राम बनने की कोशिश करो, लक्ष्मण देखो कितना वो अपने बातों पे अटल रहे हैं, कितना अच्छे उनके कर्म रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है नई जनरेशन को सीखने में, जो पुराने लोग हैं उनको भी जब ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो अगर ये कहा जाए कि सिनेमा जो है समाज का आईना होता है तो गलत बात नहीं होगी। और इसीलिए लोग कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि ग्लैमर वाला पीरियड खत्म हो रहा है, कंटेंट बेस्ड जो है चीजें आ रही है, तो वो कंटेंट इसीलिए क्योंकि वो जहां थिएटर में हो चाहे सिनेमा में, जहां वो डायरेक्ट आदमी से जुड़ता है वो फिल्में बहुत पॉपुलर।
1: आपने एक जमाने से आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन के लिए, सिनेमा जगत के लिए आप काम कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस करते हैं कि आज की फिल्म में?
0: नहीं, बहुत बदलाव। जैसे अभी अभी मैंने कहा ना कि पहले ग्लैमराइज्ड फिल्में आती थी, ग्लैमर के ऊपर फिल्में चलती थी, अरे भाई इसमें शाहरुख खान रोल कर रहे हैं, इसमें आमिर खान रोल कर रहे हैं, इसमें सलमान खान रोल कर रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब देखिए जो हमारे नए कलाकार आ रहे हैं, थिएटर के एक्टर्स आ रहे हैं, चाहे नसीरुद्दीन शाह साहब हो, हमारे

0: पुरी जी अब नहीं, ओम पुरी जी चले गए हैं, पंकज कपूर हैं, मनोज वाजपेयी हैं, राजपाल यादव हैं। देखिए ये जो फिल्में आज जो नई नई बन के आ रही हैं इनको लेकर के, वो एक तो एक्टिंग प्रधान है, उसमें आपको बढ़िया एक्टिंग देखने को मिलती है और कंटेंट पे फिल्में चलती हैं, न कि उस ग्लैमर के ऊपर। कम से कम एक क्लास ऐसा है जो कि ऐसी ही फिल्में देखने जाता है।
1: जब आप किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है उसमें बहुत सारे आपके कुछ किस्से होते होंगे, तमाम लोगों से मिलना होता है, कुछ मजेदार ऐसा वाकया होता है कि कभी आप सेट पर गए और किस किस तरह की बातें आप लोग करते हैं सेट से पहले, उसका क्या दृश्य होता है?
0: देखिए बहुत मजेदार वाकया तो नहीं, एक मैं ऐसा वाकया बना रहा हूँ जिसमें मैंने बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील किया। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो डायरेक्टर है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। मैं एक सीरियल कर रहा था, मेरा ख्याल कोई क्राइम शो था शायद, उसमें डायरेक्टर आया। अच्छा मेरी थोड़ी रिकॉग्निशन पावर वीक है, मैं नाम और चेहरे लोगों की जल्दी भूलता हूँ, मुझे याद नहीं रहती। और वो डायरेक्टर, शायद मैं 3-4 एपिसोड कर चुका था पहले कभी, मुझे याद नहीं था वो है, तो आया तो चला गया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं उनको विश करूं। उसके बाद में सब लोग जब आ गए तो वह सब रीडिंग करें, मैं रीडिंग करने लगा अपने कैरेक्टर। बोले नहीं नहीं कुछ बन नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा बताइए। नहीं नहीं नहीं एक्टर आप हैं, आपका काम है करना, मैं तो बता रहा हूँ कुछ ऐसा चाहिए। मैंने कहा ठीक, मैंने दूसरे ढंग से पेश किया। नहीं नहीं नहीं नहीं आ रहा अनिल जी, नहीं बात। फिर तीसरे ढंग से पेश किया। भाई आकाशवाणी से मैंने सीखा है कि आप आवाज मॉड्यूलेट करके उसको अलग अलग ढंग से पेश कर सकते हैं। तो बोले अच्छा मैं आपको 1 घंटे टाइम देता हूँ, आप इसको फिर से तैयार करिए। फिर मैं 1 घंटे बाद फिर आया, मैं नहीं साहब बन नहीं रहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है महाराज, आप मेरा पेमेंट दे दीजिए, मैं जाता हूँ। इसी मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया है,
1: वाह वाह वाह।
0: मैंने हबीब फैजल के साथ काम किया है, मैंने एक से एक सुधीर मिश्रा के साथ काम किया, मैंने तिग्मांशु धूलिया के साथ काम किया। किसी ने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि अनिल जी बन नहीं रहा। प्रकाश झा जी के साथ काम किया, ये जरूर है कि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऐसा कर दें। लेकिन उस दिन आई फेल्ट सो बैड, वो मुझे लगा कि चूंकि उसने नमस्ते मैंने उसको नहीं की थी, ही फेल्ट सो ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट। तो वो मैं इतना ह्यूमिलेटेड, तो एक बार फिर मैंने फेसबुक पे मैंने डाला कि ऐसे ऐसे भी होते हैं। फौरन उसका फोन आया मेरे पास, मैंने डाला कि उसने मेरे साथ इस ढंग से बदतमीजी की डायरेक्टर ने। अरे सर मैंने ऐसा क्या किया था, आपने डाल दिया। सर आपके तो बड़े फॉलोअर्स हैं और मुझे फोन आ रहे हैं कि भाई तुमने रसोगी साथ ऐसा। मैंने सब ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं आपने किया था। मैंने कहा पहली बार ऐसा हुआ था कि सेट छोड़ के मुझे आना पड़ा, एक बेइज्जत होकर के आना पड़ा कि मैं कैरेक्टर कर नहीं पा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। नहीं नहीं सर मैं तो देखिए आपको मैंने फिर लखनऊ से बुलाया बम्बई में करने के लिए, आपको याद होगा फलाने एपिसोड के लिए ये वो। तो खैर उसने बड़ी माफी मांगी। अच्छा। तो ये वाकया जो आज भी मुझे याद है, आई फेल्ट सो बैड अबाउट इट। देखिए मैं अपने को परफेक्ट नहीं मानता हूँ, जैसे मैंने कहा मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्टर जो बताता है मैं करता हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायरेक्टर ने मुझे ये कहा हो कि नहीं नहीं आप नहीं कर पा रहे। मैंने आप सोचिए कि इस मामले में मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा लकी रहा कि चाहे फिल्म हो चाहे सीरियल हो चाहे थिएटर हो, मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिले। मैं टाइप्ड नहीं हुआ। अब जैसे ये नहीं हुआ कि मैंने उड़ान में रोल मेरा बहुत पॉपुलर हुआ है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मुझे पुलिस के ही रोल मिलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने नेता के भी रोल किए, मैंने विलेन भी किया, मैंने हीरो भी किया, मैंने कॉमेडी भी की, हर तरीके के रोल मैंने किए। तो जाहिर है कि जब आप हर तरीके के रोल करते हैं तो ऐसा बड़ा मुश्किल ही है। ये ठीक है कि आई मे नॉट कम टू द मार्क और डायरेक्टर को मुझे बताना पड़े, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझसे कोई कहे कि नहीं आपसे रोल हो नहीं पा रहा। मैंने थिएटर के मैंने बड़े चैलेंजिंग रोल्स किए हैं, जैसे मैंने बताया यहूदी की लड़की में यहूदी का रोल कर रहा था। आपको मैं बताऊं ये रोल पहले अनुपम खेर साहब कर रहे थे हमारे यहाँ।
1: अच्छा।
0: खेर साहब लखनऊ में थे, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे थे, थपलियाल जी ने कहा मुझे अनुपम खेर दे दो मैं प्ले कर दू। मैं इत्तेफाक से आपके ड्रामा सेक्शन में खेर साहब बैठे हुए थे। मैंने खेर साहब से कहा खेर साहब हम ये प्ले कर रहे हैं आपको करना। बोले जहे नसीब कि भाई दर्पण कर रहा है, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात। देखिए खेर साहब कह रहे हैं।
1: वाह वाह।
0: तो खेर साहब कर रहे थे, बीच में खेर साहब को छोड़ के जाना पड़ा उसे। तो थपलियाल ने कहा नहीं अब तुम करो। अब आप सोचिए कितना चैलेंजिंग है, कहीं अनुपम खेर हो कहीं अनिल रस्तोगी। खेर साहब उस जमाने से ही बहुत टॉप के आर्टिस्ट थे। खैर मैंने किया तो थपलियाल जी ने मुझे उसकी एक एक लाइन सिखाई और मैं आपको बताऊं अभी तक मैं उसको अपनी जिंदगी का बेस्ट प्ले मानता था। उसी तरीके से मुझे सखाराम बाइंडर करने के लिए कहा गया, मेरे गुरुजी थे राजेश्वर बच्चन जी, इन्होंने तुम्हें सखाराम का रोल करना। अब सखाराम का रोल बड़ा चैलेंजिंग रोल है, उसका डायलॉग है, मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, उसका डायलॉग है मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है।

0: सोचिए कि ना अनिल बीड़ी पीने वाले ना अनिल गाली देने वाले कैसे रोल करेंगे।
1: क्या बात है।
0: तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा बच्चन जी मैं अलग से बैठ के आपके साथ वन टू वन रिहर्सल करता हूँ, जब आपको लगे कि मैं ये रोल कर ले जाऊंगा और मुझे भी लगे कि मैं रोल के साथ जस्टिफिकेशन करूंगा तब इसको अनाउंस करेंगे। तो मैंने बड़े चैलेंजिंग रोल्स भी किए हैं,
1: बहुत बड़ी बात।
0: तो और उसका मुझे बड़ा संतोष, अभी जैसे जो मेरा 99 प्ले डैडी है इसमें सूर्यमोहन ने मुझे एक एक लाइन इसकी बताई कि अनिल जी, क्योंकि मैंने कभी डिमेंशिया पेशेंट देखा नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने फिल्म देखी, फिर उस ढंग से मैंने रोल को कंसीव किया और ईश्वर की कृपा से वो भी मेरा बहुत सक्सेसफुल नाटक।
1: वाह वाह, आज आप सफलता के शिखर में हैं अनिल जी, इस बात के लिए तमाम लोग जिम्मेदार होंगे, तमाम लोगों का सहयोग होगा। आपके परिवार ने इस सफलता में कितना सहयोग?
0: परिवार ने तो मेरे पूरा सहयोग किया। देखिए मेरे माता पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई भी जो हुई मेरे बड़े भाई साहब ने प्रमोट किया, उन्होंने मुझे थिएटर के लिए भी प्रमोट किया। मुझे याद है मेरा कपड़े का बिजनेस था, मैंने बताया अक्सर हमारे यहाँ 50-50, 100-100 लोग आ जाते थे कस्टमर, और मैं भी लग जाता था बिजनेस में। लेकिन जैसे मेरी रिहर्सल का टाइम होता था भाई साहब मुझसे कहते थे अनिल तुम्हारे रिहर्सल का टाइम है तुम जाओ, ऐसे प्रमोट किया। और इधर जो मुझे सबसे बड़ा प्रमोशन मिला, मेरे बेटे बहू ने तो जैसे मुझे बंबई में फ्लैट खरीद के दिया, अदरवाइज में बंबई में मेरे लिए मैं लिम्प करता था जब मैं बंबई गया था, तो मेरे लिए रहना बड़ा मुश्किल था। अब देखिए अभी मैंने एक 100वां प्ले जो मेरा था दैट वाज ऑलमोस्ट माय बायोग्राफी, और उसमें एक कैरेक्टर अमरीश बॉबी भी थे, लेकिन 99% मेरे डायलॉग्स थे, सोलो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट थी। तो ये डायलॉग अभी इस उम्र में आप सोचिए 83-82 साल की उम्र में याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, वो मेरी पत्नी मुझे याद कराती है। जैसे मैंने बताया वो टीचर रही हैं, तो एज ए टीचर आप सोचिए कि मेरे जो को एक्टर्स हैं उसके डायलॉग वो बोलती हैं, फिर मेरे डायलॉग बोलती है मुझे, अगर वो ना हो तो मैं थिएटर तो कम से कम नहीं कर सकता, क्योंकि फिल्म वगैरह में तो याद करने की जरूरत पड़ती नहीं आपको स्क्रिप्ट में, हालांकि कभी जब लंबे रोल होते हैं वहां भी याद करना पड़ता है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत सहयोग करती हैं, उनके सहयोग के बिना मैं शायद आज काम न कर पाऊं।
1: अनिल जी आपने रविंद्र जैन जी का जिक्र किया कि उनके साथ अपने मंच साझा किए हैं, चलिए रविंद्र जैन जी का कंपोज किया हुआ उनका लिखा हुआ ये गीत दोस्तों आपको भी सुनवाता हूं और साथ में अनिल जी भी सुन रहे हैं।

0: अनिल जी, अगर आप अभिनेता ना होते, CADRI में तो आप डायरेक्टर ही रहे, वहां बड़ी अच्छी सेवाएं दी आपने, अगर फिल्मों में ना होते तो फिर और क्या होता?
1: देखिए, मैं साइंटिस्ट तो था ही, फिर बस साइंटिस्ट बन करके ही रह जाता। और मुझे लग रहा है कि मेरा जो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है वो शायद इतना अच्छा ना गुजरता जो एज एन एक्टर मेरा गुजर रहा है। लेकिन एक चीज मैं और करता हूँ, शायद वो मैं तब पहले शुरू कर देता, वो है फिलेंथ्रोपी। मेरे बड़े ब्रदर, जिनका मैं अभी नाम ले रहा था, उन्होंने करीब 27 साल पहले एक संस्था बनाई थी, हरिओम सेवा केंद्र, जिससे जो गरीब पेशेंट या जो डेस्टिट्यूट्स होते हैं, जिनका कोई करने वाला नहीं होता है, वो जो पेशेंट जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? उनको फ्री मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ब्लड की जरूरत होती है ब्लड देते हैं। अगर लोग पेशेंट्स बाहर से आए हैं, उनको ठहरने के लिए हमारे पास रैन बसेरा में मेडिकल कॉलेज ने दिया हुआ है, उनको हम ठहराते हैं। उनको बेड प्रोवाइड करना, तकिया, गद्दा, चादर, गर्मियों में ठंडा पानी, जाड़ों में गर्म पानी, और हफ्ते में 6 दिन हम उनको लंच प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारी एक एम्बुलेंस है जो कि मरीजों को ट्रॉमा सेंटर से और OPD से वार्ड्स में लेकर के जाती है। उसका खर्चा सारा हमारी संस्था करती है। अगर मैं थिएटर नहीं करता होता तो उसमें मैं और ज्यादा समय दे करके करता है। मेरे बड़े ब्रदर ने जो संस्था एक बनाई थी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मैं अभी भी उसमें समय देता हूँ जब मैं नाटकों से फ्री होता हूँ, लेकिन तब शायद मैं उसको ज्यादा समय दे सकता हूँ।
0: आपकी बहुत खूबसूरत जसामत है, बहुत स्मार्ट हैं आप, अभी भी सीनियर जगत में काम कर रहे हैं। अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं?
1: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मुझे कोई बुरी लत नहीं रही, और बाकी तो ये सब ईश्वर की देन होती है। ना मैं शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, न चाय पीता हूँ, पान खाता हूँ, न मसाला खाता हूँ, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो शायद एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि जब आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या जब आप हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो वो भी आपको इफेक्ट करती है। और लोगों में बड़ा कहा जाता है कि भाई कलाकारों में शराब न पिए, सिगरेट न पिए तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। मेरे जो गुरुओं ने सिखाया, मेरे राजेश्वर बच्चन जी जो मेरे पहले गुरु थे, तो उनको मैं जानता था, उन्होंने मुझसे कहा कि इन चीजों से हमेशा दूर रहना। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, चंद्रा साहब के साथ जब मैं रोल करने के लिए गया, नाटक था जय सोमनाथ, उसे बोले देखो बड़े बड़े कलाकार हैं वहां, तो मैं बल्लम धारी का रोल मिला।

0: ये वो भी कर लेना, तुम्हें सीखने को मिलेगा। मुझे ये 1966-67 की बात कर रहा हूँ, मुझे साहब वाकई बल्लमधारी का रोल मिला, लेकिन मेरी सिंसियरिटी ने पे किया। हुआ ये कि जो गजनी के सिपह सालार का रोल कर रहे थे उन साहब ने छोड़ दिया, तो मेरा प्रमोशन उसमें हो गया, जिनका मैं चौबदार का रोल कर रहा था। उसके बाद जो गंग सर्वज उसके मठाधीश थे, उनके यहाँ कोई इमरजेंसी होगी, उन्होंने छोड़ दिया, तो जो शिवराशि जो उसका मेन विलेन है उनका प्रमोशन उनमें हो गया, मेरा प्रमोशन शिवराशि में हो गया। अब शिवराशि जो है मेरा ख्याल है जय सोमनाथ का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो विक्षिप्त होकर के मंदिर के दरवाजे खोल देता है, वो चौला जो नर्तकी उसके प्रेम में पागल था। तो मेरा मानना है कि रोल को भी कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, जो कि मैं नहीं मानता। मैंने बड़े छोटे छोटे रोल भी किए फिल्मों में, लेकिन ये जरूर मानना है कि वो रोल एस्टेब्लिश होना चाहिए।
1: आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है?
0: मूल मंत्र मेरा ये है कि जो भी काम करो सिंसियरिटी से करो, डेडिकेशन से करो, लग करके करो और ईमानदार रहो अपने काम की तरफ।
1: लगातार संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखें, और पढ़ना, जज्ब करना, उसे फील करना कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सेहत का भी ध्यान रखना मुझे लगता है उसके लिए आवश्यक है। ये सारी चीजें आपने बखूबी निभाई हैं। हमारे जो नवोदित कलाकार है जो आपकी तरह फिल्मों में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैंने जब थिएटर शुरू किया था उस समय कोई ओपनिंग्स नहीं थी हमारे लिए, सिर्फ एक स्वांता सुखाए हम करते थे और लोग चार देख लेते थे, उसको पसंद करते थे। आज एक्टिंग एक करियर हो गया है। आज आप देखिए कि ढेरों चैनल्स बन गए, 300 से ऊपर 400-500 चैनल्स हैं। OTT जो था पहले एक दो हुआ करते थे प्लेटफॉर्म, आज ढेरों प्लेटफॉर्म। तो आज कलाकारों की बहुत सख्त जरूरत है। तो उस समय मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये भी मैं आपको बताऊं, मैं कोई ट्रेंड एक्टर नहीं, मैंने जो भी सीखा है रिहर्सल से सीखा है। तो आज भी क्या है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें थिएटर पढ़ाया नहीं जाता है। जो ड्रामा स्कूल्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतीय नाट्य अकेडमी है, अब वहां कितने बच्चों का एडमिशन होता है? 20 बच्चों का एडमिशन होता है एक साल। लेकिन आज एक्टिंग के लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, तो उसके लिए वर्कशॉप्स होती है। तो जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो अच्छे अच्छे गुरुओं की, अच्छे अच्छे टीचर्स की, देखिए वर्कशॉप कमर्शियल भी बहुत होने लगी है, तो उससे फायदा नहीं होगा। जो अच्छे टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं, अच्छे गुरु लोग जो वर्कशॉप करते हैं उनकी वर्कशॉप अटेंड करें और कमिटेड रहें। नाटक एक आज बहुत ऐसी विधा है जो कि प्रमोशन में बहुत मदद करती है। मैं नाटक करके ही मैं सीरियल्स में आया, फिल्मों में आया। अगर मैं नाटक नहीं करता होता तो शायद मेरी कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि नाटक में जो सीखने को आपको मिलता है, फिल्म में आपको क्या है, सीधा स्क्रिप्ट दी जाती है और आपसे कहा जाता है आप करिए। नाटक में आपकी रिहर्सल्स होती है, महीना महीना, दो दो महीने रिहर्सल होती है, जिसमें आप एक एक उस कैरेक्टर को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, सीखने को मिलता है। तो आप नाटक करिए और सिंसियरिटी के साथ करिए, ये नहीं कि रोल मिला कैजुअली ले लिया हम तो कर लेंगे, बस रोल याद हो गया कर लेंगे, नहीं, रोल में डूबिए। और जो डायरेक्टर बता रहा है अपना ही नहीं दूसरे कैरेक्टर्स को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या पता कल आपको दूसरा कैरेक्टर करने को मिले। तो जो आपको ज्ञान उससे मिलेगा वो आपके काम आएगा। तो आज के जो बच्चे हैं जो इसको एक सीढ़ी बनाए हुए हैं रंगमंच को, कि बस एक दो नाटक किए और फौरन में फिल्मों में चला जाऊं, वो नहीं चलेगा। आप मेहनत से अच्छे ढंग से थिएटर करिए, लंबा थिएटर करिए, उसके बाद में आपके लिए पूरी दुनिया है, पूरा आकाश है काम करने के लिए।
1: अनिल रस्तोगी जी, आप आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो आए और अपने निजी जीवन के बारे में, आकाशवाणी के बारे में, दूरदर्शन और उसका फिल्मी सफर, कई फिल्मों के का जिक्र आपने किया, आपकी लंबी और बड़ी दोनों उम्र हो, स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओ, ये थे पद्मश्री से सम्मानित श्रीमान अनिल रस्तोगी जी। अब आज के मेहमान कार्यक्रम से सुरेंद्र राजेश्वरी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। सुप्रसिद्ध अभिनेता पद्मश्री अनिल रस्तोगी जी से बातचीत कर रहे थे सुरेंद्र राजेश्वरी।

हेलो एंड सलाम नमस्ते सुस्वागतम वेलकम खुश आमदीद मेहरबान दोस्तों 102.2 FM रेनबो कानपुर पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है हम नवा।

0: मैं हूँ आपका दोस्त एंड शो होस्ट आज गौरव, और आज स्टूडियो में मेरे साथ मेरी हमनवा और आपकी दोस्त हैं।
1: मैं हूँ आरजे मालिनी। हेलो, कैसे हैं दोस्तों? भाई अच्छे ही होंगे, मुझे लग रहा है कि अच्छे होंगे। क्यों गौरव, तुम्हारा हालचाल कैसा है?
0: एकदम बढ़िया, और मौसम को देख के तो जो है बिल्कुल एकदम सब
1: बिल्कुल बढ़िया हो गया। और देखो, हम नवा प्रोग्राम के साथ हम आ चुके हैं, और आज 7 जून और सन है 2026। सभी लोग जानते हैं 2026 चल रहा है, और कल होगा 8 जून। और इन दिनों हम एक बहुत खास सेलिब्रेशन से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, और वो इतना खास है जो शायद हम तक और हमारे लिसनर्स तक यूं ही पहुंचता रह रहा है। और आप शायद कहना चाह रही हैं कि आप अपना आकाशवाणी कल यानी 8 जून को इस सेलिब्रेशन में अपने 90 वर्ष पूरे कर लेगा।
1: बहुत खुशी होती है गौरव। और देखो ना, 90 साल, मतलब 90 साल सुनने में ना बस एक संख्या सी लगती है अगर बहुत डीपली सोचो, बट ये संख्या जो है आकाशवाणी से जुड़ती है। तो ये 90 साल जो होते हैं ना, करोड़ों यादों, भावनाओं और अनगिनत आवाजों का सफर बन जाती है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और जब आकाशवाणी की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना जो है वो 8 जून 1936 को हुई थी, और तभी से इस देश की संस्कृति, संगीत, समाचार, साहित्य और जन जागरूकता का सशक्त माध्यम रहा है आकाशवाणी।
1: और इन 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में आकाशवाणी ने संगीत सुनाया, खबरें पहुंचाई, साहित्य को घर घर तक पहुंचाया, और देश की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर भी रखा।
0: जी बिल्कुल सही है। और अगर हम आकाशवाणी को जन जन की वाणी या भारत की वाणी बोले ना, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
1: एग्जैक्टली।
0: और इस सफर की सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि इससे प्रसारित होने वाले विविध रंगी कार्यक्रमों में कभी आकाशवाणी से प्रसारित संगीत ने मन को छुआ, तो कभी हवा महल के नाटक और झलकियों ने कल्पनाओं को भी उड़ान दी।
1: बहुत पते की बात कही है तुमने गौरव, और सही भी कहा है तुमने। सुबह की भक्ति से लेकर शाम की महफिलों तक, और किसानों के कार्यक्रमों से लेकर युवाओं की पसंद तक, आकाशवाणी ने ना हर उम्र, हर वर्ग और हर मन के लिए कुछ ना कुछ खास संजो कर रखा।
0: बिल्कुल सही बात है। और संगीत के अनोखे रंगों से लोगों को आकर्षित किया। शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो, पॉप म्यूजिक, कव्वाली या फिर गजलें हो, ये वो संगीत के कार्यक्रम रहे जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ समाज को भी जोड़े रखा। बदलते दौर के साथ कार्यक्रमों के स्वभाव बदले, लेकिन श्रोताओं से जुड़ने का अपनापन कभी नहीं बदला और ना कभी बदलेगा।
1: गौरव, अभी आकाशवाणी की जब बात चलती है ना, तो लगता है कि बातों का अतः भंडार है हमारे पास। बिल्कुल कभी ना खत्म होने वाला। अगर हम बात करना शुरू करें तो शायद आज हम और कुछ बात ना कर पाएंगे।
0: हम एक्चुअली हमारे लिसनर्स की, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके मन की बात को भी समझ पा रहे हैं कि आकाशवाणी से वो इतना प्यार करते हैं, तो आई एम श्योर कि इन बातों में वो और भी बातें जोड़ना चाहते हैं।
1: हाँ, तो लिसनर्स हमें मेल भी करेंगे। अभी आपको हम बताएंगे कि आपको किस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप अगर आकाशवाणी से जुड़े हैं, और आकाशवाणी के जो भी जुड़े हुए खास आपके अंदर विचार हैं, आपने क्या पाया उससे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रही है, तो हर कार्यक्रम, हर आवाज और हर श्रोता इस गौरवशाली यात्रा का एक अनमोल रंग बन जाता है गौरव। और 90 सालों के हर दिल की धड़कन पर अनमोल दस्तक देती एक आवाज, आकाशवाणी, जहां शब्द बनते हैं एहसास और सुर बन जाते हैं यादें।
0: क्या खूबसूरत बात कही आपने। और पीढ़ियां बदली, तकनीक बदली, लेकिन भरोसे की आवाज वही रही,
1: आकाशवाणी। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना के साथ वर्ष का सफर, यानी 90 वर्ष का सफर।
0: 90 वर्ष की खूबसूरत सी चर्चा से आज हम नवा प्रोग्राम का आगाज हो गया है। इट्स रियली सो नाइस, एंड रियली वी आर रियली ग्रेटफुल और वेरी ग्रेटिट्यूड फॉर आवर लिसनर्स कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, जहां आज हम अपने पूरे 90 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, बट आज और भी ना बातें हम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें और भी करेंगे। और क्या बातें करेंगे, इतिहास के आईने में आज क्या खास होगा, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग, इस पर चर्चा होगी। सुमित अंतिल जो पैरा एथलीट है, और महेश भूपति आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो थोड़ी सी बधाई हम भी देंगे आज उनको। जी, जी, और अच्छी सेहत, 1000

0: नेमत, ये तो मानी हुई बात है, है तो इस पर हम चर्चा करेंगे और ज्ञान विज्ञान में बहुत खास बात होगी आज, भोजन के प्रमुख घटक क्या क्या होने चाहिए,
1: साथ ही साथ होगी रेसिपी और दोस्तों सेहत से जुड़े हुए हम आपसे पूछेंगे दो क्वेश्चन और उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमें ईमेल द्वारा देने हैं, है ना।
0: तो प्रश्न गौरव ये है पहला कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से मिलता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है और इस प्रश्न का उत्तर हमें आपको देना है, मेल आईडी है ARI@gmail.com।
0: और एक प्रश्न और मैं पूछना चाहती हूँ गौरव, वो बता दूं कि खाना खाने से पहले कौन सी ऐसी अच्छी आदत है जो हमें बीमारियों से बचाती है।
1: बिल्कुल सही आपने ऐड किया है,
0: तो एक बार मेल, हाँ मेल हम भी सोच रहे रिपीट कर दें, ARKANSOMEDIA@gmail.com। तो फिलहाल एक गाना सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: जी हाँ दोस्तों, आप ये खूबसूरत गाना सुन रहे थे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष, जिसके असली जिसका जो असली क्रेडिट है ना, वो हमारे लिसनर्स को जाता है और कितनी शिद्दत से वो हमें सुनते हैं और ना जाने मतलब कैसे कैसे साधन ढूंढते हैं हम तक पहुंचने के लिए. लाइक हमारी ईमेल आईडी तो उनके पास है ही, फ़ोन भी हैं, एप्लीकेशंस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाते हैं और अपनी जो प्रेजेंस है ना
1: वो बना के दिखाते हैं हमें महसूस कराते हैं कि हम आपके साथ हैं.
0: जी बिल्कुल सही.
1: और आज मैं लिसनर से ये भी कहना चाहूंगी कि वाकई में हमें बहुत अच्छा फील होता है जब आपकी मेल्स हम तक आती हैं और हम आपकी मेल से जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप यहाँ हमारे सामने बैठे हो. इस 90 वर्ष के जश्न में चार चांद लग जाता है.
0: बिल्कुल सही. और आपके विचार हम तक पहुँचते हैं, हमारी और आपकी जो बातें होती हैं वो तो बस यूं कह लीजिए कि लाजवाब.
1: बिल्कुल बेमिसाल. और गौरव देखो ना, आज 7 जून और 7 जून को हर साल बहुत एक खास सेलिब्रेशन हम करते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज के दिन हम मनाते हैं. और इस दिन को ना मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो एकदम साफ और स्पष्ट है. कहने का मतलब यह है कि जीवन में सिर्फ स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण करना नहीं चाहिए, बल्कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है. क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन मतलब बिल्कुल ताजा भोजन सबसे बड़ी कुंजी है.
0: बिल्कुल सही बात है. और मान लीजिए बहुत ही अच्छी बात कही आपने, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया. और ये संदेश लेकर हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस. उद्देश्य साफ होता है, मतलब लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूक करना, ताकि लोगों को भोजन से होने वाली बीमारियों से रोका जा सके. मान लीजिए एक बात और बता दूं कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के सहयोग से मनाया जाता है. और ये बहुत ज़रूरी भी है. हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं इस कहावत को ज़रूर फॉलो करते होंगे कि भाई हम जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं. तो हम क्या खा रहे हैं, हम क्या कैसे खा रहे हैं और किस तरह का खा रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है.
1: दो बातें हैं लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है.
0: बिल्कुल सही बात है,
1: है ना. और WHO और FAO संगठनों के द्वारा पहली बार 7 जून सन 2019 को ये दिवस मनाया गया. और हर बार इसकी एक थीम गौरव डिसाइडेड होती है. और इस बार सन 2026 में जो है इसकी थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी कि समस्या से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन. और पता है ये थीम जो है ना इस बात पर जोर देती है कि वैज्ञानिक जानकारियों और सही आंकड़ों के आधार पर हम खाद्य जनित बीमारियों को कम कर सकते हैं और सभी के लिए सुरक्षित भोजन को सुनिश्चित कर सकते हैं.
0: बिल्कुल सही बात है. क्योंकि देखिए हम एक ऐसे ग्रह पे हैं जहाँ पर जो है एक साइकिल है, एक फूड साइकिल है ना. तो हमें हम भी उसका एक हिस्सा है. तो हमें खाने के प्रति जो है बहुत संवेदनाएं रखनी है, हम कैसा खा रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है.
1: Exactly.
0: मतलब सिर्फ स्वाद ही नहीं, सुरक्षा भी जरूरी है. क्योंकि असुरक्षित भोजन बैक्टीरिया, वायरस या दूषित तत्वों के कारण कई बीमारियों की वजह बन सकता है. हमारे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI लगातार काम कर रहा है. बाजार में खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है, प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग होती है और गुणवत्ता के मानकों पर उन्हें परखा जाता है. और इसी बात पर FSSAI के अधिकारी मिस्टर धर्मेंद्र द्विवेदी क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं.
2: नमस्कार मित्रों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी है और मैं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग कानपुर नगर में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ. संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO के द्वारा प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को दूषित भोजन व पेय पदार्थ से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से जागरूक करना है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए FSSAI के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं, जागरूकता कार्यक्रमों व प्रवर्तन के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए IEC के माध्यम से
3: छात्रों, उपभोक्ताओं व खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक करते हुए उनको सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की पहचान करने की प्रक्रिया को बताया जाता है। जैसे FSW के माध्यम से लोगों को अपने खाद्य व पेय पदार्थों की प्राथमिक जांच करवाना, छोटे छोटे टेस्ट के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता स्वयं जांचना, लेबल पर लिखी जानकारी से शुद्धता की पहचान करना शामिल रहता है। FSW एक चलती फिरती प्रयोगशाला है जिसमें संपूर्ण जिले में दिवसवार स्थानों को चिन्हित करके आम जनमानस को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उस स्थान पर आकर वह अपने खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच करवा सकते हैं। FSSAI के द्वारा ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है जिसके लिए एक लोगो उन्होंने बनाया है। लोगो में 7 रंगों में ये विभक्त करके बताया गया है कि आम जनमानस को अपने भोज्य पदार्थों में अनाज और दालें, चीनी या फैट, दूध या दूध उत्पाद, मांस मछली, फल सब्जियां, पानी वगैरह किस मात्रा में और कितना लेना चाहिए। FSSAI के द्वारा अपने पोर्टल पर विभिन्न बुक प्रदर्शित की गई हैं, जैसे कि येलो बुक जो कि बच्चों के लिए FSSAI के द्वारा डिजाइन गाइड है जो बच्चों को खाद्य पदार्थों में पोषण और पर्सनल हाइजीन के लिए जागरूक करती है। ऐसे ही एक थिंक बुक होती है जो रसोई में हाइजीन और पोषण के लिए बनाई गई है। FSSAI के द्वारा पोर्टल पर डार्ट बुक भी मिलेगी, DART डार्ट। इसमें रैपिड टेस्ट बताए गए हैं कि कैसे एक आम व्यक्ति अपने घर पर ही खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने के लिए छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से जांच कर सकता है। उपभोक्ताओं को ये भी जागरूक होना चाहिए कि FSSAI के द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइंस के द्वारा फूड फ्रॉड को कैसे पहचान सकते हैं। इसके लिए विभिन्न समाचार पत्रों में समय समय पर चीजें प्रकाशित होती रहती हैं। आम जनमानस से हमारी ओर से ये जरूर अपील की जाएगी कि जब भी कोई खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ वो खरीदें तो निश्चित रूप से वो एक लाइसेंसी व्यक्ति प्रतिष्ठान से ही खरीदें। खाद्य पदार्थों की क्वालिटी अथवा मिलावट के संदर्भ में विभाग को सूचित करने के लिए FSSAI की टोल फ्री नंबर 1800180553 पर अथवा FSDA लखनऊ के नंबर 1076 पर सूचना देकर विभाग की मदद कर सकते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही है सर ने और जो कि हम सबको समझने के लायक है ना। और ये यूं ही नहीं कहा गया है कि अच्छी सेहत और हजार नेमत जो कि है इस प्रोग्राम का अगला टॉपिक। तो मान लीजिए इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनको एक गाना सुना दिया जाए।
1: बिल्कुल, हमने गाना प्ले कर दिया है।

0: गौरव, ये जो गाना था ना, इसकी म्यूजिक जब चली तो ऐसा लगा था किसी सेलिब्रेशन से हम जुड़े हुए हैं, और जब बात सेलिब्रेशन की हो तो जब हम स्वस्थ होते हैं तो सेलिब्रेशन भी तभी अच्छे लगते हैं।
1: एग्जैक्टली, मान लीजिए हम एक सेलिब्रेशन में ही हैं, और ये बिल्कुल बात सही की आपने कि भाई सेलिब्रेशन स्वास्थ्य जो है ना वो साथ साथ होता है।
0: बिल्कुल, जब हम अच्छा तो मूड हमारा अच्छा होता है, हम एंजॉय कर पाते हैं सेलिब्रेशन को। और जब देखो स्वास्थ्य की बात चलिए, पहले तो स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ बहुत सारी मेल्स आई हैं, लेकिन दोस्तों चलिए आपके मेल्स को हम शामिल जल्दी से करने वाले हैं। और
1: लेकिन उससे पहले कुछ
0: एक बार क्वेश्चन और, हाँ, हाँ एक बार रिमाइंड करा दे लोगों को कि हम आपसे पूछे थे कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से मिलता है, और खाना खाने से पहले कौन सी सबसे अच्छी आदत है जो हमें बीमारियों से बचाती है। तो हमने कहा था हमें मेल करिए और बन जाइए प्रोग्राम का हिस्सा। हमारी मेल आईडी है arkansomedia@gmail.com।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, तो अपने विचार ईमेल द्वारा भेजते रहिए, तब तक हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। लेकिन आजकल हम सब ना माया यानी पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि उस पहले सुख यानी कि अपनी सेहत को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी और 100% सच कहावत पर, जो है अच्छी सेहत हजार नेमत।
0: वाह क्या बात कही है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है और ये कहावत काफी हद तक गौरव सत्य है। हेल्थ का असली मतलब जरा सोचिए कि आपके पास दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा हो, सबसे महंगी गाड़ी हो, और गाड़ी में डालने के लिए फ्यूल के पैसे हों आपके पास, और क्या वो चलेगी? जाहिर सी बात है, मतलब जब गाड़ी महंगी होगी चलेगी तभी जब हम स्वस्थ होंगे, हैं, लेकिन जब हम स्वस्थ नहीं हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार है। हमारा जो शरीर है ना,
1: बिल्कुल सही है, हमारे पास महंगी से महंगी चीजें हों और अगर हम उसको यूज ना कर पा रहे हों, जैसे कि अब महंगी गाड़ी की बात कही आपने, उस महंगी गाड़ी में अगर फ्यूल ना हो तो फिर उसका चल पाना तो मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल मुनासिब है।
0: बिल्कुल, वो मतलब ऐसी खड़ी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े हैं बड़े हैं, अरे हमारी सेहत अच्छी है तो शायद हम सबसे रिच पर्सनैलिटी है। और हम उस वक्त जब कुछ भी पहनते हैं, चाहे हम किसी भी चीज में घूमते हैं, इसका हमें मतलब दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही

0: मतलब उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
1: इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये बात बहुत जग जाहिर है कि हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस हो, हमारा बहुत रुतबा हो, हमारे पास दुनिया की हर खुशी हो, लेकिन हम अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है तो ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं नीरस रहती है। और जब सेहत अच्छी हो ना तो ज़िंदगी हर हाल में मुस्कुराती हुई से लगती है। अक्सर लोग सोचते भी हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, तो दोस्तों ऐसा सोचना थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि अच्छी सेहत का जो मतलब है ना वो सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं है, इसमें आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी शामिल है। अगर दिमाग में हर वक्त स्ट्रेस का ट्रैफिक जैम लगा रहेगा ना
0: exactly.
1: तो भाई शरीर कैसे मुस्कुराएगा।
0: अब देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम अंदर से बहुत खुश हैं, हम तभी खुश हैं जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, स्वस्थ हैं, है ना, तो तभी हम मुस्कुरा पाते हैं। वरना ये मुस्कुराहट हमारे लिसनर्स को कैसे कनेक्ट करेगी जो कि हमें मेल्स बता रही हैं है ना, और जल्दी मेल कह रही हैं कि भाई जल्दी से हम पर भी निगाह डालिए। लेकिन यहाँ पर एक सेहत से जुड़ी हुई एक बात पर और चर्चा करना चाहते हैं कि गौरव सवाल ये उठता है कि इस हजार नेमत को पाया कैसे जाए जो सेहत से जुड़ी है। इसके लिए जो है हमें जिम में 2 घंटे पसीना बहाना या फिर उबली हुई सब्जियां खाना जरूरी नहीं है, है ना। शुरुआत बहुत छोटी सी चीजों से कीजिए, जैसे कि सुबह की धूप में 15 मिनट बिताना यानी विटामिन डी लेना, और दिन भर में खुद को हाइड्रेट रखना यानी कि पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के चक्कर में ना अपनी 7 घंटे की नींद से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में हर चीज का रिप्लेसमेंट मिल सकता है बट इस शरीर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यह आपका एक लौता परमानेंट एड्रेस है, तो इसकी देखभाल दिल खोल कर कीजिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और इसके बिना कोई महफिल में रौनक नहीं है। फिलहाल हमारे हमनवा प्रोग्राम की महफिल में रौनक लेकर आए हैं हमारे लिसनर्स जिन्होंने हमें ईमेल किया है।
0: हाँ, एक स्क्रीन पर दिख रहा है मोनू सेठ, ये हैं खालिसपुर उच्च गांव भेल अमेठी से। वैसे गौरव, इनकी मेल ना हमारे पास लगातार आती रहती है और बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं, और ऐसा लग रहा है मतलब ऐसा लगता है कि हमारे नए नए लिसनर्स हमसे कनेक्ट होते हैं, तो बड़ा हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें पॉजिटिविटी फील होती है। हम यहाँ स्टूडियो में बैठे होते हैं और लगता है हमारे साथ कितने सारे लोग हैं। और इन्होंने बहुत उत्तर सही दिया है कि विटामिन डी मिलता है, जो सुबह की कोमल धूप होती है ना उससे विटामिन डी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। वेरी गुड, वेल डन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इन्होंने
1: बहुत एक विशेष बात भी लिखी हुई है कि भाई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ना हफ्ते में कुछ दिन 15 से 20 मिनट तक धूप में बैठना ही बहुत होता है, है ना। बहुत
0: और गौरव दिख रहा है मुझे, दूसरे क्वेश्चन का भी इन्होंने जवाब दिया है, खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन और बहते पानी से, देखो बहुत गहरी बात लिखी है इन्होंने, बहते पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं ताकि कीटाणु पेट में ना जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये मतलब माना गया है, तो मतलब इन्होंने जो बहता पानी लिखा है ये बहुत बड़ी बात लिखी है। और एक और नीचे लिखा है, पानी पिए, खाना खाने के ठीक पहले या बीच में ज़्यादा पानी ना पिए, बल्कि भोजन से 30 मिनट पहले 1 से 2 ग्लास पानी पीना पाचन के लिए अच्छा होता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और जो है ना महक ना आ रही हो इस तरह का जो है आपको भोजन सिलेक्ट करना है। कई बार होता है कि हम घर के बाहर होते हैं और जाने अनजाने हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाहर होते हैं और हाथ धोने की जगह नहीं होती है,
0: नहीं होती है।
1: उस कंडीशन में दोस्तों कोशिश करिए कि किसी तरह से भी जो है आप हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करिए या फिर किसी भी तरह से सैनिटाइज करिए।
0: एग्जैक्टली,
1: हाथ धोना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए भी है कि भाई हम अगर बाहर हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों को हाथ लगाते हैं और जाने अनजाने कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरियाज हमारे हाथों पर या फिर हमारी फिंगर टिप्स पर जो है बिन बिलाए आ जाते हैं।
0: और अब एक मेल हमारी स्क्रीन पर और दिख रही है।
1: हाँ जी बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो लिखा हुआ है, सूर्य से मिलने वाली विटामिन डी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। जो ये मेल लिखने वाले हैं अनिल कटियार, ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेल का।
0: हाँ, इनकी भी मेल बड़ी मतलब काफ़ी कनेक्टिंग थी। देखिए सब ने सही जवाब दिया। एक हमारे पास मेल आई है, देविन तालाब लालपुर शिवराजपुर से, टीएस चंदेल, खुशबू सिंह चंदेल, निष्ठा, रौनक, कार्तिक, भारत सिंह चंदेल
1: जी,
0: गौरव भैया, मालिनी मैम को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम सुन रहा हूँ।

0: भी कार्यक्रम बहुत ज्ञानवर्धक लगते हैं, जो हमनवा में आप लोगों के माध्यम से जानकारियां सुनने को मिलती है बहुत ही रोचक रखती है। थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल करी और आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और देखिए एक मेल और स्क्रीन पर दिख रही है, क्या लिखा है गौरव इसमें?
1: जी बिल्कुल सही है, सोनू परवाना जी ने हमें ईमेल किया हुआ है और उन्होंने एक श्लोक लिखते हुए कहा है कि श्लोक सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तप्ति रवि सत्येन वाति वाश्चु सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ उन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, सत्य से पृथ्वी धारण होती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु चलती है और सूर्य देवता हमें विटामिन डी भी देते हैं। बहुत खूब, बहुत
0: ये है सोनू परवाना, ये है खालिसपुर बाजार शुक्ल मोड़ अमेठी से इन्होंने मेल करी है। भाई इतनी दूर दूर से लोग हमें मेल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितना कनेक्ट करते हैं हमसे। तो अभी तो फिलहाल मेल्स हमारे पास और जब तक आए तो क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल माली जी, नेकी और पूछ पूछ।

0: अमेठी से इन्होंने मेल करी है। भाई इतनी दूर दूर से लोग हमें मेल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोग कितना कनेक्ट करते हैं हमसे। तो अभी तो फिलहाल मेल्स हमारे पास, और जब तक आए तो क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल माली जी, नेकी और पूछ पूछ।

0: Hi, this is Udit Nalay. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट. दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को.
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी. देश के विकास में सहभागी बने.
3: 102.2 FM रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम नवा, मेरे यानी आज गौरव के साथ और आरजे मालनी के साथ. तो मालनी, आज हम विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट करके एक अच्छे और स्वस्थ खान पान की बात भी कर रहे हैं ना. वैसे भी जो रेसिपी की जो है ना आज की, वो भी जो है तत्वों से परिपूर्ण है, यानी कि आपने
4: पौष्टिक तत्वों से
3: बिल्कुल बिल्कुल जो भी रेसिपी जो आप लेकर आए ना, वो उससे पूरे जो है विटामिन्स मिलने वाले हैं. तो श्रोताओं, आप प्रोग्राम में बने रहिए हमारे साथ. और संतुलित भोजन क्या होता है, ये बात जब हम करते हैं ना, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई अच्छा खाना खाओ और स्वस्थ रहो. लेकिन बात ये होती है कि हमारे भोजन की थाली हेल्दी हो तो उसमें क्या क्या होना भी जरूरी है, है ना.
4: बिल्कुल सही कहा गौरव. आज ज्ञान विज्ञान में हम एक स्वस्थ थाली की, यानी कि भोजन के प्रमुख घटक की चर्चा चलो करते हैं.
3: जरूर, तो बताएं.
4: अच्छा, भोजन जैसे होता है, रोज हम मनचाहा खाते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये देखते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस थाली में हमारे शरीर को ऊर्जा, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व हैं कि नहीं. शायद बहुत ध्यान से हम कभी नहीं देखते. आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में इन बातों का ध्यान कम ही लोग रखते हैं गौरव. और हमारी रोज की थाली में कुछ प्रमुख घटक जो है बहुत जरूरी हैं, और वो रोज होने चाहिए. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर है, आयरन है, और सबसे महत्वपूर्ण पानी का सही मात्रा में इनटेक होना बहुत जरूरी है.
3: अब बात आती है सभी चीज़ों का हमारे शरीर में रोज का क्या काम है. तो चलिए आपको बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का एक मुख्य फ्यूल होता है, और ये हमें मिलता है रोटी, चावल, बाजरा, ज्वार, ओट्स और आलू वगैरह से. हमारी बॉडी को करीब 50-60% कार्बोहाइड्रेट की रोज़ ज़रूरत होती है. और अब बात करते हैं प्रोटीन की, तो ये शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के निर्माण के लिए ज़रूरी है. नॉर्मली एक एडल्ट को प्रति किलो वजन पर 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए होता है, है ना. दालें, पनीर, सोयाबीन, अंडे, दूध, दही और अंकुरित अनाज इससे अच्छे स्रोत होते हैं.
4: बहुत अच्छा सा गौरव हमने जानकारी बताई हमारे लिसनर्स को. आई थिंक हमारे लिसनर्स वैसे काफी ध्यान रखते होंगे. और मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ मेल का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मेल अभी हम फिर शामिल करते हैं गौरव. यहाँ पर ना अब हम बात करेंगे फैट की. हमारी बॉडी को कितना फैट इनटेक करना चाहिए. फैट को अक्सर गलत समझते हैं लोग, लेकिन सीमित मात्रा में ना हेल्दी फैट शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. और ये जो फैट होता है ना, ये हमें मिलता है मूंगफली से, तिल से, अलसी से, मेवे से, और सीमित मात्रा में घी या तेल से. और अब हम कौन से तेल का सेवन कर रहे हैं ये भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, है. तो इन सब के सेवन से हमें फैट मिलता है. इससे क्या होता है, एक तो हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, और साथ साथ गुड फैट शरीर में कई विटामिन के अवशोषण में भी मदद करता है.
3: जी बिल्कुल. और सिर्फ फैट ही क्यों, एक्चुअली जितने भी हमारे विटामिन्स हैं ना, हमारे शरीर को हमेशा ही जो है हेल्प करते हैं ग्रो के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए और स्ट्रेंथ के लिए. तो विटामिन की बात पर मैं बताना चाहूँगा कि रंग बिरंगे फल और सब्जियाँ हमारी थाली की शान होनी चाहिए, है ना. रोज़ के भोजन में विटामिन को रखने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो बढ़ती है, और हड्डियां मजबूत होती हैं.
4: यानी कि हमारी भोजन की थाली संतुलित आहार से सजी धजी होनी चाहिए. भाई जैसे हम तैयार शैयार होकर के घूमते हैं फिरते, तो भाई ऐसे भोजन की थाली को भी हमें सजा कर लेना चाहिए. और सच बताएं, जब ये थाली सजी होती है ना, तो

0: खाने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, हमारी भूख दोगुनी हो जाती है। और गौरव, संतुलित थाली में दो इम्पोर्टेंट चीजें और भी होनी चाहिए, एक तो आयरन और दूसरा फाइबर।
1: बिल्कुल सही है, और फाइबर यानी कि रेशेदार आहार, ये हमारे पाचन तंत्र को ना दुरुस्त करता है और अच्छा दोस्त भी होता है ये हमारे डाइजेशन के लिए। और हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, हम हेल्दी रहेंगे, भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से होगा। और एक एडल्ट को प्रतिदिन लगभग 25 से 35 ग्राम फाइबर जो है चाहिए लेकर उसके हेल्थ के लिए, इतना फाइबर उनको चाहिए होता है। और आयरन की बात करें तो वयस्क पुरुष को लगभग 8 से 10 मिलीग्राम और महिलाओं को 18 मिलीग्राम के आसपास आयरन ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। तो गर्भावस्था में भी जो है उन्हें आवश्यकता पड़ती है इस चीज़ की, और चीज़ बढ़ जाती है। इसके लिए डॉक्टर ना ऐसे जो महिलाएं हैं डराई लेती हैं और उनको रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप आयरन से रिलेटेड जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, और उनको जो है ज़्यादा
0: खाएं, लेकिन डॉक्टर से सलाह भी लेती रहे बीच बीच में। सलाद है, हरी सब्जी और मौसमी फलों को ज़रूर खाना चाहिए भाई, जो भी सीज़न में आ रही हैं। जैसे इन दिनों आम का मौसम चल रहा है, तो हम जो कहेंगे आम आ रहा है मार्केट में, आप उसको ज़रूर खाइए, बिल्कुल छोड़िए नहीं, वैसे भी आम फलों का राजा होता है। और सही मात्रा में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए भाई, दिन भर में ना एक स्वस्थ इंसान को लगभग 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर इनटेक करना चाहिए। पानी से हमारी बॉडी एक तो हाइड्रेटेड रहती है, और दूसरा पानी पोषक तत्वों को पचाने में हमें मदद भी करता है। एक संतुलित थाली में रोटी, चावल, एक कटोरी दाल, हरी सब्जी, सलाद, दही और कोई भी मौसमी फल हमें जरूर शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और याद रखिए रंग बिरंगी और संतुलित थाली ही अच्छे स्वास्थ्य की सबसे आसान और स्वादिष्ट कुंजी है।
0: और एक हमारे पास मेल आई है, ये है आंचल सेठ, खालिसपुर से है। विटामिन डी मिलता है सूर्य भगवान से, और हाथ धोना बहुत जरूरी है खाना खाने से पहले, वो भी अच्छी तरह धोना चाहिए साबुन से। तो देखो इन्होंने भी मतलब बड़ी अच्छी सी बात कही है, और मेल आई इनकी देर से, लेकिन प्रोग्राम में कनेक्ट होने के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम आपको एक बढ़िया सा गाना सुनाते हैं।

0: माली जी, बहुत ही खूबसूरत बातें और बहुत ही बढ़िया तरह से हम जो हमारे लिसनर्स हैं उनसे कनेक्ट हो चुके हैं, और भाई वो भी हमारे साथ कनेक्ट है। और वैसे भी हर दिन खास होता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: हमारे लिए इसलिए भी खास होता है ना कि हमारे जो लिसनर्स हैं ना वो रोज़ हमारे साथ होते हैं। तो हमारे लिए तो दिन वैसे भी खास है, और आज का दिन वैसे भी भारतीय खेल जगत के लिए ना बहुत खास है, क्योंकि आज दो ऐसे महान खिलाड़ियों का जन्मदिन है जिन्होंने दुनिया भर में तिरंगे का मान बढ़ाया है।
1: बहुत गर्व होता है ऐसे लोगों का नाम लेके, जिसमें पहला नाम है सुमित अंतिल का, जो टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करने वाले हमारे जेवलिन स्टार थे।
0: बिल्कुल सही।
1: और इनके साथ एक जो है ऐसा दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्यवश 17 साल की उम्र में एक हादसे ने सुमित का पैर छीना, लेकिन उनके हौसलों को बिल्कुल नहीं छीना और ना छू सके। एक या दो बार नहीं बल्कि 7 बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं सुमित अंतिल। सुमित अंतिल हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, अगर इरादा पक्का हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आज सुमित अंतिल मना रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे।
0: जी बिल्कुल सही है दोस्तों। और जो भी आज सफलता के मकाम पर पहुंचा है उसने दर्द भी बहुत झेले हैं, और यहीं पर हमारे पास दूसरा नाम है, टेनिस की दुनिया में भारत का तिरंगा सबसे पहले बुलंद करने वाले महेश भूपति का, जिन्होंने लिएंडर पेस के साथ मिलकर कोर्ट पर वो खेल खेला कि दुनिया देखती रह गई। 12 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले लीजेंड्स को सलाम और हैप्पी वाला बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे दोनों को। आज दोनों अपना हैप्पी वाला बर्थडे मना रहे हैं, और एक बहुत खास दिन भी है गौरव आज। तो जब सारे आज के दिन की खासियत की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसकी भी आज थोड़ी सी चर्चा कर ले, हमारे लिसनर्स को भी पता चलनी चाहिए।
0: मुझे तो लगता है कि ये भारत इतिहास के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि 7 जून की तारीख का भारत के इतिहास और महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा के विचार से बहुत ही गहरा और अनोखा नाता है। दरअसल 7 जून सन 1893 वही ऐतिहासिक दिन था जब दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था, और यही वो घटना थी जिसने सविनय अवज्ञा के बीज को बोया।
1: कितना मतलब डिफरेंस था, मतलब ये हमने एक फिल्म देखी थी उसमें जब हमने ये देखा तो बहुत खराब लगता है इस तरह से उनके साथ की गई जो बदसलूकी थी। तो उस समय जब महात्मा गांधी होंगे तो उनको कैसा फील होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी सी जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ या चिंगारी उनके मन में जागृत हुई, इसके प्रति उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट किया, शुरू किया। आज से ठीक 133 साल पहले हुई इस महान घटना ने सिर्फ एक भारतीय वकील की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरी दुनिया को आजादी का एक नया मंत्र दे दिया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन।
0: साउथ अफ्रीका की इस घटना ने महात्मा गांधी को सिखाया कि अन्याय का विरोध करने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने इसी सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता के साथ कानून मानने से इनकार करना को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और इसी हथियार को प्रयोग करके उन्होंने चंपारण और खेड़ा सन 1917 में किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंग्रेजों का आदेश मानने से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ठुकरा दिया।
1: क्या बात है, महात्मा गांधी शायद ये हमारे देश का बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, मोहनदास करमचंद गांधी, और आने वाली पीढ़ी भी शायद इस नाम से वाकिफ होती रहेगी। सन 1930 की मैं बात बताऊं, सन 1930 में ना नमक सत्याग्रह भी हुआ, जब अंग्रेजों ने नमक जैसी बुनियादी चीज पर टैक्स लगाया तो बापू ने दांडी मार्च निकाल करके विनम्रता से बिना किसी हिंसा के उस कानून को तोड़ दिया। क्या भाई वाह, क्या बात थी। अंग्रेजों के पास तोपे थी, बंदूक थी, लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का उनके पास कोई तोड़ नहीं था, कोई जवाब नहीं था।
0: बिल्कुल। और जरा सोचिए कि अगर उस रात बापू डर कर चुपचाप बैठ जाते तो शायद आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग करके साबित किया कि शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है आत्मा की ताकत, और शायद इसीलिए आज हम कहते हैं कि बंदे में था दम।

0: तो दोस्तों प्रोग्राम हमनवा में हम चलते चलते आप पहुंचे हैं प्रोग्राम के एंड तक, जहां आपका इंतजार कर रही है एक बढ़िया सी रेसिपी।
1: अच्छा, आज हम लोगों ने बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट, फैट, गुड फैट की बातें करी है, तो आज की जो रेसिपी है ना वो भी मिरेकल है, वो इन सब चीजों से मिलकर ही आपके लिए तैयार की गई है। तो जल्दी से कॉपी पेन अपना रेडी कर लीजिए।
0: एक्चुअली मान लीजिए बात ये है ना कि मैं अभी से हेल्दी फील करने लगा हूँ, आज इतनी है की बात हुई है। तो फिलहाल दोस्तों आज रेसिपी भी हमारी जो है वो बहुत हेल्दी है, और आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स्ड वेज पनीर पोहा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक कप पोहा, 100 ग्राम पनीर जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम के लिए, एक छोटा गाजर, विटामिन ए के लिए एक शिमला मिर्च, विटामिन सी के लिए आधा कप मटर प्रोटीन और फाइबर के लिए एक टमाटर, एक बड़ा चम्मच मूंगफली या भुने हुए बीज हेल्दी फैट मिनरल्स के लिए, एक छोटा चम्मच घी या ऑलिव ऑयल, नींबू, हरा धनिया और नमक स्वादानुसार।
1: अब मेन बात मैं बताऊंगी गौरव, चलो गौरव ने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं,
0: सामान लाके दे दिया मैंने आपको, अब आप बनाएंगे।
1: यानी पूरा तुमने घर वाला अपना जो है एटीट्यूड निभाया। चलिए कैसे बनाना है हम बताते हैं आपको। पोहे को धो करके 2 मिनट के लिए रख देना है आपको, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। पैन को पहले गैस पे चढ़ाना है, पैन में डालेंगे घी या तेल, ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, हेल्दी होता है, फिर या चाहे आप अच्छा मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है पहले मूंगफली को हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब इसमें मटर, गाजर, शिमला मिर्च को हल्का भून लेना है हमें डाल करके। जब ये भून जाए तो अब इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े डाल लेने हैं, है 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह इन्हें भून लेना है। जब ये थोड़ा सा भून जाएंगे तब पोहा इसमें डालना है। पोहे में स्वाद अनुसार आपको नमक डाल देना है, नमक डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं, लगभग 1 से 2 मिनट तक हमें चला लेना है इन सब चीज़ों को। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून कर ऊपर से आधा नींबू का रस निचोड़ना है और हरा धनिया से हमें गार्निशिंग करनी है इसकी। और जब पोहा रेडी हो जाए तो जो मूँगफली के दाने हमने रोस्ट करके रखे थे उनको ऊपर से हम डालेंगे, क्योंकि असल में होता क्या है ना, जब मूंगफली के दाने हम पहले से डाल देते हैं तो वो खाने में थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसे क्रंची क्रिस्पी लगते हैं ऊपर से डालने में, तो जैसा आप खाना चाहें। और पता है इस पोहे में गौरव होता क्या क्या है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। ये पोहा इन सब चीजों से भरपूर है।
0: क्या बात है, आपने तो मतलब इतनी बढ़िया डिश बनाई है, उसका जो टेस्ट है वो तो मैं फील कर ही रहा हूँ, और साथ ही साथ उससे जो हमें हेल्दी चीजें मिल रही है ना
1: वो हमारी सेहत को
0: और जो है और

0: अच्छा करेंगे।
1: और एक बात और भी है भाई, इन सब चीजों के साथ ना जब हम अंदर से खुश हो, अच्छा फूड मिल रहा हो, तो एक बढ़िया सा म्यूजिक भी हो जाता है ना
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो भाई चार चांद लग जाते हैं। तो एक गाना मैंने प्ले किया है, चलिए एंजॉय करते हैं।

0: और इसी के साथ हम नवा प्रोग्राम से मैं मालिनी
1: और मैं आज गौरव
0: इजाजत चाहेंगे। 3 बजे मिलेंगे म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम के साथ, यानी मैं आरजे मालिनी लेकर आऊंगी म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम। स्टे ट्यून विद अस 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।
1: तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए, खूब मस्ती करिए क्योंकि आज संडे भी है। फिलहाल इस प्रोग्राम से अपने रेडियो दोस्त गौरव को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के माध्यम से ही प्रदेश की नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री कल गोंडा में 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कल ही तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वास्थ्य और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने कल वहां दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले

संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधि मंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं को से रूबरू कराना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की दावों को खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर। फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
3: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: नमस्कार, हेल्थ एंड फिटनेस में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट समरीन। और दोस्तों, अक्सर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो अचानक सामने आती हैं, और उस समय घबराहट में उठाया गया एक गलत कदम मरीज की स्थिति को और गंभीर बना सकता है। ऐसी ही एक स्थिति है दौरा यानी कि फैट्स, जिसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि दौरा पड़ने पर घबराएं नहीं बल्कि सही कदम उठाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो हमें बताएंगी कि दौरा क्या होता है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन परिस्थितियों में तुरंत अस्पताल जाना आवश्यक हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
5: थैंक यू, धन्यवाद।
2: इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आप सबको बता दूं, जो अभी हमारे साथ हेल्थ एंड फिटनेस में जुड़े हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं

0: 2238845 पर। ये वो मैजिकल नंबर है जहां पर आपकी हर प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसका सलूशन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर फोन लाइंस बिजी हैं और आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि फिट्स क्या होते हैं, दौरे होते क्या हैं और ये क्यों होते हैं।
1: दौरों का डर भी बहुत ज़्यादा है आजकल सब में और जी बहुत सारी बातें ऐसी भी फैली हुई हैं जो सही नहीं है। तो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दौरे होते हैं वो हमारे ब्रेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कीटाणु हो, कोई गांठ हो, कोई जेनेटिक नुक्स हो या कोई बनावटी नुक्स हो, तो वो हिस्सा हमारा ब्रेन का जो होता है वो दूसरे हिस्सों के मुताबिक एक्साइटोटॉक्सिक हो जाता है। मतलब उसमें एक तरह की तेजी आ जाती है जो करंट जैसा फ्लो करके बाकी ब्रेन में करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से कभी हाथ पैर टाइट हो जाना, हाथ पैर लूज हो जाना, जोर जोर से हाथों पैरों का झटकना, मुंह से झाग आना, आंखें ऊपर हो जाना, कभी कभी जीभ कट जाना, इवन बहुत सटल दौरे मतलब बहुत हल्के दौरे भी हो सकते हैं
0: जी,
1: जैसे एक ही जगह बच्चे का बैठे रहना, एक ही जगह देखते रहना, गुमसुम हो जाना, उस समय रिस्पॉन्स ना करना, आप बुलाओ तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए आपको ऐसा लगता है कि बच्चा हमारी बात सुनता नहीं है और फिर एकदम से ठीक हो जाता है। अच्छा। इस प्रकार के भी दौरे हो सकते हैं,
0: मतलब उसमें जैसे टिपिकल दौरे में देखते हैं कि बॉडी हिलने लगी, वो नहीं होता है, आप चुपचाप बैठे हैं एक जगह तक रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। ओके, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गया है कि क्या क्या संकेत हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर बच्चे को अचानक से दौरा पड़ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
1: अगर आपके सामने ऐसा होता है कि आपके घर में या आपके आसपास किसी को भी अचानक से दौरा पड़े, तो सबसे पहले आपको अगर बच्चे के हाथों पैरों में कुछ भी टाइट कपड़ा बांधा हुआ है तो वो लूज कर देना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे मसल टोन और बॉडी बहुत टाइट होती है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो आपको सब कपड़े, ज्वेलरी वो सब लूज कर देना चाहिए और आपको एक करवट पे लिटा देना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि मुंह से पानी आए, झाग आए, तो वो सब चीजें जो है वो बाहर निकल जाए, फेफड़ों में ना जाए। उसके अलावा हमें मुंह में कोई कोई चम्मच, दवाई, पानी, सॉक्स, जूता कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि वो चीज जो है वो हमारे गले से लंग्स में जा सकती है और हमें तुरंत इमरजेंसी में लेके जाना है। अगर आपके बच्चे को पहले से ही दौरे की शिकायत है और आपके पास नाक में डालने वाला स्प्रे है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन आप अदरवाइज मुंह में कुछ नहीं डालिए, कोई चम्मच नहीं डालिए और कोई दवाई उस समय देने की कोशिश ना करें।
0: अक्सर देखा जाता है कि इधर इंसान बेहोश होके कुछ भी उसका हो रहा है तो सबसे पहले कहते हैं पानी डालो, पानी डालो, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए।
1: मुंह के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए,
0: क्योंकि
1: उस समय बच्चा होश में नहीं है, तो जो भी आप डालोगे वो फूड पाइप की जगह फेफड़ों में, ट्रेकिया में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनको लिखते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल पूछिए आप।
2: मैडम गुड आफ्टरनून, संजय बोल रहे हैं लखनऊ।
0: जी जी संजय बताइए क्या समस्या है।
2: ये डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्ते
2: डॉक्टर साहब, हमको ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे जो बेबी होते हैं, जैसे वो छोटे बेबी होते हैं, 1 ईयर से होते हैं या 2 ईयर से होते हैं, कभी ऑन द बेड से नीचे गिर जाते हैं गलती से, तो क्या मैडम उसमें भी बहुत रिस्की रहता है आगे के लिए उनकी लाइफ जो है?
1: आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन जैसे यूजुअली क्या होता है कि अगर जैसे बच्चा गिरा तो उस समय अगर कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, कि बच्चा अगर बेहोश नहीं हुआ है, उस समय दौरे नहीं पड़े हैं, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया है, तो आप यूजुअली आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर जब गिरा था, जब चोट लगी थी, तो सीटी स्कैन में नुक्स आया, काफ़ी कुछ मतलब वहाँ खून बहा या दौरे ज़्यादा हुए थे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए दौरों की दवाई देनी पड़े और आगे चल के शायद कुछ तकलीफ बने। लेकिन हर बच्चे को गिरने के बाद ऐसी दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं होता है।
2: मैडम ये पूछना है, जैसे अगर बच्चा गिर गया था तो क्या जरूरी है कि उसमें स्कैनिंग कराई जाए या उससे एक्सरे कराया जाए?
1: एक बार करा लेने में क्या रहता है ना, मन की शंका निकल जाती है। अगर बिल्कुल बस बच्चा बस हल्का सा बेड से नीचे गिरा और थोड़ा सा रोया और चुप हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, तो फिर हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर गिरने के बाद भी होश हुआ या खून निकला कान या नाक से या फिर दौरा पड़ा, तो हमें जरूर एक स्कैन करवा लेना चाहिए।
2: थैंक यू मैडम,
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो दौरा है वो थोड़ी उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है

0: उस दौरान क्या करें, क्योंकि फिर हाथ पैर आपके काम नहीं कर रहे होते, आप खुद बहुत घबरा गए होते हैं। तो पहली चीज जो इस तरह की सिचुएशन में हमें करनी चाहिए, एक तो आपने बताया कि करवट लिटा दें, और क्या ऑप्शंस हैं जिससे मरीज को थोड़ा रिलीफ मिले?
1: एक्चुअली एक बार जब सीजर्स शुरू होते हैं और ये जो दौरे लंबे पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन अपने आप ही पूरा एक्साइटोटॉक्सिक हो चुका होता है, उस समय या तो अपने आप दौरे कंट्रोल होंगे या फिर दवाई देने पे कंट्रोल होंगे।
0: अच्छा,
1: अगर एक बार जैसे आप समझ रहे हैं दौरा पड़ गया और वो करंट हमारा ट्रांसमिट होने लग गया है, तो ब्रेन खुद ही सेल्फ एक्साइटोटॉक्सिक हो जाता है। उस टाइम पे एक टाइम के बाद या तो खुद एक्टिविटी कम होती है, अदरवाइज अगर हम मेडिसिन देंगे तो ही कम होगी। सो इसके लिए मेन चीज जो हमें समझनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट मेजर्स ले लिए, साइड में लिटा दिया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हमने प्रिवेंट कर लिया, जैसे हमने सिक्रीशंस को हैंडल कर लिया, उसके बाद हमें जो भी सबसे पास में हॉस्पिटल हो वहां पे लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुरंत एक इंजेक्शन लगा के दौरे को कम करना, रोकना वो जरूरी है। अगर आप किसी दूर के अस्पताल में यूजली दिखाते भी हैं तो भी मेरा एडवाइस ये होगा कि आप एक बार किसी भी आसपास के अस्पताल में चले जाए जो आपके घर से 10-15 मिनट की दूरी पे हो।
0: फिजिशियन को भी दिखा सकते
1: हैं, किसी को भी दिखाइए। ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को पता रहता है दौरे की रोकने की जो दवाई होती है वो दवाई देके एटलीस्ट एक बार दौरा रुक जाए, उसके बाद आप एम्बुलेंस से आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली जल्दी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आधे घंटे से ऊपर दौरा पड़ जाता है तो उसके काफी लंबे डैमेज हो सकते हैं जो फिर कोई भी आगे चल के नहीं ज्यादा रिवर्स कर सकते। सो फर्स्ट स्टेप शुड बी बिल्कुल पास के अस्पताल में जाइए, दौरा रुकवाइए, उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप लेके जाइए।
0: जी डॉक्टर साहब, अब हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस संजीदा मुद्दे पे जो कई लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होता है अगर आप किसी तरह की कोताही, लापरवाही या गलतियां करते हैं। लेकिन अभी माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हुए एक कॉमर्शियल ब्रेक के बाद एक म्यूजिक ब्रेक। थैंक यू।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:19 मैं हूं आपके साथ समरीन। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप हेल्थ एंड फिटनेस, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो हमें आज जानकारी दे रही हैं कि दौरा क्या होता है और इसके क्या नुकसान आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को दौरा है और वो गांव, चूंकि अपने आसपास 70% हमारी आबादी जो है वो गांव में है, दौरे जैसी सिचुएशन आती है और वो उसको ओझा या बाबा या मौलवी के पास लेके जाते हैं, इन दैट सिनेरियोस के क्या साइड इफेक्ट्स, क्या कुछ और बुरा हो सकता है पेशेंट के साथ?
3: ये बात बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे काफी बार दौरों को यही समझा गया कि हाँ, कुछ जिन बच्चे के ऊपर भूत प्रेत का साया हुआ है, लेकिन हमें अब हम 2026 में आ चुके हैं, हम जानते हैं कि ये सब चीजें हमें नहीं सोचनी, और आजकल प्रिसीजन मेडिसिन का जमाना है,
2: बिल्कुल
3: बीमारी की जड़ तक जाके उसका इलाज करने का जमाना है। जीन्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमको ऐसे नहीं सोचना है कि कोई भूत प्रेत आया है, तांत्रिकों के पास जाएं, उनसे गलत सलाह लें और अपने बच्चे को और नुकसान करें।
2: जी जी।
3: क्योंकि देखिए, जितनी बार दौरे पड़ते जाएंगे वो दिमाग पे असर छोड़ता जाएगा।
2: अच्छा, उसका उसका नुकसान भी होता है हर दौरे का?
3: हर दौरा अपना नुकसान छोड़ के जाता है। तो आप अपने बच्चों को सही दवा देके एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, और कहाँ दौरों का नुकसान होता रहेगा और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि हमने कितना बच्चे के लिए डैमेज कर दिया है।
2: मैम, हर दौरे के बाद क्या नुकसान होता है हमारे जहन को?
3: जब हमारे ब्रेन में एक जब भी लंबा दौरा आता है तो उस टाइम पे ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचता है।
2: ओके।
3: तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स होते हैं ब्रेन के वो मरते जाते हैं। तो हमको ये हर दौरा जितना हम बचाएंगे उतना ही हमारा ब्रेन बचा रहेगा।
2: अच्छा, आपसे एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जिन बच्चों को या बड़े लोगों को दौरा होता है उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह की चीजें अपने बैग में रख के ले जाएं कि इंस्टेंट अगर कुछ हो रहा है तो वहां पर लोग उनको मदद कर सकें, जैसे पेरेंट्स अगर टीचर को इन्फॉर्म कर दें कि बच्चों को ये दिक्कत है तो टीचर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? इसके अलावा क्या जिनको दौरा आता है उन्हें

0: ड्राइविंग करनी चाहिए या वो अपनी रूटीन लाइफ जी सकते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है पेशेंट?
1: सही बात है, जैसे मतलब एक बार जब दौरे आते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं दोबारा दौरे आने के लिए।
0: अच्छा।
1: और अगर जैसे दौरों की दवाई देने के बाद दौरे कंट्रोल्ड हैं, 2 साल तक दौरे नहीं आए हैं
0: जी,
1: फिर हम धीरे धीरे जैसे दवाई कम करके बंद कर देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि 5 साल तक बच्चे को दौरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
0: ओके।
1: अगर स्टार्टिंग के टाइम पे जब एक्टिव सीजर्स हैं, दौरे आ रहे हैं, उस समय स्पेशली बहुत जरूरी है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई रहे। इवन हम एडवाइस करते हैं कि रात को सोते समय कोई साथ में सोए ताकि अगर रात में दौरा पड़ रहा है तो वो लंबा या अननोटिस्ड ना जाए। हमेशा आपको साथ में होना चाहिए। इवन अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो साइकिलिंग करके ना जाए, अकेले ना जाए, क्योंकि दौरा आएगा तो कोई होगा नहीं आसपास। और मेजर दौरा ना होते हुए साइकिल से गिरने की वजह से मेजर इंजरी हो सकती हैं, इसलिए साथ में एक कंपनी होना बहुत जरूरी है।
0: प्रिकॉशंस
1: बहुत जरूरत है। स्कूल में टीचर्स को बताएं, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करें, टीचर्स को पता रहे कि हमारे बच्चे को दौरा पड़ने के चांसेस हैं। तो हमारे पास जो स्प्रे होता है जिससे हम दौरे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम हमेशा बच्चे के बैग में रख सकते हैं। दौरा आने पर वो स्प्रे डाल सकते हैं दौरा कंट्रोल करने के लिए। एंड स्कूल में टीचर्स भी अवेयर रहेंगे एंड इवन The other kids will also know. And as a doctor, हमारे लिए वीडियो भी बहुत जरूरी होता है कि कैसा दौरा था, क्या हुआ था। तो टीचर्स को अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: आगे के ट्रीटमेंट के लिए।
0: ओके।
1: ड्राइविंग स्विमिंग इज वेरी रिस्की अगर आपको सीजर्स आए हैं, लेकिन अगर आप 5 साल से ऑफ एंटी एपिलेप्टिक से आपकी दवाइयाँ नहीं चल रही हैं और ईजी भी आपका बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तब हम नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हेलो।
2: हेलो,
0: नाम बताइए अपना।
2: जी, मेरा नाम मृदुल कुमार है, मैं लखीमपुर खीरी से बात कर रहा हूँ।
0: मृदुल, आपकी क्या सवाल है डॉक्टर साहब से, आप पूछ सकते हैं?
2: मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे बच्चा है 1.5 साल का है।
1: हाँ जी।
2: तो ये इसका जन्म हुआ था, रोया नहीं था, तो मैं डॉक्टर ने बताया था मतलब सीपी चाइल्ड है ये। तो शुरुआत में तो इसको दौरे नहीं पड़े थे, मतलब उसके बाद ये जब 6-7 महीने का हुआ, जिसको जुकाम उखाम हुआ, उसके बाद से इसको मतलब सोके उठता था तो एकदम से जैसे चौंक जाते बच्चे, अकड़ जाता था।
1: जब जब सोके उठता था तो ऐसे झटके लेता था, ऐसे एकदम आगे को होके और फिर रोने लग जाता था।
2: जी
1: हाँ जी।
2: हाँ, फिर इसको मैंने दिखाया था तो डॉक्टर साहब ने 2 दवाइयाँ लिखी थी।
1: हाँ जी।
2: एक लेवेरा और एक वो गार्डेनर।
1: अच्छा
2: जी।
1: हाँ जी।
2: तो उससे भी मतलब शुरुआत में तो कम हो गए, बच्चा बंद हो गए, उसके बाद फिर हो गए। तो उन्होंने एक फेनाटोनिन नाम की दवाई यहाँ सजेस्ट की थी, तो उससे भी फिर कुछ दिन फर्क पड़ा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ गया।
1: ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, जब बच्चे को पैदा होने पे दिक्कत हुई होती है, रोए नहीं होते, ये वेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं इस चीज़ को, कि सुबह सो के उठ के इस तरह से झटके आते हैं। तो जो आपने पहले जो दवाइयाँ दे रहे हैं सही है, ऐसे कुछ उसमें गलती नहीं है, पर इसके लिए और भी स्पेसिफिक मेडिसन्स हैं इन्हीं वाले दौरों के लिए, जो हम अगर देंगे जैसे ओमनोकॉटिल है, विगाबैट्रिन है, ऐसी दवाइयाँ देने से ये वाले झटके भी हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। इसका इलाज है और ये झटके पूरे 0% हमें करने होते हैं, बिल्कुल एक भी झटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर ही जो डेवलपमेंट है गर्दन संभालना, बैठना, फिर ही वो बेहतर हो पाता है। जब तक हम इन दौरों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा ठीक से गर्दन भी नहीं संभालता और बैठ भी नहीं पाता है। जब हम इन दौरों को कंट्रोल कर लेंगे तभी वो चीज़ भी ठीक हो पाएगी। एक बार इसलिए ईजी भी करवाना बहुत ज़रूरी है, अरे ब्रेन भी कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बार हम दौरों को अच्छे से देख लें फिर हम उसके हिसाब से दवाई दें। तो ऐसे इसमें घबराने की बात नहीं है, आप मिल सकते हैं, फिर इसकी दवाई देके ज़रूर बच्चा बेहतर हो जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ हैं, उनसे हेलो हेलो हेलो
3: हेलो
0: हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, नाम बता दीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। संजना लहरपुर से बोल रही हैं आप, सवाल क्या है आपका?
3: मैम, हमारा सवाल है क्या मैम दौरा आने से मौत भी हो सकती है?
1: आपका सवाल बहुत सही सवाल है, बिल्कुल यूजली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ऐसे सवाल, पर ऐसा है बिकॉज स्पेशली इसलिए मैंने अभी जस्ट जो बताया था कि बहुत

0: जरूरी है कि रात को बच्चे के साथ कोई सोए, बिकॉज वैसे भी अगर दौरा रोड पे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जिसको हम सुडेप बोलते हैं कि दौरा आते हुए डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या रहता है कि जब बच्चा रात को सो रहा होता है और कोई देखने वाला नहीं होता है, दौरा लंबा पड़ जाता है, सांस एकदम रुक जाता है, तब ऐसा हो जाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है हम पेरेंट्स के लिए, ऐसा पॉपुलेशन के हमें पता हो कि अगर हमारे बच्चे को या हमारे घर में किसी को भी दौरे आ रहे हैं, उस समय कम से कम जब तक दौरे आ रहे हैं 2 सालों के लिए, हम उनको अकेला ना छोड़ें।
1: डॉक्टर साहब, हम अकेला ना छोड़ें ये बात तो आपने बताई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे
0: और दौरे की दवाई कभी छोड़े नहीं, ये
1: जी
0: एक मैं मैसेज भी देना चाहूंगी। ये बहुत गलत हो जाता है कि जब एक पेरेंट्स को, बच्चे को या इवन अडल्ट्स को दौरे की दवाई चल रही होती है, फिर वो एकदम से दवाई छोड़ देते हैं और एकदम से बहुत बड़े दौरे आ जाते हैं, तो कभी भी एब्रप्टली दवाई ना छोड़े।
1: जैसे हर मर्ज के लिए अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो चुके हैं, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हों, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हों, बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अगर किसी को दौरे आ रहे हैं तो वो किस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाए फिजिशियन के अलावा?
0: हाँ जी, तो जैसे दौरे जब भी पड़ते हैं, काफ़ी बार पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जाएं, वो इस वेट में ही सोचते हुए ही काफ़ी हमारा टाइम निकल जाता है।
1: जी
0: तो सबसे अच्छा, अगर आपके एरिया में पॉसिबिलिटी है, जैसे बच्चों के जो न्यूरो के, जैसे हम हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के, तो अगर आप बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो जितने भी बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो आप बड़ों के न्यूरोलॉजिस्ट को भी मिल सकते हैं,
1: अच्छा,
0: लेकिन एटलीस्ट आप किसी ना किसी डॉक्टर को जरूर रीच आउट करें,
1: इन तीनों में से,
0: इन
1: कैटेगरीज
0: तीनों में
1: में से।
0: से सोचे नहीं और आगे चल के मिलिए। जरूर आपको हर डॉक्टर कुछ ना कुछ अच्छा ही बताना चाहेंगे, और हम टाइम, प्रिशियस टाइम ना लूज कर दें, सोचते ही रह जाए।
1: बिल्कुल। तो एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था जब मैं आपसे बात कर रही थी, कि अगर लगातार बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है?
0: यही यही जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर दौरे जो हैं वो लंबे पड़ रहे हैं
1: जी।
0: या फिर मल्टीपल पड़ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। जैसे अगर एब्सेंस इशू, जैसे मैंने बताया कि बच्चा बैठा रह गया, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, या अगर एक छोटा दौरा आया, एक ही बार आया,
1: जी
0: चला
1: जी
0: गया, दवाई दी, बच्चा ठीक हो गया, तो बहुत ज़्यादा असर उसका यूजली नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लंबे दौरे आए हैं, बार बार दौरे आए हैं, तो यूजली उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, जो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वो ब्रेन के एरियाज़ को हमारे डैमेज कर सकती है, जिसके चलते बच्चे की ग्रोथ का, बुद्धि का, विकास होने का, इवन डेवलपमेंट का असर पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहला दौरा पड़ते ही मेडिकल अटेंशन सीख करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
1: डॉक्टर साहब, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर और कनेक्ट हुए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, और आपका सवाल क्या है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
2: नमस्ते,
1: आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप नेटवर्क में ऑफ, उनकी लाइन कनेक्ट हो गई है, डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी हम फिर से एक कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, और जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमसे नहीं कनेक्ट हो पाए हैं उन्हें मैं बता दूं कि 0522-223-8852, 0522-223-8845 वो नंबर हैं जिस पे आप कॉल करके, अगर आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसे इस वक्त मदद की ज़रूरत है और सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर हमसे इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर कॉल आपकी कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, fmakashwadilakhnow@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल हम आपसे लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल और म्यूजिकल ब्रेक।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल, @ हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: कि घर में या आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो दौरे से या फिट से जूझ रहा है, तो किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से उसको इलाज के लिए लेके जाना है और क्या स्पेशलाइज डॉक्टर आप चुन सकते हैं उसके लिए, इस पर हमने अभी तक चर्चा की है। हमारे पास एक डॉक्टर साहब मेल आया है, उनको हम शामिल कर लेते हैं। मेल हमें भेजा है राज जी ने, लिखते हैं, अगर किसी मरीज को मिर्गी का दौरा हर तीसरे चौथे दिन या महीने में दो बार आ रहा हो और उसका दवा इलाज शुरू हो गया हो और उसके बाद कितने समय तक दौरा ना आए, तो हम ये मान सकते हैं कि मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है।
1: जी, अगर हमारे जैसे पेशेंट को इतने ज़्यादा स्टार्टिंग में दौरे आए हैं, फ्रीक्वेंट सीजर्स 3 से 4 बार, तो एक बार हमने जब दवाइयाँ टाइट्रेट कर दी हैं, बढ़ा दी हैं
0: जी,
1: और एक डोज पे दौरे रुक चुके हैं, फिर हमें दवाई को छेड़ना नहीं चाहिए। और अगर हमारा बच्चा ठीक चल रहे हैं, है ना, कोई दौरे नहीं आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, देन वी वेट। एक बार जैसे 2 साल तक अगर कोई दौरे नहीं आते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि डेफिनेटली काफी हद तक दौरे की परेशानियों को हमने कंट्रोल कर लिया है। पर डेफिनेटली ईजी करवाना, ईजी का नॉर्मल हो जाना, बच्चे का बिल्कुल नॉर्मल हो जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हम दौरे की दवाई कम करके बंद कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो हम सब में जनरली भी सीजर का रिस्क रहता है, दैट रिस्क डेफिनेटली रिमेन्स, वो एक डर जरूर रहता है। लेकिन अगर 2 साल तक बच्चे को दौरे नहीं आए हैं, तो हम मेंटली काफी एक सेफ फील कर सकते हैं।
0: एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, स्पेशल चाइल्ड्स की अगर हम बात करें जो ऑटिस्टिक हैं, ऑटिज्म से जूझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है या मतलब मुश्किल लाइफ होती है, ऐसे में अगर बच्चे को फिट्स आते हैं तो वो किस तरह से हैंडल करें सिचुएशन को?
1: हाँ जी, सो अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है या डेवलपमेंटल डिले है, मतलब बच्चा पीछे चल रहा है
0: जी,
1: चीजें उस हिसाब से नहीं कर रहा है जैसे आपके दूसरे बच्चे या आमतौर पे बच्चे करते हैं, और फिर उसमें दौरा आ जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में इन चीजों में काफी ज्यादा ऐसा होता है कि कोई अंदरूनी दिक्कत हो, जिस तरह से MRI में ब्रेन में कुछ बनावटी नुक्स हो जिसकी वजह से ये सब लक्षण आ रहे हो, या फिर कोई जेनेटिक नुक्स हो जिसकी वजह से ये सारे लक्षण आ रहे हो
0: जी,
1: ऐसी कंडीशन में दौरे की दवाई के साथ साथ थेरेपी के साथ साथ और भी मेडिसिन और दवाइयाँ आ गई हैं जो हम दे सकते हैं, जिससे हम बच्चे की बीमारी को उसकी रूट कॉज जो जड़ है वहां पे जाके हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं है, दौरे की दवाई देना है और सही कारण पता करना है।
0: थैंक यू रब साहब इस जवाब के लिए। और हमारे साथ एक कॉलर और कनेक्ट हो गए हैं। हेलो
2: जी सर, मैम।
0: हाँ, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और क्या सवाल है?
2: मैं बबलू यादव, ग्राम धनवा खान, मोहनलालगंज, लखनऊ से बोल रहा हूँ।
0: जी, सवाल पूछिए अपना रब साहब से।
2: मैम, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते है।
1: नमस्ते
2: मैम। मैं डॉक्टर साहब, मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे रिलेशन के बेटे को,
1: हाँ जी,
2: पहले उसको झटके जरा सा आता है तब उसका शिशु आता है।
1: झटके आते हैं किससे पहले?
2: शिशु करने से पहले।
1: अच्छा अच्छा,
2: कमर हिलती है उसकी तब उसका शिशु निकलता है।
0: ऐसा आपने ये बता रहे हैं कि ये वॉशरूम जाने से पहले बच्चा पहले उसको फिट्स आते
1: हैं। काफी सारे ट्रिगर्स होते हैं जिसके चलते इस तरह से दौरे आ सकते हैं, बट यूजली जिस तरह से वो लाइट होती है या फोकस करना होता है या फिर नींद अगर ठीक से नहीं हुई है तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार वीडियो जरूर बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो झटके लग रहे हों वो झटके ना हो, तो हम पानी अच्छे से दें, यूरिन वगैरह की एक बार जांच भी करा लें, और जो बच्चे को हो रही है प्रॉब्लम उसकी एक वीडियो जरूर बनाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो झटके हों पर जब आप हमें या डॉक्टर को दिखाएं तो वो झटके ना हों।
0: अच्छा, और सब एक और हमारे साथ कॉलर कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया कि नींद पूरी नहीं हुई हो, तो क्या ओवर स्ट्रेस या लाइफस्टाइल से भी अगर अच्छी नहीं है आपकी लाइफस्टाइल तो भी आपको फिट्स आ सकते हैं?
1: लाइफस्टाइल पूरा होने से या फिर ओवरऑल आपका
0: स्ट्रेस,
1: हेल्थ एंड स्ट्रेस इश्यूज से स्पेसिफिकली आपको एपिलेप्सी नहीं आएगी।
0: अच्छा,
1: लेकिन आपको ऑलरेडी अगर एपिलेप्सी,
0: टिपिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। अच्छा,
1: अगर आप, यस इट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको एपिलेप्सी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जुवेनाइल माइक्लोनिक एपिलेप्सी है,

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हेल्थ एंड फिटनेस सुन रहे हैं आप समरीन के साथ और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बाल रोग एवं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा गुप्ता, जो कि बात कर रही हैं कि अगर आप

0: है उस कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लाइट बहुत एक्सेसिव हो, डिस्को लाइट्स हो, रात को आप सोए नहीं हो, आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है, तो उस कंडीशन में आपका सीज दौरा जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, आ सकता है।
1: सर एक और कॉलर
0: हाँ
1: हमारे
0: जी,
1: साथ हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम सर।
0: नमस्ते,
1: जी अपना नाम, जगह का नाम और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: मैं महानगर से बोल रहा हूँ, ब्रजेश, लखनऊ
0: हाँ जी
2: से।
0: जी
1: जी सवाल
2: मुझे
1: पूछिए।
2: 17 साल की लड़की है, वो गुमसुम रहती है मैम जी,
0: गुमसुम रहती है।
2: ना
0: अच्छा
2: उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना किसी काम में मन लगता है,
0: हाँ जी, और
2: और उसके जांचें कुछ हुई हैं, और डॉक्टर को दिखाए, वो जांचें करवाए, वो सब नॉर्मल हैं।
0: हाँ, तो ये जो गुमसुम रहती है, आपने हाल फिलहाल में देखा है कि बच्ची गुमसुम रहती है, या मतलब हमेशा से ये बच्ची गुमसुम ही रहती
2: मैं
0: थी?
2: पहले पहले जो पढ़ने जाती थी तब ठीक थी,
0: तब ठीक थी,
2: 2 साल से लगभग है ऐसा।
0: बिल्कुल। तो अगर पहले बच्ची बिल्कुल ठीक थी और 2 साल से ऐसा हुआ है और कोई दौरे भी नहीं आए हैं बच्ची को,
2: नहीं दौरे वोरे नहीं है।
0: ऐसे नहीं आए हैं, तो इस कंडीशन में मेरा आपको ये पर्सनल एडवाइस होगा कि एक बार आपको हमें बच्चे से अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत स्ट्रेस चलता है। पढ़ाई को लेके भी हमारी बच्चे से वो अपेक्षा होगी कि वो अच्छा करें, आसपास जो उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ, तो एक बार हम अगर बच्चे से बात कर पाएँ तो हो सकता है कि काफ़ी सारी बातें हो जो बच्ची ने मन में दबा के रखी हो और उसके साथ ठीक से बात करी ना गई हो, इसलिए शायद अभी चीज़ों में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, ऐसा होना कि लक्षण ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले आप खुद अपने बच्चे से ज़रूर अच्छे से बात करें, उसके दोस्त बने, उसके दिल की सारी बातें समझें, फिर भी अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली आपको बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर से या बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दूसरे कारण भी होते हैं बच्चों के गुमसुम हो जाने के, फिर हम उसके लिए ज़रूर जांचें करवा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम अभी यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे और अपने लिसनर से यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपके सामने किसी को फिट्स आ रहे हैं, तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है बल्कि सही कदम उठाना है। और इसी बात के साथ आपके कॉल्स का इंतजार हमारे स्टूडियो में हम दोनों ही कर रहे हैं। आप लगातार कॉल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर, 0522-238845 पर। डेफिनेटली थोड़ी देर बाद आपका कॉल जरूर कनेक्ट होगा क्योंकि लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं, कुछ कॉल डिस्कनेक्ट जरूर हो रहे हैं। बट अगर आप कॉल मिला रहे हैं और कॉल नहीं लग रही है, तो आपके पास मेल करने का ऑप्शन है fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
1: तो लगातार आपसे बात हो रही है कि अगर आप फिट से या दौरे से आपके घर में कोई बच्चा जूझ रहा है या आसपास या फ्रेंड सर्कल में, तो आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, आइए उनसे जानते हैं। हेलो,
5: हेलो
1: जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो मैम,
0: हाँ जी नमस्ते।
5: नमस्ते मैम, नमस्ते। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं सीतापुर का रहने वाला, चतरार गाँव
0: जी।
1: सवाल पूछिए।
5: सवाल ये था मैम कि हमारे भाई साहब हैं, तो उनको कभी कभी साल दो साल में झटका, मतलब दौरा।
1: जी जी पूछिए
0: जी।
1: ओके, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। सवाल तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक मेल हमारे पास जरूर आया है और उन्होंने नो टॉपिक से इतर आपकी तारीफ की है कि बहुत ही बेहतरीन और सलीके से नाम द्वारा क्वेश्चन किए जा रहे हैं और डॉक्टर साहिबा के जरिए इतनी प्यारी सी आवाज से जानकारी दी जा रही है। हमें आप दोनों का प्रोग्राम सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम में मैंने मैम को पहले भी सुना है, बहुत ही जागरूक और ज्ञानवर्धक जानकारी डॉक्टर साहिबा दे रही है।
0: धन्यवाद।
1: एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। शायद वो भी लाइन ड्रॉप हो गई है. आपसे डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है अगर आपको फिट्स आते हैं और आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर दवाएं बंद करते हैं, तो क्या ये मान लें कि अब ये दोबारा पलट के नहीं आएंगे?
0: बिल्कुल. एपिलेप्सी के जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे कारण हैं. उन जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि देयर आर सम बिनाइन और सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सीज, मतलब जो इतनी घबराने वाली दौरों की बीमारियां नहीं होती हैं और काफ़ी बार एक या दो दौरों के बाद ही कंट्रोल में हो जाती हैं. तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सेल्फ लिमिटेड एपिलेप्सी है मेरे बच्चे को, तो शायद दवाई दे के हम बहुत जल्दी इलाज कर सकते हैं और उसके बाद आपको फ्यूचर में इतना डरने की जरूरत नहीं है दौरों से. कभी कभी ब्रेन में सिर्फ एक कीटाणु होता है, जिस कीटाणु की अगर हमने दवा दे दी और दौरे की अगर दवाई दे दी तो ये भी क्योर हो जाता है. बट कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिसके डिफिकल्ट और ड्रग रेजिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, वो लिमिटेड एपिलेप्सीज होती हैं जो दवाइयों पे देने के बाद भी कंट्रोल कभी कभी नहीं होती. पर उसके लिए भी आजकल बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं, तो हम दौरों को हम कंट्रोल कर सकते हैं. दौरे से घबराना नहीं है, जरूरी ये है कि पहले ही इलाज शुरू हो जाए, इलाज में देरी ना हो.
1: ओके, तो अभी हमारे साथ एक और कॉलर. ये आज क्या हो रहा है? हेलो. हाँ जी कॉलर, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं? जी
6: नमस्कार दीदी जी और डॉक्टर साहब भी नमस्कार. मेरा नाम है रौशनी रावत, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ. मेरा सवाल ये है कि दौरा पड़ने पर माता पिता को क्या करना चाहिए और कैसे पता चले कि
1: फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए?
0: अगर पहला सीजर आया तो हमें क्या करना चाहिए?
1: जी जी
0: बिल्कुल. सर अगर जैसे एक बार भी अगर बच्चे को दौरा आ रहा है तो आपको तुरंत तुरंत डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ब्रेन में कोई भी कीटाणु हो सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आगे चल के दूसरे दौरे का भी रिस्क हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारी बातें हमें देखनी होती हैं कि दौरा बुखार के साथ आया था या कितनी देर का आया था, जगे हुए सोते हुए आया था, उससे हम कारण पता करते हैं. अगर उस कारण के चलते हमें लगता है कि MRI या EEG की जांच करवानी चाहिए तो वो जांच करवा के बच्चे के दौरे का कारण पता करके फिर हमें इलाज करना चाहिए. बिकॉज जैसे हमें इस बार मैंने बार बार ये बात बोली है कि अगर मल्टीपल काफी बार दौरे पड़ते हैं तो हम खुद ही अपने बच्चे को एक रिस्क में डाल रहे हैं. तो जल्दी कंट्रोल करना, सही दवाइयों से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो इवन अगर एक दौरा आ जाए तो भी आपको दिखाना है.
1: रुकसे भाभी, आपने बार बार जिक्र किया कीटाणु का, तो ये कीटाणु जहन तक कैसे पहुंचता है अगर आपने प्रॉपर कुकिंग नहीं की है या फिर किसी और जरिए से? तो एक कीटाणु जो जहन तक पहुंचता है उसे कैसे रोका जा सकता है? अगर हम शुरुआत में यही कहें कि हम बहुत हाइजीन तरीके से खाना दें तो क्या कीटाणु नहीं पहुंचेगा जहन तक?
0: जो ये कीटाणु है, जैसे पहले लगता था लोगों को कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें ही ऐसा होता है, लेकिन जैसे सबने सुना है कि पत्ता गोभी में भी होता है, अगर अच्छे से नहीं धोया है तो वेजिटेरियंस में
1: सुशी में भी,
0: यस डेफिनेटली. सो ऑल्दो ये जो है ये एक ही कीटाणु के लिए है स्पेसिफिकली, तो आपको ये तो इसमें यू गोज विदाउट सेइंग कि आपको सारी सब्जियां अच्छे से धोनी है, हाइजीन रखनी है, लेकिन उसके अलावा दूसरी भी बैक्टीरिया और कीटाणु है जैसे TB है, उसकी भी गांठें हो सकती हैं.
1: अच्छा.
0: तो बेसिक प्रिवेंशन होना, सारी वैक्सीन लगवाना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना, डाइट अच्छा रखना, आसपास कोई भी पेशेंट, जैसे कभी कभी आपके आसपास किसी को TB होता है तो कॉन्टैक्ट कम से कम रखना. सच काइंड ऑफ थिंग्स अगर हम करते हैं तो हम काइंड ऑफ प्रिवेंट कर सकते हैं. बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, दवाइयों का कोर्स देके कंट्रोल किया जा सकता है.
1: डॉक्टर साहब फिर से समय है एक कमर्शियल ब्रेक का और उसके बाद इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी.
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
1: तो 12:51 आप सुन रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस, और आज हमारा जो मौजू है, विषय है, वो है कि किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, पहला क्या एक्शन होना चाहिए अगर आपके सामने कोई बच्चा फिट से या दौरे से गुजर रहा है। डॉक्टर साहब, इसी मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक कॉलर है, आइए जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। हेलो, हेलो, हाँ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
7: मेरा नाम राम सचिव है, लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: जी जी,
7: हमारे दौरे पर जब
0: हाँ जी,
7: हम ब्रांच का ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, तब भी दौरे आ रहे हैं।
1: अच्छा, इन्होंने पूरा प्रॉपर इलाज कराया है, बट फिर भी इनके दौरे आ रहे हैं।
0: किसी चीज का इन्होंने, आपने कोई चीज बोली, कोई सर्जरी भी हुई है आपकी?
7: जी, हम ब्रेन ट्यूमर का,
1: ब्रेन ट्यूमर,
0: ओके ओके,
7: आईकॉन में,
0: ओके ओके ओके। नहीं, सर्जरी के बाद भी, क्योंकि जैसे सर्जरी हुई है तो वो जो ब्रेन का हिस्सा रहता है वहाँ पे जो आसपास का हिस्सा रहता है उसमें डैमेज हो जाता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब एक हिस्सा गल जाता है या दिक्कत होती है तो वो जो है दौरे डेफिनेटली लेके आ सकता है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपने दवाई तो नहीं छोड़ दी थी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको जो दवाई बताई गई हो वो कभी ख़त्म हो जाती है, छूट जाती है, तब दौरे आने का रिस्क डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो मेरा आपको ये एडवाइस होगा कि आप दौरे की दवाई जो आपको चल रही है वो बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसके बाद भी अगर दौरे आते हैं तो हमें दौरे की दवाई बढ़ानी होगी। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सर्जरी हो गई वो बहुत अच्छी बात है, पर दवाई जरूर टाइम टू टाइम लें, और फिर भी आए तो हम जांच करके दवाई बढ़ाएं।
1: सब एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया, अभी तो उन्होंने बताया कि सर्जरी के बाद इनको फिट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी कीटाणु से आपने बताया, और कितने किस्म के रीजन हो सकते हैं फिट्स आने के, स्पेसिफिकली अगर हम पूछें तो?
0: बच्चों में बहुत कॉमन होता है कि बच्चे जब पैदा होने पे रोए नहीं होते हैं, या पैदा होने पे इन्फेक्शन हो गया होता है, शुगर कम हो गया होता है, उसके चलते बहुत कॉमन है दौरे आना
1: जी।
0: उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे जब बच्चों का विकास हो रहा होता है
1: जी,
0: तो बिना किसी कारण के भी बच्चों को जो एपिलेप्टिक एनकेफलोपैथीज या जेनेटिक एपिलेप्सिस होती हैं, वो अंदरूनी जैसे जो ये हमारे जीन्स में जो नुक्स हो जाता है उसके चलते भी हो सकती हैं। फिर जैसे हमने कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो हमारे ब्रेन में, मेनिंजाइटिस हुआ हो, एनकेफेलाइटिस हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, टीबी हुआ हो, या इवन जो आम भाषा में जो हम नॉर्मल देखते हैं कि डेंगू वगैरह हो जाता है, उनमें भी दौरे पड़ सकते हैं। तो आपको जब भी लगे कि दौरा पड़ रहा है, आप एक बार जाके डॉक्टर से मिलिए, सारी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद, कभी कभी बच्चों के शरीर पे आप देखेंगे काले भूरे रंग के निशान होते हैं, तो वो निशान भी हमें दिखाते हैं कि ब्रेन में कुछ बनावटी नुक्स हो सकता है, उसके चलते भी दौरे आ सकते हैं। तो एक डिटेल में बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेना कि क्या क्या हुआ था बर्थ से, और पूरी बॉडी को एग्जामिन करना बहुत जरूरी है,
1: तो कॉज पता चल जाता है। रुक सब, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए अपना।
8: सवाल ये पूछ रहे कि हमारी बहन की छोटी सी बच्ची हुई है, हल्का झटका के शिकायत है।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
8: अकबरपुर हेठी जिला वाराणसी से।
1: आपकी बहन की छोटी सर्जरी हुई है जहन की, दिमाग की? अच्छा, तो आपको समस्या क्या है?
0: बहन के बच्चे के दौरे पड़े हैं, आई थिंक। बहन के बच्चे को, बच्चे की उम्र कितनी है
8: अभी? चार
1: चार दिन
0: की हुई है, ठीक है। तो
8: है।
0: हाँ जी, तो आपको मोस्टली आपके डॉक्टर ने बताया होगा, लेकिन ये बहुत काफी बार ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा पैदा होने पे नहीं रोया है, या उसका शुगर कम हो गया था, या फिर उसको पीलिया बहुत ज्यादा हो गया है, या इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसा हो सकता है। स्टार्टिंग में भी दौरे आ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी डॉक्टर देख रहे हैं उन्होंने दवाई बढ़ा दी होगी, तो अभी आपको घबराना नहीं है, दौरे की दवाई। हाँ हाँ जी, तो अभी दौरे बेहतर हैं, कंट्रोल है, बच्ची को दिखाई नहीं
8: देते, बच्चे को मतलब देखने नहीं देते है ना।
0: अच्छा,
8: रखे हैं ना, आप इधर में दिखाई नहीं देते
0: जी,
8: दिखाते नहीं।
1: ओके तो आई एम श्योर कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये हमारे साथ आज के लास्ट कॉलर थे.
3: सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर.
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनल

0: Specialized care.
1: My pediatric brain and spine surgery. PICU, EEG, MRI, genetic test, physio और speech therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ. कॉल 666-444-444.
2: और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे हेल्थ एंड फिटनेस से इजाजत. डेफिनेटली आज डॉक्टर साहिबा के जरिए दी गई जानकारी से आपको पता चला होगा कि आपको पहला जो एक्शन लेना है उस वक्त जिस वक्त बच्चे को इस तरह का फिट आ रहा है क्या करना है. सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी. और हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम की मंशा भी यही है कि आप कैसे मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर का जो हमारा कोशिश है वो डेफिनेटली आज सार्थक हुई होगी. इसी के साथ हम इस प्रोग्राम से आपसे लेते हैं इजाजत. डॉक्टर साहिबा आप आई, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
3: थैंक यू.
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ.
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा.
6: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान. चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल. ये लखनऊ है जनाब.
7: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब.
8: समझे जनाब अली.
7: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो. धड़कन लखनऊ की.

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और तकनीक सक्षम बनाया जाए। उन्होंने खासकर भर्ती परीक्षाओं व बड़े आयोजनों के दौरान यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखे जाने का कड़ा निर्देश दिया। प्रदेश में 8, 9 व 10 जून को सिपाही भर्ती की बड़ी परीक्षा होनी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, महिला सम्मान, अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिस सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभियोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराधियों को त्वरित एवं प्रभावी दंड सुनिश्चित करने पर बल दिया है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में साइकिल रैलियों का आयोजन कर फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। अलीगढ़ में जिला साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित अस्मिता साइकिलिंग लीग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्वयं भी प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाए। वहीं हमीरपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित साइकिल रैली को नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने रवाना किया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों एवं नागरिकों ने भाग लेकर फिट इंडिया अभियान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026

20 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि विस्तारित कर दी है। विद्यार्थी अब आज मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल यानी 6 जून तक ही निर्धारित थी। लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली है। दिन का तापमान अधिकतम 40 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री रहा। ये सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। ये सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान लगातार 40 डिग्री के पार बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर, पुरानी जींस और गिटार, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर जगा, फिर रात को फुर्सत के वो पल,
1: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
8: धड़कन लखनऊ की।

1:05 आप सुन रहे हैं प्रोग्राम होटल पे तेरी बात और मैं हूँ आपके साथ समरीन। और क्या मौजू होने वाला है आपका, मैं आपको बता देती हूँ। आज हम बात करेंगे कंटेंट फील करने की या फिर दिखावे की जिंदगी के बारे में। आप क्या सोचते हैं, जैसे कंटेंट आप किसी भी चीज से महसूस कर सकते हैं, संपन्न आप आध्यात्मिक होकर भी कंटेंट फील कर सकते हैं, आप पैसा कमा के भी कंटेंट फील कर सकते हैं, आप बहुत सक्सेस हासिल करके भी कंटेंट फील कर सकते हैं, और आप ये सब करके भी अगर दिखावे की जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपकी जिंदगी बहुत खाली खाली रहती है। तो आज के टॉपिक पर मुझे चाहिए आपके विचार, क्या सोचते हैं आप, कौन सी जिंदगी बेहतर है, वर्चुअल दुनिया या फिर रियल दुनिया? क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि लोग वर्चुअल दुनिया पे तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आप बड़ा एनवी फील करते हैं उन्हें देख के, यार ये इसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, ये बड़ी बेहतरीन जिंदगी जी रहा है, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी वो वैसे ही महसूस कर सके? इस पर बातचीत करेंगे हम आपसे। आप हमें करेंगे मेल fmakashwani@gmail.com पर और बताएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं इस विषय पर या इस ख्याल के बारे में। फिलहाल सुनते हैं एक बेहतरीन सा गाना और उसके बाद बातचीत जारी रहेगी आपसे।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती रेलवे पुलिस के काम का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि रियासत में रेलवे सिक्योरिटी निजाम को मजीद जदीद और तकनीकी तौर पर काबिल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत, खवातीन के तहफ्फुज, जराइम पर काबू पाने और पुलिस की फौरी मदद को अवलियन तरजीह दी जानी चाहिए। प्रोसिक्यूशन अवलियन सिस्टम का जायजा लेते हुए वजीर आला ने मुजरिमों को फौरी और मौसर सजा देने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब बहुत ममालिक इक्तसादी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, भारत आलमी मईशत में तेजी से बढ़ रहा है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत ने इक्तसादी तरक्की को मुस्तहकम, खुद एतमादी, तसलसल और एतबाद के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता

0: ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है। वजीर दिफा ने अपनी रिहाइश पर लोगों से मुलाकात के बाद आलमबाग वाके टेढ़ी पुलिया के पास प्रबुद्ध जनसंवाद प्रोग्राम में शामिल हुए और इलाके के मुमताज शहरियों से बातचीत की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। तलबा अब आज आधी रात तक अपनी दरखास्तें जमा करा सकेंगे। इससे पहले कल 6 जून की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। रियासत में सिविल पुलिस कांस्टेबल और उसके मसावी अहदों के लिए भर्ती का इम्तिहान कल से 10 जून तक रोजाना 2 शिफ्टों में मुनक्किद होगा। इंतजामिया इसके लिए तैयारियां कर रही है। वजीर आला के हिदायत के बाद इम्तिहान की तैयारियों की रिहर्सल हुई। कानपुर में इंतजामिया ने इंतजाम के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। रेलवे ने भी खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन उम्मीदवारों को रियायती शहरों पर खिदमात फराहम करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर NEET UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के सवालिया पेपर के मुबैना लीक या फरोख्त के दावों की तरदीद की है। NTA ने कहा है कि ये मुनज्जम धोखाबाज गिरोहों का काम था जो तलबा और उनके अहल खाना के खदशात का फायदा उठा रहे हैं। एजेंसी फाल तौर पर काबिल एतराज चैलेंजेस अकाउंट्स और मवाद की निशानदेही कर रही है और उसने मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। NTA उम्मीदवारों और वालदैन को मशवरा देता है कि वो ऐसे किसी पैगाम का शिकार ना हो। आम की खुशबू और मिठास अब अमरोहा के सरहदों से निकलकर कई ममालिक तक पहुंच जाएगी। इस सीजन में अमरोहा के आमों की खुशबू और जायका सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, यहां तक कि लंदन के लोग यहां के आमों का मजा चखेंगे। मलेशिया से भी आम के ऑर्डर मौसूल हुए हैं। इन ममालिक से 400 टन से ज्यादा आम के ऑर्डर मौसूल हो चुके हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि अमरोहा में हुकूमत की तरफ से मरबूत पैक हाउस की तामीर की वजह से आम की बरामदात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने लीगल मेट्रोलॉजी सिस्टम के तहत खुदनी तेल के लिए मियारी पैकेजिंग नाफिज की है। इससे मार्केट में ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आएगी। सार्फिन के उमूर के महकमे ने खुदनी तेल और घी के खालिस मकदार और मियारी पैक साइज का तयन करने के लिए मियारी ऑपरेटिंग तरीकाकार में तरमीम की है। माहौलियाती तहफ़ और ईंधन की बचत का पैगाम देते हुए जिला कोर्ट मान लखनऊ के अदालती अफसरान ने कल साइकिल मुहिम में हिस्सा लिया। वहीं हमीरपुर में यौम आलमी साइकिल के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया जिसे माहौलियात के तहफ़ का पैगाम दिया गया। वहीं सुल्तानपुर में आज माहौलियात के तहफ़ और अवामी बेदारी के मकसद से मुनक़िद माहौलियात मैराथन मुकाबले का इफ्तिताह पर्यावरण पार्क से किया गया। घरेलू गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर में 29 रुपए का इजाफा किया गया है। लखनऊ में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 950 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 979 रुपए 50 रुपए हो गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम pawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, PADMA

0: www.sbs.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

1:22 और 9 सेकेंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरे साथ होठों पे तेरी बात, जिसमें आज हम बात करेंगे कि दुनिया में हम अपनी जिंदगी के खूबसूरत पलों को सबके साथ तो बांट रहे हैं, लेकिन अपने अकेलेपन, अपनी बेचैनियां और अपने अधूरेपन को अक्सर दिल में किसी कोने में छुपा कर रखते हैं। होठों पे तेरी बात में आज हम बात करेंगे उसी खुशी की जो दिखाई तो बहुत देती है लेकिन महसूस कम होती जा रही है। चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया पर सैकड़ों लाइक्स हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में अकेलापन है। क्या वजह है इसकी? क्या महसूस करते हैं आप इस टॉपिक को लेकर? हमें मेल करिए और बताइए। चंद मेल जो हमारे साथ आए हैं उन्हें मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। बसंत कुमार जी लिखते हैं कि आदरणीय मैडम जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। आज का थीम क्या है? दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से मैं आपको मेल कर रहा हूँ। बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अंश का बेबी और आगे उन्होंने शुक्रिया लिखा है। टॉपिक मैंने अभी आपको बताया कि खुशी जो है वो आप एक्चुअल महसूस करते हैं या फिर वो सिर्फ दिखावटी खुशी है। नीलू लिखती हैं कि जो लोग दिखावा करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे रियल लाइफ पसंद है। जो भी कुछ करो दिल से करो, मन से करो, या किसी की मदद करनी है तो बिना संकोच के करो। अपनी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं आप। समरिंदी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो लोग दिखावा ज्यादा करते हैं दुनिया अक्सर भरोसा उन्हीं लोगों पर करती है। आगे इन्होंने एक लिखा है कि सुकन के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, सुखन के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, हम अपने साथ अपने दोस्तों का पैगाम लाए हैं। खुलो तो इस दिल में आंखों में प्यार लाए हैं, कबूल कीजिएगा हम प्यार भरा सलाम लाए हैं। बहुत ही खूबसूरत नीलू जी, आप शायरा बन गई हैं अब। आगे सुधाकर यादव जी लिखते हैं, होठों पे तेरी बात ए प्रोग्राम हम लाइव सुनथन और हमका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगत है। इस प्रोग्राम के सादरीकरण बहुत ही सुंदर रहता है और प्रोग्राम सादर करने की शैली हमको बहुत भाती है, शुक्रिया। रोशनी रावत लिखती है, नमस्ते समरिंदी दीदी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशनी, आप कैसी हैं? 12 बजे से जुड़े हुए हैं आपके साथ, मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से। मैंने पूरा हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। आपके द्वारा पूछे गए सारे सवाल और डॉक्टर साहिबा के द्वारा बताए गए उत्तर जो है वो बहुत सराहनीय थे। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत, पोस्ट बमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। टॉपिक आज का है कि जैसे कि आज का टॉपिक बहुत ही अलग और हकीकत से परे है। मेरा मानना है कि रील में जो दिख रहा है वो रियल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा रियल बोलती हूँ और वही करती हूँ जो मुझे अच्छा और सही लगता है। ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मगर इतना कहती हूँ कि रील में ज्यादा ना जाइए। और आगे लिखती हैं, आज मेरे जहन में आपका ख्याल बार बार आ रहा था कि शायद दीदी आप आए। जैसे ही सुना मैंने 12 बजे, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी रोशनी कि आप लोग इतने दिल से कनेक्टेड हैं हमारे साथ, और ये हमारे लिए बहुत खूबसूरत एहसास है कि कोई दूर बैठा जो हमसे कभी मिला नहीं है, हमें जानता नहीं है, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसको हमारा इंतजार रहता है। बसंत कुमार सिन्हा लिखते हैं कि सलाम कबूल हो फिल्म जुगनू, वाह वाह वाह। टॉपिक पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। राजकमल यादव लिखते हैं, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, नमस्ते मैम जी, कैसी हूँ आप? मैम जी हमको ज्यादा तो नहीं पता, पर जो है वो ये कि हमने जीवन को वास्तविकता की भूमिका पर सजीवता से जीना चाहिए। थोड़ी बहुत सुंदरता स्वीकार है, परंतु व्यर्थ का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। बहुत सही बात आपने कही। हमारे साथ रमजान मास्टर जी आपको सुन रहे हैं और आपको नमस्कार बोल रहे हैं, धन्यवाद राजकमल जी। और आपकी इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि अपने आसपास सुंदरता बनाए रखिए, लेकिन उस सुंदरता को बनाने में आप खुद खाली मत हो जाइए। ये बात आपने बहुत सही कही। और सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारा आज का होठों पे तेरी बात का टॉपिक है कि जिंदगी में रियल लाइफ और रियल लाइफ में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। हम रियल लाइफ में इतना मगन हो गए हैं, हम दिखावे की जिंदगी में इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि हम एक्चुअली अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई रील पोस्ट करते हैं ना, तो 10 बार जाके चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए,
क्या कमेंट्स आए, क्या जरूरत है, आपने पोस्ट कर दी पोस्ट कर दी। अब उसे बार बार क्रॉस चेक करना आप में एक तरह की एंजाइटी को बढ़ाएगा और वो आपको फिर आपके सेल्फ डाउट पे ले जाएगा। अगर लाइक ज्यादा नहीं आए, कुछ पे ज्यादा लाइक आए तो उसने खुशी तो दी, लेकिन जिस पे लाइक ज्यादा नहीं आए वो अपने सेल्फ डाउट में आ जाएगा। तो ये है हमारा आज का मौजू, आपके क्या विचार हैं हमें बताइए। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन सा गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक बजकर 36 मिनट और पूरे 23 सेकंड आप सुन रहे हैं होटो पे तेरी बात। मैं हूँ आपके साथ समरीन और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क करना, महसूस करना जो है वो भूल गए हैं। हम फंस गए हैं बहुत सारे जालों में, जैसे कब हम अपनी ज़िंदगी में कंपैरिजन ले आते हैं दूसरों से, पता ही नहीं चलता कि उसके पास तो बड़ी नौकरी है, उसके पास तो बड़ा घर है, उसके पास बेहतरीन सी कार है, वो हर वीकेंड जो है वो घूमने जाता है। लेकिन इस कंपैरिजन में हम ये भूल गए हैं कि हमारी अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ है जिसका हमें शुक्राना भेजना चाहिए, जिसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। और ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें मेल भेजा है, आइए जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस टॉपिक पर। सुधान बाबा लिखते हैं कि रियल लाइफ में लड़कियां कुछ ज्यादा ही बर्बाद हैं। क्यों भाई सुधान बाबा, ये तो गलत बात हुई, ये तो मैं बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगी। सारी जेंडर बायस होने के बजाय आप ये देखें कि दोनों तरफ जो है वो हमारा जो मेयार है वो कहीं

0: डिग्रेड हो रहा है, उसे बेहतर करने की जरूरत है, उसे अच्छा करने की जरूरत है, लेकिन किसी एक जेंडर बायस्ड होके स्टेटमेंट दे देना सुधान, मैं इसे अप्रिशिएट नहीं करूंगी। बाबू अंसारी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम समीर अप्पी, कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा और टॉपिक पे मैं ये कहना चाहता हूं कि दिखावे की जिंदगी, दिखावे का कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं चलता और मैं बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल रहता हूँ। तो ये तो जिंदगी की कुंजी है कि अगर आपने एकदम सादगी से जिंदगी गुजारी है तो यकीन मानिए आप स्ट्रेस के जैसे जाल में नहीं फंसेंगे। बसंत कुमार जी लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक मैडम जी, हमारी ओर से प्यार भरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आज की थीम क्या है? थीम तो मैंने आपको कई बार बताई, अच्छा मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज की थीम ये है, टॉपिक ये है कि आप रियल लाइफ और रियल लाइफ में किसे बेहतर मानते हैं और क्या क्या कुछ खोया है हमने रियल लाइफ को तवज्जो देकर। आगे लिखते हैं, मुझे सादगी पसंद है, कम खाओ गम खाओ और हमेशा दिखावे से दूर रहो। अपने जीवन में जो भगवान ने दिया है उसी पर संतोष करें, दूसरे की बराबरी करें लेकिन बुराई नहीं। एक दिन ऐसा होगा जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। भरोसा रखें, मेहनत करें, भगवान पर विश्वास और भरोसा बढ़ाएं। जावेद अख्तर जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून समरीन बाजी, आज के दौर में देखा जाए तो दिखावा ज्यादा है। अगर हम अपनी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो दूसरे के लिए दिल से उनकी मदद करें, तभी हमारे अंदर की छुपी हुई खुशी उजागर होगी। रेशम की नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। वकील अहमद लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज अच्छी लगती है, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम अच्छा लगता है, टॉपिक अच्छा है, चेहरे पर हंसी दिखावटी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, लेकिन रियल को हम मानते कितना है। वकील अहमद मंसूरी कटका हथौली जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, पिंकी रिंकी, महक अंसारी, गुलफशन सिद्दीकी, अमन नवाब, अनीस अहमद, बबलू यादव और ये जो जिन्होंने हमें मेल भेजा है वकील अहमद, ये आम की बाग में हैं इस वक्त। और टॉपिक पे जो उन्होंने लिखा है वो यही, इसका सार ये है कि दिखावटी जो है वो जिंदगी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और एक बात ये भी बिल्कुल सच है कि अगर आप दिखावटी जिंदगी पे नहीं जाएंगे ना तो स्ट्रेस लेवल आपकी जिंदगी से बहुत हद तक कम हो जाएगा, बोझ नहीं होगी। एक्चुअली आप जब शुक्राना या ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाते हैं तो बहुत कुछ पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो अपनी जिंदगी में शुक्राने को जरूर शामिल करें। महेंद्र दीपान लिखते हैं कि आदरणीय समरीन मैडम जी, कैसी हैं आप, सप्रेम नमस्कार, FM रेनबो लखनऊ का एक समर्पित श्रोता महेंद्र दीपान, राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव रून से हूं। मैम कल शाम 4 बजे के बाद, आज श्वेता मैम आई थी, उनकी आवाज और आपकी आवाज सेम सेम लगती है। अच्छा, आज अब मैं भी सुनूंगी श्वेता की आवाज। आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूं कि रियल लाइफ सिर्फ एक सजी हुई खिड़की है जो चमक धमक तो दिखा सकती है लेकिन रियल लाइफ की गहराई और सुकून नहीं दे सकती है। मेरी नजर में रियल लाइफ ही असली धमाका है, क्योंकि हमारे असली रिश्ते हमारे माता पिता का आशीर्वाद, अपनों का साथ और अपनी मेहनत की कमाई ही जिंदगी की असली पूंजी है। रियल लाइफ को केवल अपनी रचनात्मकता के एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना सही रहेगा, लेकिन कभी भी इसे असल जिंदगी की शांति और सादगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि मैंने हमेशा माना है कि हमें अपनी जिंदगी को इतना प्राइवेट और मर्यादित रखना चाहिए कि दुनिया बस अंदाजा ही लगाती रह जाए। महेंद्र, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपकी पर्सनल लाइफ रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे भी हुए हैं जहां पर सोशल मीडिया से लोगों ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के कोई स्कैम किया है। तो आगे और भी मेल्स हमारे पास हैं, लेकिन उससे पहले एक और बेहतरीन सा ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं और उसके बाद सेम मौजू पर आपके मेल्स भी शामिल होंगे। और जो हमारे नए लिसनर्स अभी जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आप हमें मेल कर सकते हैं इस टॉपिक पर जिसमें मैंने बात की है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में आप किसे तरजीह देते हैं। मौजू आज का ये है, आप हमें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना।

0: से लेकर 76 भरोसे का सिर्फ एक ही नाम
1: RHL गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
2: आपकी गिनती देश की शान जनगणना से जन कल्याण
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी देश के विकास में सहभागी बने

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: हमारे प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं आपके होठों पर सजने वाले सॉन्ग्स को,
4: जो होंगे आपकी मेल्स पर बेस्ड मेलोडियस सॉन्ग्स।
3: तो अपने फेवरेट सॉन्ग्स को सुनने के लिए आप शाम 4-5 हमारे साथ रहिएगा आपकी पसंद के सफर पर।
5: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
3: Only on 102.2 FM Rainbow, the musical heartbeat. तो मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com। तो हमारे साथ सुनिए रेनबो कानपुर पर 4-5 आपकी पसंद प्रोग्राम।

और देखते ही देखते ये जो वक्त का पहिया है ना, ये इतनी तेजी से भाग रहा है। 1:51 हो चुके हैं, हमारा होठों पे तेरी बात एकदम खत्म होने के कगार पर आ चुका है। लेकिन जाने से पहले जो मेल्स हमारे पास आए हैं उनके नाम तो मैं एटलीस्ट आप तक पहुंचा दूं। अनिल कुमार ठाकुर, सतीश अनेजा, रामेश्वर, एमन नवाब, गुलफशा सिद्दीकी, शैलेश कुमार, रामराज, मोनू सेठ, बेनेट कुमार। अब मैं जल्दी से इन्होंने क्या लिखा है ये भी आप तक पहुंचा देती हूँ। बेनेट कुमार लिखते हैं कि होठों पे तेरी बात

प्रस्तुत करने वाली बहन जी को गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, आपकी बोली, आपका अंदाज बहुत सुपरहिट लाजवाब है, धन्यवाद आपका। धूप में हमारे भाई बहन 10 बजे के बाद ना निकलें, पानी पर्याप्त पिएं, दिन में 3-4 बार अपना चेहरा जरूर धोएं। मनु सेठ ने सिर्फ शुभ दोपहरिया लिखा है। रामराज जी लिखते हैं कि होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भान, शंकर भैया, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। और जो ये जिंदगी है, ईमानदारी से जीने का मजा है, इसमें कुछ और है, दिखावे पर ना जाएं। एकदम एक लाइन में उन्होंने अपनी बात कह दी है। शैलेश कुमार जी लिखते हैं, नीलू आपका तो मैंने मेल पढ़ा है। समरीन दी, आज का टॉपिक हम ठीक से समझ नहीं पाए थे, इसलिए दोबारा मेल कर रही हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान और खुशी हमारे लिए दोनों चीजें मायने रखती हैं। एक मेरी दोस्त प्यार और दूसरा FM रेनबो, जो मेरे पसंदीदा आरजेएस की आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। और जब मैं सोकर उठती हूँ, सबसे पहले आईने के सामने अपना चेहरा देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं FM रेनबो को इतना पसंद करती हूँ। दी, मेरे पास बहुत अनमोल तोहफे ऊपर वाले ने दे रखे हैं। FM रेनबो का प्यार, मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है, प्यार का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन है। इतनी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें आपने भेजी हैं नीलू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफशा सिद्दीकी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम समीन अप्पी। गुलफशा सिद्दीकी, सडीले से प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि असल जिंदगी में जो होता है वो हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन दिखावटी जिंदगी में हम खुद तैयार रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि सच वही होता है जो असल जिंदगी में होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात आपने कही गुलफशा, कि दिखावटी जिंदगी में हम अपने हिसाब से चीजें दिखा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जिंदगी में हम फेस कर रहे होते हैं या जो जिंदगी की प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अगला मोमेंट क्या होने वाला है, बट रियल लाइफ में आप ऐसा करते हैं। अमन नवाब लिखती हैं, हेलो गुड आफ्टरनून अप्पी, मैं आपको 12 बजे से सुन रही हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस बहुत अच्छा लगा। रियल एंड रियल लाइफ, रियल लाइफ में हम धीरे धीरे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, आगे के थोड़े से दांत दिखाते हैं, सोच सोच कर कदम बढ़ाते हैं, क्या करना है कैसे करना है सोच सोच के करते हैं। अगर रोना है तो सोचते हैं कैसे रोए जो खराब ना लगे, आंखों से आंसू टपकते हैं लेकिन चेहरा खराब ना हो। अपनी कंपैरिजन आप हमेशा दूसरों से करते हैं और यही सोचते हैं कि यही है रियल लाइफ। अब आते हैं जैसे लोग रियल लाइफ जीने वाले लोग, जैसे कि हम खुद हैं, पूरे 32 दांत दिखाकर हंसने वाले, रोना है तो पूरा मुंह खोलकर चिल्ला चिल्ला कर रोने वाले, अपने अकेलेपन में नहीं, इसको अकेलापन नहीं एकांत बोलेंगे, उसमें सुकून ढूंढ लेने वाले, मेरे जैसे लोग रियल लाइफ में जीते हैं, बनावटी लाइफ में नहीं जीते और ना ही मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, जो कुछ मेरे पास है ऊपर वाले का शुक्र है। बहुत ही प्यारी और मुख्तसर सी लाइंस में आपने बहुत बड़ी बात कह दी अमन, कि इसमें कोई शक नहीं कि आप जिंदगी खुल कर जिए बगैर इस चीज का लिहाज किए हुए कि हंसते हुए आप कैसे दिख रहे हैं या रोते हुए आप कैसे दिख रहे हैं। आपको रोना आ रहा है आप रोइए, आपको हंसना है आप हंसिए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, आपके अंदर जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, उसका वेंट आउट होना बहुत जरूरी है। और रियल लाइफ में आप अपने आप को होल्ड करते हैं, नहीं अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, 1:56 हो रहे पे तेरी बात प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को रामेश्वर जी ने सादर प्रणाम कहा है। कार्यक्रम में 4 चांद लगा देती हैं बहन जी, प्रस्तुति बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया ने हमें ये मेल किया है। और इसी के साथ होटो पे तेरी बात से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाजत, एक बेहतरीन से ट्रैक के साथ अगले 1 घंटे भी मैं रहने वाली हूँ। और मुझे पता है एकदम आंधी तूफान और बाढ़ आती है आपके मेल्स की उस प्रोग्राम में, तो अगर आप हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में हॉट मेल में मेल करना चाहते हैं तो fmakashwani@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। उसके साथ डिस्क्लेमर ये है कि आप का मेल अगर नहीं पढ़ा जा पाया तो उसके लिए पहले से ही माजरत, लेकिन कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मेल्स को हम शामिल करें। दीजिए हमें इजाजत, सुनिए ये बेहतरीन सा ट्रैक।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष में जन भागीदारी से स्वच्छता की तस्वीर बदली है। उप मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दशकों तक पहले की सरकार के लिए स्वच्छता कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को जन भागीदारी का विषय बनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि आज देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और करोड़ों परिवारों विशेषकर माताओं बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट भर्ती 2025 परीक्षा में पहले फर्जीवाड़े की सूचना जारी की। बोर्ड ने बताया कि एक टेलीग्राम चैनल के जरिए 6 जून को संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें परीक्षार्थियों को 8 जून 2026 को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया गया। बोर्ड के अनुसार इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग कर परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वो ऐसे फर्जी संदेशों और चैनलों से पूरी तरह से दूर रहें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की शुचिता भंग करने वाली होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण और नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ द्वारा आज विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में गोमतीनगर स्थित जैनेश्वर मिश्रा पार्क में राष्ट्रव्यापी फिटनेस पहल संडेज ऑन साइकिल का शानदार आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया कार्यक्रम की भावना को बढ़ावा देना और लोगों में स्वास्थ्य और सामुदायिक भागीदारी के प्रति उत्साह जगाना था। साइकिलिंग महाकुंभ में भारत की सामूहिक खेल भावना का एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां कुल मिलाकर 13,300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देवरिया में आज केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

द्वारा खनुआ नदी में वृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की विशेष मदद से साफ किया गया। अभियान के दौरान एसडीआरएफ और पीएसी 26 वाहनी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है। मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 2:04 और 54 सेकंड आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हॉटमेल और मैं आपके साथ एक बार फिर से समरीन हूं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को खास बनाते हैं आपके मेल्स जो अक्सर हम कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए पहले से ही आपसे माफी और माजरत चाहते हैं, लेकिन कोशिश तो ये रहेगी कि मैक्सिमम मेल्स को शामिल करें, आपके पसंद के गाने भी इसमें हम बजाएं। लेकिन अगर कुछ रह जाता है, छूट जाता है, तो आपसे अनुरोध है, विनती है, गुजारिश है कि उसे जाने दीजिएगा। शिकायतें करने के बजाय सॉल्यूशंस पे जाते हैं। मेल करिए हमें और हम शामिल करेंगे इस बेहतरीन से गाने के बाद आपका मेल।

हॉटमेल में आपके मेल्स जो है वो लगातार आ रहे हैं मुझ तक, और पहला मेल जो हमारे पास आया है वो मल्होत्रा जी मोहाली का है। लिखते हैं ये गाना सुनाना चाहते हैं, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र, बजाज साहिल, बजाज बिट्टा बजाज, और चंडीगढ़ से इन्होंने हमें ये मेल किया है। अगला मेल है दीपेश वर्मा का। दीपेश ने ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा को ये गाना सुनवाना चाहते हैं। शेख अल्हा बख्श लिखते हैं, आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी आदाब से किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा, मेरा ये मेल तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्हा बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, और आगे तालिब अंसारी लिखते हैं, राजा कटरा बाराबंकी से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सॉन्ग मोहरा, और टिप टिप बरसा पानी इन्होंने गाने की फरमाइश की है। बिट्टू गणेजिया लिखते हैं, फिल्म मदर इंडिया गीत गाड़ी वाले गाड़ी धीरे चला रहे, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और दिशानी और निमत आहूजा को ये सुनाना चाहते हैं गीत। आपको प्रेम पूर्वक आदाब, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और कोई भी गीत सुनवा दीजिएगा अपनी पसंद का। अहमद बागवान लिखते हैं, होस्ट बहना जी आदाब नमस्कार, हमें निराश और नजरअंदाज मत करिएगा, मेरा मेल जरूर शामिल करिएगा, और आप प्लीज ऐसे मत लिखा करिए कि आप निराश हो जाएंगे अगर मैं मेल नहीं शामिल करूंगी या नाराज हो जाएंगे। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परवीन, और राबिया मंतशा, आशुतोष अहमद फूल वाले, और समस्त फूल वाले फैमिली को इन्होंने ये मेल डेडिकेट किया है। आफ्ताब अंसारी लिखते हैं, आरजे समरीन बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, मेरा इन्होंने जो नाम डेडिकेट किए हैं मैं जल्दी से उनको मेंशन कर लेती हूँ। आफ्ताब अंसारी

इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का नाम इन्होंने मेंशन किया है। फगरू राम यादव लिखते हैं फिल्म खून पसीना से संबलपुर कांकेर सिका। फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव को ये गाना सुनवाना चाहते हैं। राशिद हुसैन का मेल कहा, आफ्ताब अंसारी लिखते हैं, आप मेल दोबारा कर रहे हैं। राशिद हुसैन लिखा है हॉट मेल प्रोग्राम, प्यारी सिस्टर जी, आरजे जी, आपको प्यार भरा आदाब। फिल्म कभी अजनबी थे बोल गीत मेरे होठों को दे गया कोई लता मंगेशकर की आवाज में है, इसे सुना दीजिए। और सुनाना चाहते हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, असना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। और आगे जो नेक्स्ट मेल हमारे पास आया, मैं कोशिश करी कि मैक्सिमम को शामिल करूं। रविंद्र मोहनदास, कोई भी गीत सुनवा दीजिए, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी को गीत सुनवाना चाहता हूं। सतीश अनेजा जी ने हमें मेल किया है, लिखते हैं सलाम समरीन बहन जी, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं, नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। क्या बात कही आपने। गीत मौसम मस्ताना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर से इन्होंने फरमाइश की है, चंडीगढ़ से। और आगे लिखते हैं कि आपका दिल से धन्यवाद, आपका भी सतीश अनेजा जी, दिल से धन्यवाद हमें मेल भेजने के लिए। अगला मेल हमें भेजा है सुधांशु एस ने, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट महोना, थाना इटौंजा, बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गाना सुनाइएगा, लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, अथवा दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, अथवा अच्छा जरूर सुधांशु, हम कोशिश करेंगे कि आपके फरमाइशी गीतों को हम शामिल करें। सुनील पाठक जी लिखते हैं, आदरणीय होस्ट मैडम जी का हार्दिक अभिनंदन, अनारकली बाजार जगराओ से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन्होंने फरमाइश की है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए। तौहीद रयान लिखते हैं, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। गुड आफ्टरनून आरजी मैम, कैसे हो आप? मैं मलियाबाद से हूँ, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, प्लीज मुझे ये सॉन्ग सुना दीजिए कि तू धरती पर चाहे कहीं भी रहे, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। जी तौहीद, हमने आपका ये गाना मेंशन कर लिया है और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मल्होत्रा जी की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: दो बजकर 21 मिनट और 22 सेकंड, आप सुन रहे हैं हॉट मेल अपनी दोस्त समरीन के साथ, जहां शामिल हो रहे हैं आपके भेजे हुए मेल्स इस प्रोग्राम में। और आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमें जो मेल भेजा है वो है तुलसी मस्कीन का। सबसे ज्यादा प्रेशर इस प्रोग्राम में इसलिए होता है कि इतने प्यार से आप लोग तीन तीन चार चार बार मेल भेज रहे होते हैं और फिर भी शिकायत होती है कि अभी मेल नहीं पढ़ा गया है। तो मैं जल्दी से मेल पढ़ना शुरू करती हूँ। आदरणीय होस्ट मैम जी नमस्कार, प्लीज प्लीज प्लीज किसी भी प्यारे से गीत में शामिल कर लीजिएगा मेरा ये मेल। और एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, जो भी मैं अपनी पसंद से प्ले कर दूं। कितने प्यारे और इनोसेंट हमारे लिसनर्स हैं। और नेक्स्ट मेल हमें भेजा है अभिजीत जी ने। आदरणीय मैडम जी आपको प्यार भरा नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। फिल्म कारवां, स्वर लता मंगेशकर जी, चढ़ती जवानी, मेरी चाल मस्तानी, आगे इन्होंने ये सुनाना चाहते हैं अभिजीत जी को, प्रणीता जी को, सरिता जी को, अर्जुन को और वैशाली, शैलेश को, एकांश, सुमित को और कुमारी ध्वनि को, जिन्हें इन्होंने लिखा है कि वो परी भी कहते हैं। रोजी डिकैस्ट्रो सप्रेम नमस्कार।

होस्ट जी जानकीपुरम जनकपुरम सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो और गाने की उन्होंने फरमाइश की है, जो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर प्ले करें। गाना बहुत प्यारा है। एक मिनट, अगला मेल हमें भेजा है विनोद जी ने, और उन्होंने सिर्फ गुड आफ्टरनून मैम लिखा हुआ है। सत्यनारायण कुरिल लिखते हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हॉटमेल प्रोग्राम में मेल करने का समय निर्धारित करिए, जैसे कि 2 बजे से 2:15 के तक ही मेल शामिल करें, उन्हीं मेल को, जिससे आप सभी को मेल शामिल, आप सभी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनके मेल शामिल हो सकें और सभी के पसंद के गीत शामिल हो सकें। उदयपुर राजस्थान, सत्यनारायण कुरील, धन्यवाद। सत्यनारायण जी, आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर हम वक्त की लिमिटेशन कर देंगे तो लगातार जो 1 घंटे मेल आ रहे होते हैं, और बहुत सारे मेल्स जो है उसमें ये छूट जाता है, बहुत सारे मेल्स छूट जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि ये रिक्वेस्ट आप हमारी जब प्रोग्राम आता है जिसमें हमारी सुमना मैम आती हैं, आप उनको अपनी ये रिक्वेस्ट बताइए, एंड डेफिनेटली वो इसका कोई सलूशन निकालेंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। लेकिन फिर भी सभी के गाने प्ले हो जाएंगे इसका कोई प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि मेल्स बेहद आते हैं इसमें। दिनेश वर्मा लिखते हैं कि फिल्म ममता स्वरलता, और फरमाइश करता रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। जय लिखते हैं, हमारा नंबर कब आएगा जी, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, जय राम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म सौदागर, गीत इलू इलू क्या है। देखिए आपका समय आ गया और आपका मेल पढ़ दिया गया है, अब आप लोग ऐसे भी एडजस्ट कर लिया करिए, अच्छा ठीक है मेरा मेल पढ़ लिया गया तो गाना नहीं गया या मेरा गाना प्ले हो गया तो मेल रह गया, ऐसे ऐसे एडजस्ट भी करिए। स्वरण सिंह नमस्कार जी, गाँव लोहगढ़ ठकुरा वाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गीत कोई भी सुनवा दीजिए, हमारा नाम जरूर शामिल कर लीजिए। अब ये भी एक कंफ्यूजन है, कुछ लोग चाहते हैं कि मेल शामिल हो जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि गीत प्ले हो। और सुधाकर जी, आपका मेल शामिल हो चुका है, प्लीज आप 4-4 बार मेल करेंगे तो कैसे बाकी लोगों के मेल शामिल होंगे। बेरित कुमार लिखते हैं, संजय ट्रेलर ग्राम सरैया पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल सीतापुर से, हॉटमेल में मेल कर रहा हूँ, समरीन बहन जी आपको गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया की नमस्ते, मेरा मेल शामिल कर लीजिएगा, पहली बार मेल कर रहा हूँ। नई बिनित, मैंने इससे पहले भी आपके मेल कई बार पढ़े, निराश मत करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मेरा एक गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। अच्छा, 20 साल बाद मेरे दोस्त हैं विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर से, आजाद सिमरीन, अच्छा मेल लिखते लिखते गायब हो गए हैं, इनका मेल पूरा नहीं है। नेक्स्ट मेल हमें भेजा है पंजाजी नवाकर ने, आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार, फिल्म जानवर मोहम्मद रफी की आवाज में गीत सुना दीजिए, और नालेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस कानवकर, और इसके अलावा इन्होंने हमें भेजा है मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान तायरे, राजकुमार करचे, आशीष मुहारकर, शमसुल कमर राही ने हमें भेजा है आरजे जी आदाब, गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, अनु खान, नवी हसन लिखते हैं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, खैरियत से हैं आप जी? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और ये सुनवाना चाहते हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, और आगे लिखते हैं कि अगर मेरा मेल आपने शामिल कर लिया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इससे पहले कि मैं म्यूजिकल ब्रेक में जाऊँ, गुरमीत का मेल शामिल कर लेते हैं, खुशनुमा FM गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से इन्होंने हमें मेल किया है। अब सुनाते हैं ये गीत आपके रेडियो सेट पर, ये रहा

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

और ये जो वक्त है ये दुश्मन है हमारा। 2:36 और पूरे 36 सेकंड आप सुन रहे हो हॉटमेल। और अगर आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने मेल्स भेजना चाहते हैं, तो आप हमें fmakashwadi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। फिलहाल चलिए जल्दी से शामिल करते हैं मेल। दिग्दर्शन गौर जी का लिखते हैं मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई, ठीक 2 बजे मेल किया था, ना जाने कहाँ चला गया। आप मेल पढ़ते हुए शिकायतें या तारीफें मत पढ़ा करिए, इससे प्रोग्राम का समय नष्ट होता है। जितनी देर में आप शिकायत और तारीफ पढ़ती हैं, इतनी देर में बहुत सारे लोग के मेल शामिल हो जाएंगे। देखिए मेल में कोशिश तो यह रहती है कि पूरी बात लोगों तक पहुँचे जो भी वो हमें भेज रहे हैं, और इतना टाइम नहीं होता कि हम मेल्स को पहले से पढ़ कर रखें। तो दीपेश वर्मा लिखते हैं नमस्कार जय जोहार, ग्रीन पीपल लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश, और इन्होंने गाने की फरमाइश की है, कोशिश करेंगे कि प्ले हो जाए। कदर एमआर लिखते हैं कि आपकी पसंद का कोई भी गीत सुरीला सदाबहार सा गीत सुना दीजिए। और बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया है, बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर और बेबी आयशा खत्री घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री जी को ये गाना सुनवाना चाहते हैं। साई गायकवाड़ लिखते हैं हॉटमेल सादर करने वाली समरीन दीदी को प्यार भरा नमस्कार, दीदी आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनारी फिल्म का क्या मौसम आया है गाने की इन्होंने फरमाइश की है, अगर हमारे पास वक्त मिलेगा तो हम जरूर प्ले करेंगे। सीताराम कागरा जी लिखते हैं नमस्कार, फिल्म सनम गीत इश्क में मेरे रब्बा

जो है वो प्ले कर दीजिए। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकिता कांगड़ा ने हमें मेल किया है। ताज मोहम्मद लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, हमारी फरमाइश का गीत भी किसी उसमें शामिल कर लीजिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर सराही, महराज जहां और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। मोहम्मद सादिक खत्री लिखते हैं, मोहतरमा जी आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुना दीजिए और इन लोगों के नाम ले दीजिए। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री। राघव बघेल लिखते हैं, फिल्म नील कमल से तुझको पुकारे मेरा प्यार पसंद, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मेल किया है। फरहान लिखते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान, मैं लखनऊ से हूँ, सॉन्ग सांसों को जीने का इशारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। ज़रूर फरहान, कोशिश रहेगी कि हम गाने प्ले करें जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले मेल शामिल कर लेते हैं। डीके जी लिखते हैं, न्यू दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, फिल्म महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इसी तरह का भी थोड़ा सा एक गाना मैंने आपको प्ले किया है। वारिस अंसारी जी लिखते हैं, समरीन जी को आदाब, मूवी बादशाह ट्रैक हम तो दीवाने हुए यार, ओके। और अच्छा, इन्होंने ऑप्शन दिए, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ज़रूर फिलहाल हमारे एक श्रोता की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

2:49 और 39 सेकंड आप सुन रहे हैं हॉटमेल अपनी दोस्त सबरीन के साथ, और लगातार जो आपके मेल्स का सिलसिला है वो हम तक पहुंच रहा है। और मेल जो हमें भेजा है वो भेजा है सुरेश नारंग ने। रिस्पेक्टेड आरजे, मेरे पसंद का ये गाना सुना दीजिएगा। सहारनपुर से इन्होंने हमें मेल भेजा है। आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग को ये सुनाना चाहते हैं मेल। ज़रूर आपकी पसंद का ट्रैक हम कोशिश करेंगे कि इसी अगले जो 10 मिनट हैं उसमें हम प्ले कर दें। बोधराज खोरवाल लिखते हैं, फिल्म 3 इडियट्स, जुबी जुबी डुबी रुबी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमल रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश को ये सुनाना चाहते हैं गीत। नरेश लिखते हैं कि नमस्कार आरजे जी, शुक्रिया कहना तो भूल गए थे। शुक्रिया जी, ये मेल नाम शामिल करवाने के लिए नहीं भेजा था दीदी, सदा खुश रहिए आप। इन्होंने नाम भेजे हैं खैर बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। और अगला मेल जो हमें भेजा है वो भेजा है नरेश ने, लिखते हैं नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। लालगिरी लिखते हैं, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित गोस्वामी और कार्यक्रम पेशकर्ता जी, हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कोई भी सॉन्ग जो है वो आप अपनी पसंद का प्ले कर दीजिए। ओम बगेरा लिखते हैं, नमस्कार गांव बांडीवाला फलजिका पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। और इन्होंने फरमाइश की है क्रोधी फिल्म के गीत की। अजीज अहमद लिखते हैं, ग्राम पोस्ट तिहार यूपी 34, एक सुखमय खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या ना करें। और इन्होंने आज मेरी पसंद का गाना सुना दीजिए, जुदा होके भी तुम मुझमें कहीं बाकी है। जरूर थोड़ी देर में सुनेंगे आप ये गीत। और अगला गीत की फरमाइश की है संजय ढींगिया ने, बागपत उत्तर प्रदेश से, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन, गीत की उन्होंने फरमाइश की है। निसार अली जी लिखते हैं, प्रस्तुतकर्ता जी को प्यार भरा नमस्कार, किसी भी गीत में के बाद मेरा ये मेल शामिल कर लीजिएगा और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दीजिए। घनौरी तेली वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा लिखते हैं, हॉटमेल आदरणीय प्रसारक जी सप्रेम नमस्कार, किसी भी गीत में मेरा ये मेल शामिल कर लीजिए। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा को ये गीत सुनाना चाहते हैं। राजकुमार जी लिखते हैं, गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी। सदानंद मंदुरकर प्रसारक जी सेवा में नमस्कार, फिल्म आंखें से गाना सुनवा दीजिए। और अब हम थोड़ा सा लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, और आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप, और देखिए ना घड़ी में बज चुके हैं ठीक तीन, जी हाँ तीन बज चुके हैं। म्यूजिक आर प्रोग्राम के साथ मैं आ चुकी हूँ, मैं हूँ कौन, जी हाँ मैं हूँ आरजे मालिनी।

तो चलिए म्यूजिक कार का सफर शुरू करते हैं। आज प्रोग्राम में बातें होने वाली हैं बहुत इंटरेस्टिंग सी। जी हाँ, जंजीज की। जंजीज यानी कि मॉडर्न जुनून से Y2K फैशन की आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और जंजीज यानी कि जेनरेशन जेड। आपको बता दें कि जनाब ये वो पीढ़ी है ना जिसका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच में हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इस जेनरेशन की खास बात पता है क्या है? जी हाँ, इस जेनरेशन की जो है खास बात है ये कि ये जेनरेशन जो है ना तकनीक के साथ बेहद सहज है, नए विचारों को अपनाने वाली, अपनी पहचान और व्यक्तित्व को महत्व देने वाली, ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ साथ ना उसे नया रूप देने वाली भी है ये जेनरेशन। तो वेलकम दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्राम में हमसे कनेक्ट होने के लिए दीजिए आसान से प्रश्न का उत्तर। क्या है प्रश्न, सुनिए ध्यान से। आज आपको बताना है प्रोग्राम में नए गानों में सबसे ज्यादा जो जादू है आज भी पुराने गानों का है। जी हाँ, जो नई जनरेशन है उसमें भी पुराने गानों का जादू आज सबसे ज्यादा छाता है। तो भेजिए अपनी राय कि कौन सा गाना आपके दिल के करीब है और फैशन की वो कौन सी पुरानी स्टाइल है जो आज भी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो पाई है। शेयर योर थॉट्स। हमारी मेल आईडी है airkansomedia@gmail.com।

जी हाँ बिल्कुल, एक नंबर की जनरेशन कहे जंजीज को तो शायद गलत नहीं होगा। अब देखिए ना, फैशन बदलता है, वक्त बदलता है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स ना सालों बाद भी लौटकर दिल जीत लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी यानी कि जनरेशन जेड, जी हाँ, जेन यानी कि जनरेशन की शॉर्ट फॉर्म है और जेड यानी कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का आखिरी अक्षर है। इस जनरेशन को जूमर्स भी कहते हैं। और इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये जो है ना इंटरनेट के जमाने में लोग पैदा हुए हैं। अब बात करेंगे इसके मतलब की, जी हाँ, इससे जुड़े फैशन के मतलब की, यानी कि Y2K फैशन का मतलब क्या है। Y2K फैशन का मतलब है 90s के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत के फैशन स्टाइल से है। पता है इसका जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट क्या होता है, क्या होता है इसका, हम बताएं आपको। इसमें जो है ना चमकीले रंग, फ्यूचरिस्टिक लुक और बोल्ड एसेसरीज का मिश्रण होता है। जी हाँ, बहुत ही ये लुक जो है आकर्षक होता है। तो चलिए जनाब, आज हम सब मिलकर जुड़ते हैं जनरेशन जेड के इस फैशन से। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।

बिल्कुल जनाब, आज का युवा भी जो है अपना जलवा बिखेर रहा है चारों तरफ। आज की जो युवा पीढ़ी है यानी कि जंजीज 2000 के शुरुआती दौर के Y2K फैशन के नए अंदाज में जी रही है। एक बार फिर से फैशन में है वही वाली पुरानी स्टाइल, जी हाँ बैगी जीन्स। जी हाँ, बैगी जीन्स फिर से फैशन में है। कार्गो पैंट, रंग बिरंगे चश्मे और इनको कैरी करके युवाओं का बेफिक्र अंदाज, सब कुछ बिल्कुल निराला। जी हाँ, सब कुछ फिर से इन दिनों ट्रेंड में है। यादों का रिवाइंड बटन दबाइए तो हमें साफ नजर आएगा कि Y2K फैशन की चमक और जंजीज का स्वैग। सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट।

जी हाँ, स्वैगर बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि फैशन का दौर है जनाब। हमने आपसे पूछा था कि नए गानों में, जी हाँ, जो लोग नए गाने पसंद करते हैं वो भी आज पुराने कुछ गानों से बड़े आकर्षित हो जाते हैं, तो वो कौन सा ऐसा गाना है जिसका जादू आज भी आपके सिर चढ़कर बोलता है? जो पुराना सॉन्ग है वही हमें लिख भेजिए। और दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था, फैशन की कौन सी पुरानी स्टाइल है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती? शेयर करें अपनी मेल, हमारी मेल आईडी पर। हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com और हमारी स्क्रीन पे मेल आ चुकी है। फिलहाल तो अभी

0: कि मैं एक ब्रेक के बाद अभी मिलती हूँ आपसे मेल के साथ।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
6: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
5: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
6: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
5: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: म्यूजिकार प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और म्यूजिकार में आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हम लेकर आए हैं, जंजीज मॉडर्न जुनून से Y2K फैशन तक की। दोस्तों अभी बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपको हमने सुनवाया, बन्नो तेरा स्वैगर। जी हाँ, आज का युवा ना अपना जलवा बिखेर रहा है चारों तरफ, ये तो आप सब जानते ही हैं। भाई फैशन का जो दौर है ना, ये कहता है कि मैं स्टाइलिश हूँ, सबसे अलग हूँ, और इसे स्टाइलिश और अलग बना दिया है आज के जंजीज ने। जेनरेशन जेड कहती है जितना यूनिक उतना वायरल। जी हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, तब लोग आईने में देखकर ट्रेंड बनाते थे, आज लोग कैमरे में देखकर। जी हाँ, देखिए कितना वक्त बदल गया है। जेनरेशन जेड की अगर हम बात करें तो सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? सबसे दिलचस्प बात इस जेनरेशन की ये है कि जिन गीतों को सुनकर ना कभी उनके माता पिता जो है ना बड़े हुए थे, वो आज उन्हीं पुराने गानों पर रील्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और उसे रिक्रिएट भी करते हैं, जिस तरह ये गाना।

और फिलहाल हमारी स्क्रीन पर मेल भी आने लगी है। जी हाँ, जब मेल आने लगी है तो क्यों ना हम मेल को भी शामिल करें प्रोग्राम में। पता है हमारे लिसनर जब किसी भी प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी प्रोग्राम की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए एक पहली मेल को हम शामिल करते हैं। हमारी एक रेगुलर लिसनर हैं जो बहुत ही शिद्दत से हमें मेल करती हैं। इन्होंने लिखा है, बेइंतहा मोहब्बत दिल में बसा रखी है, तेरी चाहत सपनों में सजा रखी है, ये दुनिया बदले पर तुम कभी ना बदलना। भाई मैं कभी नहीं बदल रही हूँ, हम क्या, बिल्कुल एफएम रेनबो का प्यार आपके प्रति हमेशा यही ऐसे ही रहने वाला है, तुम कभी मत बदलना, यह सिर्फ एफएम रेनबो से उम्मीद तुमसे लगा रखी है। तो देखिए हमने आपको बता दिया एफएम रेनबो आपसे भी बहुत प्यार करता है। और ये हैं रूपपुर चंदेला से नीलू शर्मा, ये हमारी एक रेगुलर लिसनर है। लिखती है, मनुदी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, महिलाओं के लिए साड़ी जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट, कितने भी डिजाइन आ जाएं लेकिन ये चेंज कभी नहीं होगा, साड़ी और पैंट शर्ट का मॉडर्न जमाना हमेशा रहेगा। बहुत सही जवाब आपने दिया है, बहुत अच्छा जवाब है, चाहे पहनने का स्टाइल बदल जाए, है ना। और मेरे दिल के करीब एक सॉन्ग है पुराना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो नीलू जी, हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बस ऐसे ही प्यारे प्यारे मैसेज करते रहिए और हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में अगली बात की ओर। देखिए दोस्तों, वक्त बदलता है, ट्रेंड बदलते हैं और पीढ़ियाँ भी बदल जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ना कभी नहीं बदलती, जैसे कि अच्छा सा संगीत, सच्ची दोस्ती और खुद को खुलकर जीने का अंदाज देना, मानते हैं ना आप। और शायद यही वजह है कि Y2K जो फैशन का जादू है ना, आज भी जंजीज के दिलों पर छाया हुआ है। वाकई में कुछ ट्रेंड्स ना कभी पुराने नहीं होते, वो बस नए दौर में अपनी पहचान के साथ लौट आते हैं और हमें कहीं ना कहीं पुरानी यादों से कनेक्ट कर जाते हैं।

0: ये वक्त बिल्कुल भी झूठा नहीं है। देखिए वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और इस समय वक्त इशारा कर रहा है कि इस समय एक शॉर्ट ब्रेक की बारी है। तो 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट रहिएगा आप। मैं अभी आती हूँ प्रोग्राम के साथ।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: दोस्तों एक सूचना सुनिए। कानपुर देहात एवं उन्नाव जनपद के उपभोक्ताओं की डाक विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड के कार्यालय कक्ष, पता आपको बता दें, कानपुर जीपीओ भवन बड़ा चौराहा, दिनांक 15 जून 2026 को समय 11 बजे, जो दिन में है, डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं की पंजीकृत वस्तुओं, धनादेशों, बीमाकृत वस्तुओं, बचत बैंक एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। अपनी समस्याओं शिकायतों के निदान हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित अधीक्षक डाकघर कानपुर मुख्य प्रखंड कानपुर के कार्यालय में दिनांक 10 जून 2026 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि तक परिवाद प्राप्त होने पर परिवाद समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक परिवाद प्राप्त न होने पर परिवाद समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। ये एक बार हम आपको फिर से बता दें। तो इसी के साथ सूचना समाप्त हुई।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

वेलकम बैक वंस अगेन टू द शो म्यूजिकल। म्यूजिकल में आज बातें हो रही हैं जेंजीज मॉडर्न जुनून से Y2K फैशन तक की। प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी।

दोस्तों आप कहाँ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लिख कर बताइए और भेजिए अपने नाम और बनिए प्रोग्राम का हिस्सा। और आपको क्या बताना है, आपको ये बता दें कि नए गाने तो हम सब पसंद करते हैं, लेकिन आज भी बहुत से हमारे जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो पुराने गानों के जादू पर फिदा हो जाते हैं। तो भेजिए अपनी राय कि आपको कौन सा गाना पसंद है और फैशन की कौन सी पुरानी स्टाइल है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती। तो हमारा मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

जनाब, ये गाना जब बज रहा था ना पान की दुकान का, तो मुझे एक पुराना सॉन्ग भी याद आ रहा था। वाकई में पुराने जो लोग थे ना, वो पानदान घर में रखा करते थे, पान का सेवन करते थे, और घर में पानदान पाया भी जाता था। पान में चूना लगाकर खाने के बाद उसका सेवन, खाना खाने के बाद पान में चूना लगाकर उसका सेवन किया जाता था। और कहते हैं कि भोजन करने के बाद ना सादा पान का पत्ता केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पाचन में भी सहायक माना जाता है।

चूना लगाकर खाने के बाद उसका सेवन, खाना खाने के बाद पान में चूना लगाकर उसका सेवन किया जाता था। और कहते हैं कि भोजन करने के बाद ना सादा पान का पत्ता केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि पाचन में भी सहायक माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, फायदा केवल सादे पान के पत्ते में है, है ना। तंबाकू का सेवन करने से इसका स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस बात पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात आज यहाँ पर याद आ रही है, नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं। आपको बता दें कि भारत भर में मादक पदार्थों का सेवन एक गंभीर चुनौती बन चुका है इन दिनों, जो व्यक्तियों और समुदायों को प्रभावित करता है। नशा मुक्त भारत अभियान NMBA केंद्र सरकार का एक अभियान है जो 15 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका है और इस पहल का उद्देश्य है मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। जी हाँ, सो गाइस, बड़े बुजुर्ग और खास तौर पर युवा वर्ग एक स्वस्थ भारत के लिए सामुदायिक जिम्मेदारी तो निभा ही सकते हैं, तो बनिए इस अभियान का हिस्सा और लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। और सुनते रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।

जी हाँ बिल्कुल, हम भी तो यही कह रहे हैं कि इतनी ही सी तो बात है जनाब कि अच्छा भोजन खाइए और खिलाइए और गलत आदतों से दूर रहिए। एक राज की बात बताऊं, अच्छा भोजन ना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव होता है। आज की न्यू जनरेशन छोटे मोटे सेलिब्रेशंस के लिए देखिए ना फास्ट फूड की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाती है, जैसे कि बर्गर है, पिज्जा है ना, फ्रेंच फ्राइज है। तो भाई मैं तो ये कहूंगी कि आप यंग हो तो आप वर्कआउट से तो जुड़ो ही, साथ ही साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखो। और आप हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे, इसके लिए अच्छे खान पान के लिए आप मोटिवेट कर पाएंगे। तो आज हम बता दें क्यों ये बात हम कर रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा भोजन सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक होगा तभी हमारी सेहत जो है मुस्कुराएगी। तो भाई क्यों यंगस्टर्स, मुस्कुराना है ना भाई। आज और अभी से ना हम खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, भोजन को बर्बाद होने से भी हमें बचाना है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भोजन भी नहीं मिलता है। तो भाई स्वस्थ जीवन की ओर एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण कदम बढ़ाइए, इसी खूबसूरत से संदेश के साथ भाई हम भी बढ़ते हैं एक अगले खूबसूरत से सॉन्ग की ओर। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, द म्यूजिकल हार्टबीट। म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आरजे मालिनी, बोले तो मुस्कुराती मालिनी।

दोस्तों चलिए प्रोग्राम में फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती एकता कपूर के बारे में अब हम बात करेंगे। एकता कपूर के वास्ते भाई सोशल मीडिया पर लगातार मैसेजेस की आज झड़ी लगी हुई है। अभी मैं चेक कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना प्रोग्राम में उनको भी थोड़ी सी आज मैं बधाई दे दूँ। जी हाँ, आज है 7 जून और आज एकता कपूर अब मना रही हैं अपना बर्थडे। 7 जून सन 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में एकता कपूर का जन्म हुआ था। भाई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एकता कपूर। आज एफएम रेनबो परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बर्थडे विशेष। और टेलीविज़न और फिल्म निर्माण जो फिल्मों के निर्माण में भी एकता कपूर जो हैं काफ़ी जाना माना नाम है। तो सुनते हैं एकता कपूर और शोभा कपूर द्वारा निर्मित फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, या इस फिल्म का फेमस सॉन्ग।

एक मेल और आ चुकी है और हमारे मेल करने वाले लिसनर जो हैं वो हैं सत्यनारायण कुरील जी हैं। ये लिखे हैं इट्स लुक लाइक दिस मैसेज। जी हाँ, इन्होंने इंग्लिश में कुछ लाइन लिखी फिर लिखा है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ सत्यनारायण कुरील, मुझे पुराने गीत पसंद हैं। तो कुरील जी, मुझे पता है मैंने पूछा था कौन सा गाना आपको पसंद है पुराने में, तो चलिए आपने ये लिखा पुराने गाने पसंद हैं। फिलहाल तो मैं बता दूँ कि आज हमने क्या क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि अगर आप पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं तो कौन सा ऐसा गाना है पुराना वाला जिसका जादू आज भी आपके सर पर चढ़कर बोलता है, यानी आपको पसंद है, और फैशन की कौन सी पुरानी स्टाइल है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती। शेयर करें हमें अपनी मेल, हमारा मेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। तो थैंक यू सो मच जी सत्यनारायण कुरील जी।

सोशल मीडिया जो है ना सबका चैन वैन अपने साथ ले गया है। वाकई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने आज काफ़ी हद तक हमें जो है अपनी खासियत से जोड़ा है। जी हाँ, आज के दिन की खासियत भी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही ज़्यादा पता चलती है ना। कोई भी जानकारी हो बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुँचती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अब देखिए ना, ओल्ड सॉन्ग्स को ही लीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुराने गाने हों या फिर फैशन हो या कोई भी नया ट्रेंड्स हो, सब कुछ नए रूप में वायरल होता रहता है। और इस चेंज से ना आज के जेंजीज मतलब कि आज की जनरेशन तुरंत कनेक्ट होती है। जी हाँ जनाब, जेंजीज जो है ना वो सिर्फ पुराने ट्रेंड्स को ही कॉपी नहीं करते बल्कि उन्हें आधुनिक अंदाज के साथ पेश करते हैं। और यही वजह है कि Y2K फैशन और 90s के गाने फिर से नई तरह से आज लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे कि ये 90s का ये गाना, सुनिए इसका नया वर्जन।

तो दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम म्यूजिकार में बात कर रहे थे जेंजीज मॉडर्न जुनून से Y2K फैशन तक की। तो इन बातों में बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हमने की, और अब फिलहाल प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त आ गया। और देखिए, वक्त बदलता है, ट्रेंड बदलते हैं और पीढ़ियां बदलती हैं, कुछ बातें कभी नहीं बदलती। अच्छा संगीत, सच्ची दोस्ती और खुद को खुलकर जीने का अंदाज देना। दोस्तों, यादों के इस खूबसूरत से रिवाइंड में साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नए ट्रेंड्स, नई कहानी और नए संगीत के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने अंदाज में जिंदगी को स्टाइलिश बनाते रहिए। जेंजीज मॉडर्न जुनून से Y2K फैशन तक की आज के सफर की चर्चा बस यहीं तक। आज हमने चर्चा करी इस टॉपिक की म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम में। लास्ट सॉन्ग के साथ आरजे मालिनी को दीजिए इजाजत म्यूजिक आर्ट प्रोग्राम से। नेक्स्ट प्रोग्राम है हेलो कानपुर। सुनने के लिए ट्यून इन रहिएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 102.2 FM रेनबो कानपुर से मैं आरजे फरहान लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम हेलो कानपुर। हेलो कानपुर में आज बड़े मस्त सॉन्ग बजने वाले हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि बहुत दिनों के बाद हमारे वो लिसनर जो एक लंबे समय तक हमारे प्रोग्राम को नहीं सुन पाए, आज हम फिर उनसे मुखातिब हैं और इस एपिसोड में हम उनसे बहुत सारी गपशप करने वाले हैं, बहुत सारी बात करने वाले हैं। और हेलो कानपुर के आज के इस एपिसोड में हम अपने लिसनर से चटपटी, तीखी और ना जाने कैसी कैसी वो जो हमसे बात करते हैं, बड़ा सुन के मज़ा भी आता है। और हम उनसे जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उस पार हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो ये इंतज़ार की घड़ियां फिलहाल अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हम फौरन लेने जा रहे हैं अपनी पहली कॉल को, जो कि हमारे स्क्रीन पर लगातार ब्लिंक कर रही है। और सुनते हैं कि हमारे पहले कॉलर कौन से हैं, क्या है उनकी पसंद और वो क्या बात हमसे करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हेलो कानपुर आरजे फरहान के साथ और लेते हैं पहली कॉल। हेलो कानपुर,
1: राजकुमार बोल रहे हैं, मैं सरवरी पाल।
0: क्या करते हैं आप?
1: गांव में है, खेती किसानी करते हैं सर।
0: तो इस वक्त क्या खेती चल रही है?
1: ये खेत खाली है।
0: ये खेत कब भरेंगे?
1: अब ये है कि बस बात के बाद लगेंगे धान आन वगैरह।
0: अच्छा जी, धान लगाएंगे आप?
1: जी जी जी सर, गाना सुनना है मुझे।
0: नहीं, पहले हम गाना बाद में सुनाएंगे, पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने खेतों में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ की फसल कौन सी होती है अच्छी?
1: सबसे अच्छी तो फसल यही है, बाजरे की है, जुंडी होती है ज्यादा करके।
0: आप रेनबो सुनते हैं?
1: जी सर, रेनबो बढ़ावा चलता है हमारे यहाँ।
0: क्या आपको अच्छा लगता है उस पर?
1: पर सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: फिर भी हम चाहते हैं कि दो एक कार्यक्रम आप बताएं।
1: सर आज तो हेलो कानपुर चालू हो गया, ये हमारा फेवरेट है सर। ये SMS वाला अच्छा लगता है, जो कार्यक्रम चलते हैं 2 बजे से।
0: आप बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, वो वाला गाना बजा दीजिए, दीदी तेरा देवर है गाना।
0: ओके, आपने हमको कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया। फरहान सर बोल रहे हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, आपने पहचान लिया हमारी आवाज से?
1: आवाज तो आपके दीवाने, आप दिन भर प्रोग्राम सुनते रहे, जितने भी एंकर है सबसे ज्यादातर आवाज जानते हैं।
0: ओके, तो आपने तभी आवाज सुन करके पहचान लिया फरहान बोल रहे हैं?
1: अरे सर आपसे आज हमारी तीसरी बार बात हो रही, दो बार उसमें हो चुकी है हेलो कानपुर में, और आज रेनबो में हो रही है।
0: ओके, रेनबो में आप आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना तो हम सुनना चाहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम का।
0: कौन सा
1: टाइटल सॉन्ग है? जी हमारे यहाँ प्लास्टिक बोर्ड काम होता है, वहीं पे हम लोग काम करते थे।
0: गर्मी कैसी पड़ रही है फिल्म कोठी में?
1: सर जी गर्मी क्या कहेंगे, गर्मी हर साल ऐसे ही पड़ती है, अब झेलना पड़ता ही है।

0: तो आपको सर्दी का मौसम अच्छा लगता है कि गर्मी का?
1: मौसम हमें सारे अच्छे लगते हैं।
0: तो ये गर्मी का मौसम कैसे एंजॉय करते हैं?
1: ये गर्मी मौसम हमारे बॉस ने हम लोगों के लिए कूलर वूलर लगवा रखा है ना।
0: ओके, तभी आप कूलर में काम करते हैं।
1: हाँ, कूलर लगवा रखा है, रोज ठंडा पानी, तो हम लोग गर्मी लगती नहीं, तो गर्मी मालूम नहीं पड़ती।
0: बढ़िया, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद पर हम ये प्ले कर रहे हैं सॉन्ग।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: निविदिया कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश, श्री मोहम्मद अहमद रायनी बोल रहे हैं।
0: और क्या कर रहे हैं मोहम्मद अहमद रायनी साहब, विविध भारती कैसा लगता है आपको?
1: बहुत बढ़िया लगता है, सारे कार्यक्रम इसके अच्छे लगते हैं। कहिए तो नाम गिना दूं थोड़े से।
0: हाँ गिना दीजिए।
1: गुड इवनिंग कानपुर, निविदा के सारे कार्यक्रम, गाने तराने जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और आपकी फरमाइश तो सभी को अच्छे लगते हैं, हमको भी अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते हैं।
0: हमें तो लगता है कि ऐसा कोई सा प्रोग्राम आपकी फरमाइश कम ही जाता होगा जिसमें आपका पत्र ना शामिल होता हो।
1: जी जी जी जी, ये बात सही है आपकी।
0: और पत्र भी इतना लंबा होता है कि पहले तो उसको पूरे पत्र को पढ़ना पड़ता है, बाद में पता चलता है कि गाना कौन सा सुनाना है। गर्मी बहुत पड़ रही है मोहम्मद अहमद, इस वक्त गर्मी से बचाव आप कैसे कर रहे हैं?
1: हम तो बोतल रखे रहते हैं पानी की, और उसमें ग्लूकोज भी डाल देते हैं, और दो चार नींबू भी रखे रहते हैं। अगर ग्लूकोज का पानी पीने का मन हुआ तो उसका पानी पी लिया, नहीं तो नींबू निचोड़ के पी लिया, और जहाँ छाया मिली वहाँ बैठ जाते हैं, फिर चल देते हैं, फिर छाया मिली फिर बैठ जाते हैं, यानी बहुत आराम आराम से काम करते हैं।
0: अच्छा एक बात आपसे और करनी चाह रहा था मैं।
1: हाँ हाँ जी जी बताइए।
0: आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं, तो आकाशवाणी इधर अपनी जो 90 साल उसने पूरे किए हैं मना रहा है, आप बहुत शुरू से हमारे साथ जुड़े, क्या बदलाव देखा आपने आकाशवाणी में?
1: फरहान भाई बदलाव तो मैंने बहुत से देखे हैं, बे इंतहा बदलाव देखे हैं, और जितने भी बदलाव हुए आज तक के वो सब एक से बढ़कर एक हुए हैं। हाँ एक से बढ़कर एक हुए हैं। विविध भारती से भी बदलाव मैंने बहुत से देखे हैं, और आकाशवाणी कानपुर केंद्र से भी मैंने देखे हैं कार्यक्रमों में मैं बहुत। अब जो इधर एक मई 2026 से जो बदलाव हुए हैं कानपुर के कार्यक्रमों में, वो बहुत उमदा कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, यानी आप अनाउंसर जो है इतना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं श्रोताओं का कि शुरू की मतलब प्रोग्राम की जो शुरुआत करते हैं वो इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि पूरा प्रोग्राम सुनने का मन होता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले मतलब कार्यक्रम अच्छे प्रसारित नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी इधर कुछ ज्यादा ही मतलब बदलाव हुए हैं।
0: आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो हमारी तहजीब है विविध भारती का, अपना एक कल्चर रहा है, एक तहजीब रही है, बदलाव जरूर करे विविध भारती ने लेकिन अपनी तहजीब को वो नहीं भूला, क्या आप इस बात को मानते हैं?
1: अरे मैं 100% मानता हूँ कि विविध भारती जो है अपने जो उनका जो मतलब शुरू से जो नजरिया रहा है, बातचीत का लहजा और बातचीत किस ढंग से करनी चाहिए अनाउंसर को, और आलेख किस तरीके से लिखना चाहिए, इस पर बहुत ध्यान दिया है विविध भारती प्लस आकाशवाणी कानपुर केंद्र ने,
0: और उसका परिणाम ये होता है कि हम आपसे सीधे जुड़ पाते हैं।
1: जी जी जी जी जी जी।
0: आज कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है स्वामी
0: जी,
1: गायक किशोर कुमार, गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन, और गाने के बोल हैं यादों में वो सपनों में है, धड़कन का बंधन तो धड़कन से है।
0: बिल्कुल हम आपको आपकी पसंद पर यह सॉन्ग सुनवाते हैं। मोहम्मद अहमद आपने हमें कॉल किया, आपके पत्र हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज आपसे बात भी हुई हमारी, हमें बहुत अच्छा लगा। आप कॉल करते रहिएगा, पत्र लिखते रहिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर सर, नमस्ते।
0: आप कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं ज्ञानेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, सुबेदर चौराहा नगवा कानपुर से।
0: ज्ञानेंद्र करते क्या हैं आप?
1: जी सर मैं पढ़ाई करता हूँ और सर घर में जो पापा की मदद हो सकती है किसानी करते हैं, उसमें सर मदद कर देते हैं।
0: नौबस्ता में कहाँ किसानी होती है?
1: नौबस्ता के आगे सर नगवा कानपुर पड़ता है, नगवा।
0: हाँ,
1: नगवा जी,
0: हाँ,
1: वहाँ
0: तो
1: पे।
0: अच्छा, तो इस वक्त कौन सी फसल बोई हुई है?
1: इस समय तो सब्जी लगी हुई है, तो तरोई और ये लौकी कद्दू यही लगा हुआ है, बाकी गेहूं और धान होते हैं यहाँ पे।
0: गेहूं और धान तो अब इसके बाद बोया जाएगा ना?
1: जी जी अब धान की फसल आएगी। अब तो
0: पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
1: सर पढ़ाई कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं सर, और उसके साथ में ये जो भी मदद हो सकती है ये सर कर देते हैं।
0: नहीं, वो तो एक ठीक है, मदद तो सब लोग करते रहते हैं, लेकिन पहला फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए ना। तो
1: जी
0: हम
1: जी जी वो खाली टाइम में थोड़ा बहुत सर हो जाता है, बाकी तो पढ़ाई पर ही फोकस होता है।
0: सारे जितने भी लड़के और लड़की हैं उन सबका कर्तव्य होता है कि वो अपने पेरेंट्स की मदद करें, और कल वो जिम्मेदारी जो आज पूरी कर रहे हैं कल वो हमको अपने ऊपर लेनी है ना।
1: जी सर जी।
0: पढ़ाई पर चूंकि आज हम फोकस करेंगे तो कल हम एक अच्छे इंसान भी बनेंगे और एक कामयाब इंसान बनेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप
1: सर।
0: ऐसे ही तैयारी कंपटीशन की करते रहिए, और बेशक आप हाथ भी और हेल्प करते रहिए, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: सर आज अपनी पसंद से कोई भी नया गाना,
0: आप अपनी पसंद बता दीजिए
1: सर कोई भी जो नई फिल्म

0: मतलब जो भी फिलहाल इस समय नया गाना कोई हमको याद
1: तो
0: नहीं है।
1: रेनबो पर आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं?
0: जी सर बिल्कुल सुनते।
1: अच्छा ये बताइए, सेंसस करने आपके पास लोग आए? सेंसस करने लोग आए जनगणना करने?
0: जी बिल्कुल सर, मैं घर पे था नहीं तो उस टाइम हो गई थी जनगणना, मेरे घर पे आए हुए थे क्योंकि मैं उस टाइम था नहीं, तो मेरे भाई लोग थे तो उन्होंने सारी डिटेल बता दी थी तो उस टाइम।
1: तो ये तो अभी भवन गणना चल रही है, फरवरी में फिर जनगणना शुरू होगी, तब सबकी डिटेल भरी जाएगी।
0: अच्छा।
1: तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वो जो लोग आपके पास पहुंच रहे हैं उनको अपनी पूरी डिटेल दें और उनकी जो हेल्प हो सके वो जरूर करें, क्योंकि वो हमारे और आपके बीच में हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं।
0: आज फरहान सर बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी फरहान बात कर रहा हूँ
0: जी, बिल्कुल।
1: नाम
0: के सर
1: कैसे पहचान गए आप?
0: आपकी आवाज से।
1: आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने चूंकि ये टास्क हमको दे दिया कि हम अपनी पसंद का बजाएं, तो हम आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज का एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग, और आप भी एंजॉय कीजिए।
0: थैंक यू सर। ओके
1: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
3: हेलो कानपुर।
4: हेलो कानपुर नमस्कार।
3: नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
4: जी मैं सोना बोल रही हूँ।
3: सोना कहाँ से बोल रही हैं?
4: जी मैं नेहरू नगर कानपुर।
3: नेहरू नगर कानपुर बहुत करीब से आप हमारे बोल रही हैं।
4: जी जी जी मैं आपको बहुत करीब से बोल रही हूँ।
3: क्या बात है भाई। सोना क्या करती हैं आप?
4: सर मैं हाउस वाइफ हूँ।
3: अच्छा, तो दिन भर आपको कौन कौन से काम करने में मजा आता है?
4: हमें खाना बनाने में, घर की साफ सफाई करने में अच्छा लगता है।
3: खाना बनाने में आपको मजा आता है?
4: मजा आता है खाना बनाने में।
3: क्या आप सबसे अच्छा बना लेती हैं?
4: सबसे अच्छा गाजर का हलवा।
3: पक्का?
4: पक्का।
3: जल्दी से बताइए कैसे बनाया जाता है ताकि सारे लोग सुन लें और बनाना सीख लें।
4: गाजर को पहले धुल के फिर उसको थोड़ा सा छील के फिर कद्दूकस करके फिर उसको जो है कढ़ाई में घी डाल के फिर उसको थोड़ी सी छोटी इलायची डाल के छौंक देते हैं। फिर उसके बाद उसमें वो डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं। फिर जब वो पक जाती है फिर उसमें निकाल के थोड़ा सा घी डाल के फिर उसमें चीनी डाल के फिर मिला के फिर थोड़ा सा फ्राई कर लेते, बस जल्दी से बन जाता है। थोड़ा सा खोया डाल देते हैं।
3: थोड़ा सा सब काम आपने जितनी भी बात बताई पूरी रेसिपी ये सब थोड़ी थोड़ी सी थी। थोड़ा सा पका लेते हैं, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं।
4: जल्दी में बताया आपने, कहा जल्दी से बताइए।
3: वरना कद्दूकस करते करते बहुत समय बीत जाता।
4: बहुत समय बीत जाता।
3: देखो ये ना वो हमारा जो प्रोग्राम जाता है हमनवा रेनबो पर, उसमें एक रेसिपी जरूर बताई जाती है और एक गाजर का हलवा आपने बता दिया। क्या बात है, आज आपने कौन
4: सी बढ़िया। जल्दी से बताइए तो मैंने जल्दी से बता दिया।
3: हाँ तो मुझे भी तो खाने की जल्दी थी ना कि कितनी जल्दी बन जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया सा जल्दी से आपने हमको बता दिया।
4: सबसे अच्छा गाजर का हलवा लगता है सर्दियों में।
3: तो सर्दी में ही हमें लगता है बनता भी है ये?
4: जी सर सर्दी में ही बनता भी है।
3: पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि जैसे आपने हमसे बात करी तो सर्दी आ जाए तो हम कम से कम ये जल्दी से हलवा खाने पहुंच जाए।
4: सर्दियां भी आने ही वाली हैं।
3: क्या तो यहाँ लोग गर्मी से परेशान है और सोना आप सर्दी की याद दिला रहे हो।
4: अरे सर 4-5 महीने बाद सर्दी भी आ जाएगी।
3: ये तो बिल्कुल सही बात है।
4: तो होना बहुत जरूरी है।
3: हाँ मौसम का अपना एक अलग कल्चर होता है, मौसम की इम्पोर्टेंस होती है, हर मौसम बहुत जरूरी है। तो गर्मी के बाद सर्दी, बरसात सॉरी, और फिर बरसात के बाद सर्दी, हर मौसम एंजॉय करते हैं हम लोग। तो
4: यही थी मौसम है, ये भी होना बहुत जरूरी है। सबका अपना अपना असर है।
3: सुना मौसम बहुत बदल भी गया है इधर, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं आज, तो इसे एक दिन पहले यानी कि कल विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया और उसका उद्देश्य भी यही है कि मेरे ख्याल से कि जो मौसम बदल रहा है और इतना सब कुछ प्रदूषण की वजह से बढ़ रहा है,
4: इसको प्रदूषण की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही आप सब हैं।
3: तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा जो जिम्मेदार हैं तो उस जिम्मेदारी को पूरा भी कर लें और पेड़ लगाएं।
4: हर किसी को एक पेड़ लगाना चाहिए।
3: सोना इसमें एक थोड़ी सी बात में और बात जोड़ना चाहते हैं, एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए किसी एक को, ये तो बात सच है, लेकिन उस पेड़ को देखभाल भी उसी की जिम्मेदारी है।
4: देखभाल भी करनी चाहिए।
3: पेड़ लगाना
4: मतलब इतनी जो है दूर मत लगाइए कि आप उसकी देखभाल ना कर पाए, अपने पास ही लगाइए कहीं।
3: हाँ, और उसको देखते रहें जब तक वो वृक्ष ना बन जाए।
4: जी सर, जब तक वृक्ष ना बन जाए उसकी देखभाल करते हैं।
3: देखभाल एक समय ऐसा आता है जब उनकी देखभाल करना अगर थोड़ा कम भी कर दें तो इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो खुद अपना पानी और
4: फिर
3: खुद
4: वो, हाँ। फिर वो खुद अपना भरण पोषण कर लेते हैं।
3: आज कौन सा सॉन्ग हम आपको सुनवाएं?
4: जी सर आप मुझे उसका सुना दीजिए, हीरो नंबर वन का सोना कितना सोना है।
3: सोना कितना सोना है, वाकई में सोना बिल्कुल सोना है और सोने के भाव भी बहुत बढ़ चुके हैं और सोना से आज बातचीत करी,
4: सोने के भाव तो बहुत बढ़ चुके हैं
3: और सोना से आज बातचीत करके भी हमें बहुत अच्छा लगा।

0: और ये रहा आपकी
1: शराब से बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: कौन बोल रहे हैं हम बताइए?
1: फरहान शराब बोल रहे हैं।
0: आपकी पसंद पर ये रहा आपकी पसंद का गीत है जिसमें नाम भी शामिल है आपका, सोना।
1: अभी तो मैंने सुना।
0: ओके थैंक यू।

0: कहाँ पड़ता है ये?
1: ये राजपुर के पास पड़ता है। हाँ
0: आप हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं?
1: हाँ सर, हम सुनते रहते, काफी दिन से सुन रहे, करीब 15 साल हो गए। 20
0: क्या सुझाव देना चाहते हैं और अच्छे हम प्रोग्राम आप तक पेश कर सकें?
1: नहीं सर, प्रोग्राम तो आप अच्छे से पेश कर रहे हैं सर, और बढ़िया लग जयमाला जो पुराने समय में पहले आउट तो 7 बजे,
0: जी
1: और सब बढ़िया, सब बढ़िया अच्छे से है।
0: किस तरीके के गाने आपको सुनना अच्छे लगते हैं?
1: मीडियम के सर,
0: जैसे कौन सा, अगर हम पूछें आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं तो कौन सा बताएंगे?
1: लैला मजनू को।
0: अरे आप क्या करते हैं?
1: सर हमारी किराना की दुकान है गांव में,
0: किराना की
1: बगल में इंटर कॉलेज है,
0: हाँ
1: और उसी के बगल में हमारी दुकान है, रानी विद्यापीठ इंटर कॉलेज कमलपुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। आपकी पसंद पर हम लैला मजनू फिल्म से ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं खास आपके लिए, और हमारे जो
1: धन्यवाद
0: लिसनर सुन रहे हैं उनके लिए भी आपने हमें कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो
1: धन्यवाद।
0: मच।

0: हेलो कानपुर
1: हेलो कानपुर। नमस्कार सर।
0: जी। नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल?
1: हाल चाल सब सर बढ़िया ना? अच्छे हैं।
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: हम जसवंती यादव बोल रहे कथरी कमलपुर कानपुर दे।

0: के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो कानपुर
2: सर जी, शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ।
1: ओके, आप क्या नाम है आपका?
2: शिवा लोहट सर।
1: शिवा लोहट, आप हमारे रेनबो पर प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी सर सुनते हैं।
1: कैसा लगते हैं आपको ये प्रोग्राम?
2: सर जी बहुत बढ़िया रहते हैं, और जो संडे के दिन कार्यक्रम आता है वो बहुत शाम के वो बहुत बढ़िया लगता है, जिसमें मैम कमेंट पढ़ते हैं।
1: ओके, तो आप अपने कमेंट कभी करते हैं उस पर?
2: नहीं सर, एक्चुअली मैं हम व्हाट्सएप नहीं चलाते।
1: अच्छा, सुनते रहते हैं आप? सुनने में ही बहुत मजा आता है।
2: जी जी जी, पर हम किसी न किसी के माध्यम से करवा देते हैं सर।
1: और आप करते क्या हैं?
2: सर जी एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ, और थोड़े बहुत समाज सेवा के कार्य करता रहता हूँ सर।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं?
2: सर जी एक मूवी रहेगी हेलो, उसमें एक गाना रहेगा दिलेर मेहंदी और सुनिधि चौहान जी की आवाज में, कल्ले बेबी डांस।

0: हेलो कानपुर।
1: तो वही बोल रही हूँ नीलू,
0: क्या हाल चाल है?
1: सर बढ़िया हूँ, गर्मी बहुत हो रही है, दो दिन से तबीयत थोड़ा ढीली है भी, बट आपकी आवाज़ सुनते ही तो मैं एकदम से एनर्जी आ गई मेरी बॉडी में।
0: वाह, यानी कि हम एसी हैं।
1: यस सर, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रेजेंट करते हो आप, जब उस पे आते हुए भारती से
0: जी
1: तो ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ ओहो मेरे भैया है। मुझे ना आपकी
0: अरे ये सब तो आपकी ज़रा नवाजी है साहब, वरना हम कहाँ हैं इस काबिल।
1: अरे नहीं सर, आप तो हमारे लिए भाई भगवान के समान हो, जो हम लोगों का एंटरटेनमेंट कराते रहते हो भाई।
0: अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका घर कहाँ है?
1: मेरा घर रूपपुर टंडेला सफीपुर उन्नाव।
0: ओहो, तो
1: हाँ
0: ये बताइए कि जो शफीपुर है
1: जी,
0: ये आमों के लिए बहुत मशहूर है,
1: हाँ सर,
0: कैसे आम वहाँ पर निकले हुए हैं?
1: सर बस अब जून जून का महीना शुरू हो गया है, बस अब ये है कि बस फसलें बिल्कुल तैयार हैं और अब मंडी लगती है, एक स्टेशन मंडी है, एक संकरी मंडी है, तो और वहीं पर ये मतलब आम जो है उनकी बिक्री होती है, गाड़ियां जो है बाहर के लिए लोड होती रहती है। मैं तो अभी सर नहीं हूँ, बट कल जाने का प्लान है मेरा।
0: आपके यहाँ बाग हैं?
1: जी सर, मेरे यहाँ नहीं है, बस सफीपुर जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ बहुत बाग हैं, वहीं मतलब रास्ते में हम लोग देखते हुए जाते हैं।
0: ये बताइए कि इस वक्त जो है जो आम हैं वो पेड़ों की कंडीशन बताइए, कितने आम आए हुए हैं, ज्यादा हैं कि कम हैं?
1: सर ठीक है, फसल तो ठीक है सर, अभी हम गए थे एक महीना पहले तब तो ठीक मुझे दिख रहे थे, बीच में आंधी आ गई तो हो सकता है थोड़ा।
0: आंधी
1: बहुत
0: तो हर साल आती है तो क्या करा जाए, लेकिन आम तो खाना ही है।
1: बिल्कुल सर, फलों का राजा आम ही तो होता है ना।
0: हाँ, फलों का राजा आम होता है। और एक बात और पूछने कि चलो ठीक है, आम रेडी हैं, आने भी लगे हैं बाजार के अंदर, ये बताइए कि वो जो चुआन कहलाता है जो खुद पक करके गिरता है पेड़ से, वो कब तक आएगा?
1: सर इसी जून में शुरू हो जाते हैं,
0: शुरू हो जाते
1: बट
0: हैं।
1: हाँ अब मुझे लग रहा है कि आई थिंक अब शुरू हो गए, क्योंकि जब सफीपुर जाऊंगा तो वहाँ हम लोग देखते हैं रोड पे, मतलब लोग बेचते हैं तो आई थिंक दिखते भी हैं कि हाँ ये चुआन के आम है। वो जो पाल के होते हैं उनका कलर दूसरा रहता है, जो चुआन के होते हैं ना उनका टेस्ट कुछ अलग रहता है, खाने में मीठे बहुत लगते हैं,
0: अरे तो
1: और
0: वो
1: जो
0: चुआन तो
1: बारीक
0: फिर
1: होते
0: चुआन
1: हैं
0: ही
1: तो
0: होता
1: और
0: है।
1: मजा आता है खाने में सर। हाँ
0: चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और ये भी तो बता दो कि आज कौन सा सॉन्ग हम आपको सुनवाएं।
1: सर एक मिनट,
0: डायरी खोलना पड़ेगी।
1: सर हमने नोट करके रखे है आज।
0: अच्छा ठीक है।
1: एक सॉन्ग सर ये है, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे एक चेहरे पे, ये वाला
0: आशिकी फिल्म का। ओके नीलू, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके।

और इस सॉन्ग के साथ ही अब हेलो कानपुर से अपने रेडियो दोस्त फरहान को दीजिए इजाजत। आज के इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग मिला अवनीश पांडे और प्रवीण शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राहुल पाल। आपसे फिर मुलाकात होगी हेलो कानपुर के किसी दूसरे एपिसोड को लेकर के हम फिर बात करेंगे। और चलते चलते आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए ऐसे संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस संवाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कानपुर देहात में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रबुद्ध वर्ग संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया और संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में आयोजित जनता दरबार में ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। प्रकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसंवाद में अनुप्रिया पटेल के समक्ष ग्रामीण विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रकरण प्रस्तुत हुए और निपुण भारत मिशन के माध्यम से कक्षा 1 से 3 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करने के बाद अब प्रदेश सरकार इसकी पहुंच कक्षा 5 तक बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन विषयों के लिए एक नए अधिगम लक्ष्य और दक्षताएं निर्धारित की जा रही हैं। निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार इन दक्षताओं और लक्ष्यों को 20 जून तक अंतिम रूप देकर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हाल ही में यह कार्ययोजना अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

0: और आइए अब सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है?
1: जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को संतृप्त कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए
0: जी। प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के भीतर 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई?
1: हम निरंतर अलग अलग चीजों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम स्कीम के लाभों को पहुंचा सके। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिजाइंड है, इसके प्रोविजन बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपए की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक ईएमआई होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने आईसी एक्टिविटीज का जागरूकता का प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीजें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा पाए कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। साथ ही हम निरंतर जो हमारे वेंडर्स हैं उनके साथ बैठक करते रहते हैं, बैंक्स के साथ बैठक करते रहते हैं ताकि जो भी समस्याएं विभिन्न स्तरों पे आ रही हैं, अलग अलग जगह पे आ रही हैं, उन समस्याओं का समय से हम समाधान करें।
0: जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है?
1: अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
1: हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है जो कि हमारा पीएम सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने पीएम कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा।
0: आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो लाभान्वित हो।
1: पीएम कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो उसमें से जो यूपी नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है सीवन। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम पीएम कुसुम सीवन कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान
0: जी। शहरों से लेकर गांवों तक सोलर सिटी बनाई जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा की उपलब्धियां किस प्रकार योगदान दे?
1: जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2047 तक उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प है, लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उस भूमिका को निभाने के लिए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं। जैसे कि रूफटॉप सोलर की अगर हम बात करें तो रूफटॉप सोलर में एक फायदा ये भी होता है कि जब हम छतों पर लगा रहे हैं सोलर पैनल तो जैसे यूपी की हम बात करें 1900 मेगावाट सोलर पैनल अभी तक उनकी कैपेसिटी छतों पर लगी घरों पर, तो इसी को अगर हम बड़े सोलर पार्क में लगा रहे होते तो करीब 10,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता हो। तो न केवल हम इसमें

0: सोलर प्रोडक्शन भी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हम लैंड भी बचा रहे हैं जिसको हम फर्दर यूज़ करके या तो हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक अभी नई टेक्नोलॉजी जो है एग्री वोल्टेक्स जिसे बोलते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं पायलट बेसिस पे। तो उससे हमें ये मॉडल डेवलप करने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से किसान अपनी कृषि के साथ साथ में सोलर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारे नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो अभी तक वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा पावर जनरेशन है और पावर कंजम्पशन है, हमारा लक्ष्य है कि उसे हम इस स्तर पर ले जा पाएं जिससे कि भारत को और उत्तर प्रदेश को विकसित बनने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी पूर्ति हम खुद से कर सकें।
1: जी, आपने बताया कि लगातार सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप प्रदेश के उन परिवारों या संस्थानों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अभी तक सोलर को नहीं अपनाया है, उनसे आपकी क्या अपील होगी?
0: मेरी सभी लोगों से ये अपील होगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके तहत भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी दिए जा रहे हैं और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया प्रतिदिन करोड़ों रुपए के वर्थ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लाखों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल कम हो गया है। मेरी अपील होगी कि आप भी जरूर इसको अपनाएं। पिछले कुछ महीनों में हमारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और इससे न केवल आपका खुद का बिजली का बिल बचेगा बल्कि हमारे प्रदेश को देश को विकसित बनाने में भी आप अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाए।
1: जी निश्चित रूप से, जिन लोगों ने अभी तक सौर ऊर्जा की महत्व को नहीं समझा है और सोलर पैनल्स नहीं लगवाए वो इससे प्रभावित होंगे और इसको जरूर अपनाएंगे और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविन्द्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम अवस्थी।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। 5:13 का वक्त हो चुका है और ये वक्त होता है FM टॉप 10 का। कौन से 10 गाने हैं, किस मूड के हैं, ये हम लेकर आते हैं। और आज जो हम 10 गाने लेकर आए हैं वो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और वो 10 गाने हम आपको सुनवाएंगे, 10 से लेकर चलेंगे और पहुंचेंगे नंबर 1 तक। तो 10वां गाना कौन सा है भाई? मातृभूमि मूवी के बारे में आपने सुना? नहीं सुना? सलमान खान साहब की फिल्म आने वाली है और कब आएगी, इसकी रिलीज डेट जो है ना बार बार अनाउंस होती है और बार बार बदल जाती है। अब जो नई रिलीज डेट निकल कर आ रही है वो 14 अगस्त 2026 है, लेकिन पिछले हफ्ते बकरीद के दिन इसका गाना रिलीज किया गया है। और इस गाने में सलमान खान साहब और साथ ही साथ चित्रांगदा बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं, और आपस की जो ट्यूनिंग है वो भी बड़ी अच्छी लग रही है। और इस गाने के बोल हैं मैं हूँ, लिरिक्स लिखे हैं शब्बीर अहमद ने और गाया है इसे श्रेया घोषाल और अयान लाल ने। तो चलिए सुनते हैं गाना नंबर 10।

जी हाँ, ये गाना आपने सुना सॉन्ग नंबर 10, और बात कर लेते हैं सॉन्ग नंबर 9 की। करीब 1.5 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रही हैं कंगना रनौत, और इनकी फिल्म आ रही है भारत भाग्य विधाता, जो रिलीज होगी 12 जून को। उसी फिल्म से ये गाना है नब्ज नब्ज, और ये फिल्म जो है 2008 के जो मुंबई अटैक्स की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है, और इसमें उन बहादुर नर्सों की कहानी दिखाई गई है। जी हाँ, तो इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल ने, और लिरिक्स है मनोज तापड़िया के, म्यूजिक अमन पंत का, और इस गाने में आपको जी हाँ बिल्कुल कंगना रनौत नजर आएंगी। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, सॉन्ग नंबर 9।

भाई अब चलते हैं सॉन्ग नंबर 8 की तरफ, और ये गाना हमने लिया है फिल्म कौन सी, वरुण धवन साहब की फिल्म रिलीज हो चुकी है साहब, कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं, है जवानी तो इश्क होना ही है, ये बात सही है या गलत ये आप पर छोड़ते हैं, लेकिन जो हमने गाना लिया है सॉन्ग नंबर 8, उस गाने को वाओ सॉन्ग के तौर पर जाना जा रहा है और इसके गाने, इस फिल्म के गाने तहलका मचा रहे हैं, तो जल्दी से गाना सुनवा देते हैं। इसे लिखा है रोनी अजनेल ने और हार्डी संधू और किरण बाजवा की आवाज आपको इस गाने में सुनने को मिलेगी। जबरदस्त म्यूजिक और जबरदस्त सॉन्ग सुन रहे हैं आप FM Top 10 में सर्वेश के साथ।

5:24 का वक्त और आ चुके हैं हम सॉन्ग नंबर 7 पर, जो है फिल्म चांद मेरा दिल। और ये गाना काफी टाइम से बहुत ट्रेंड कर रहा है और गाने के बोल हैं खासियत। गाए हैं राघव चैता ने और जोनिता ने, और इस गाने को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, म्यूजिक है सचिन जिगर का। और इस गाने को अगर आप देखेंगे तो आपको लक्ष्य और अनन्या पांडे इस गाने में नजर आएंगे। सुनते रहिए FM Top 10 सर्वेश के साथ।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
5: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

5:30 का वक्त और FM Top 10 सुन रहे हैं आप। सर्वेश जायसवाल आज आपके साथ रहूंगा रात 8 बजे तक। ये इसलिए बता देता हूँ कि आप संडे के दिन सुनते रहिए और हमारे साथ ही रहिए, धड़कन लखनऊ की सुनते रहिए। 6 बजे प्रोग्राम शाम है और 7 बजे हेलो FM बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा। और अभी आप सुन रहे हैं Top 10 गानों का तड़का। 5 गाने हमने आपको सुनवा दिए और अब बारी है सॉन्ग नंबर किसकी, 5 की। और ये गाना है फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, हम भी वापस आते हैं और आपसे मिलते हैं, प्रोग्राम्स अलग हो जाते हैं। ये फिल्म रिलीज होगी 12 जून को और ये जो गाना मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ उस गाने के बोल है मस्कारा, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। और इसमें आपको दिलजीत दोसांझ साहब दिखेंगे, वेदांग रैना और शर्वरी भी दिखेंगे। उस फिल्म को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली साहब ने, म्यूजिक वन एंड ओनली AR रहमान साहब। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को। और इस गाने को गाया किसने है, नीलांजना घोष और वेदांग रैना की भी आवाज आपको इसमें सुनने को मिलेगी।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास,

0: गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे।
1: सलोना सजन है और मैं हूँ
0: महफिल गजल आबशार। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
2: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर
2: Only 100.7 FM Rainbow.
4: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
5: जी हाँ बिल्कुल, बोरियत को करिएगा ऑन और सुनते रहिए FM Rainbow 100.7 FM लखनऊ, धड़कन लखनऊ की। जिसमें चल रहा है प्रोग्राम FM टॉप 10, सर्वेश आज आपके साथ और बैक टू बैक आपको टॉप 10 गाने सुनवा रहा हूँ। और अब जिस गाने की बात करने जा रहा हूँ उस गाने के बोल हैं रई रई रारा रारा। जी हाँ, और ये फिल्म है पेद्दी। ये बड़ी आजकल अच्छी चल रही है सिनेमाघरों में और साउथ सुपरस्टार रामचरण जो है ना, उनका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। और बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ये फिल्म जबरदस्त धमाल मचाए हुए है और इसकी वजह से जो हमारे वरुण धवन साहब है ना, उनकी फिल्म जो है ना है जवानी तो इश्क होना ही है, वो थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन अभी बात करते हैं इस गाने की, रई रई रारा रारा। और ये गाना लिखा है रकीब आलम साहब ने और म्यूजिक ए आर रहमान साहब का है और गाया है नक्श अजीज साहब ने। सुनते हैं ये गाना, खूबसूरत सा रई रई रारा रारा। और थिरकने का मन है, थोड़ा सा झूमने का मन है तो बिल्कुल आप झूम भी सकते हैं।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
1: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
0: ओनली 100.7 FM रेनबो।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
5: समझे जनाब अली।
4: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
6: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
3: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
6: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
3: धड़कन लखनऊ की
6: 100.7 FM रेनबो।
7: हेलो FM, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
8: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
9: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
7: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
10: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
11: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
10: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
12: सुबह की खूबसूरत शुरुआत, सुकून से भरा दोपहर, शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
13: जगह,
12: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
13: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
12: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो, 100.7 MHz FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
14: बिल्कुल धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप। FM टॉप 10 में अब जो गाने में प्ले करूंगा ना, वो टॉप 3 सॉन्ग्स होंगे, और अगर अगर आपकी डिमांड हुई तो और भी गाने सुनवा सकता हूं। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है गाना नंबर 3। वो गाना आपको याद है, वेलकम मूवी का एक ऊंचा लंबा कद। उस गाने को थोड़ा सा कहते ना रिक्रिएट किया गया है, और वेलकम टू द जंगल ये मूवी जो है ना आने वाली है, और इस मूवी में कौन होगा, वन एंड ओनली अक्षय कुमार साहब तो होंगे ही होंगे। 26 जून को ये मूवी आएगी। उस दौर में आनंद राज आनंद साहब ने इस गाने को एक आइकॉनिक सॉन्ग बना दिया था, और इसके लिरिक्स थोड़े बहुत बदले गए हैं, जिसे लिखा है मेघा गिल ने। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडेज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता फरीदा जलाल, बहुत सारे लंबे लंबे नाम इसमें लिखे हुए हैं। चलिए बढ़िया सा गाना सुना दूं आपको इसी का, जो नया वाला है, ऊंचा लंबा कद फॉरएवर इसको नाम दिया गया है। तो जल्दी से सुनते हैं इस गाने को और उसके बाद जो दो सॉन्ग्स बचेंगे वो भी सुनवाऊंगा आपको, लेकिन अभी का जो वक्त है इस गाने को सुनने का है, ऊंचा लंबा कद। सुनेंगे ना, ऊंचा लंबा कद है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मजा तो तब है कि आप इस गाने को सुन के डांस करें।

0: We miss you, Katrina.
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: तो 10 गानों का सफर जो है आ चुका है सॉन्ग नंबर 2 तक। 5:51 का वक्त हो चुका है और जल्दी से बात कर लेते हैं सॉन्ग नंबर 2 की। जी हाँ, आपका इंतजार मैं समझ सकता हूँ कि टॉप पोजीशन पे कौन सा गाना है। तो अभी बात करते हैं सॉन्ग नंबर 2 की, माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2, जो रिलीज होगी 19 जून को। और इसमें आपको दिखेंगे कीर्ति सेनन, शाहिद कपूर। फिलहाल इस गाने की बात करें, जिस गाने के बोल हैं माशूका, इस गाने को गाया है महमूद राघव ने। और इस फिल्म में या इस गाने की अगर अभी हम बात करें तो इस गाने में म्यूजिक दिया है प्रीतम दा ने। सुने ना, बहुत टाइम बाद मुझे लग रहा है प्रीतम दा का संगीत सुनने को मिलेगा। खैर, गाना बहुत अच्छा है और बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। जल्दी से सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे सॉन्ग नंबर 1 की तरफ। फिलहाल के लिए माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2।

और भाई घड़ी में 5:56 का वक्त हो चुका है और अब वक्त आ चुका है टॉप सॉन्ग को सुनवाने का। याद है ना वो पुराना गाना चुनरी चुनरी आ जाना छोड़ू तेरी चुनरी सनम, उसी गाने को दोबारा लेकर आ गए हैं। है जवानी तो इश्क होना ये फिल्म में रिक्रिएशन है। जी हाँ, वरुण धवन साहब और उनके फादर डेविड धवन साहब की ये फिल्म अभी चल रही है सिनेमा हॉल्स में और जल्दी से गाना सुन लेते हैं चुनरी चुनरी।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता न होने पाए। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में कहा कि जन समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए ऐसे संवाद बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस संवाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों, प्रबुद्धजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व किसान, गरीब, महिला और युवाओं को न्याय देने वाला नेतृत्व है। अठावले ने दोहराया कि सरकार पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के प्रयासों से पूर्वांचल के महत्वपूर्ण मऊ बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण और 4 लेन निर्माण परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये उपलब्धि पूर्वांचल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मंत्री शर्मा ने इस परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य को तत्काल प्रारंभ कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के 4 लेन बनने से यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी, यात्रा समय में कमी आएगी तथा सड़क सुरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम अवध।

जी अखड़ी में 6 बज चुके हैं, 6:04 हो चुके हैं और शाम में बहुत प्रोग्राम बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है। और जल्दी से आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली की ओर से आज नाट्य प्रस्तुति की जाएगी। आखिरी विरासत नाटक का नाम है और इसकी प्रस्तुति शाम 7 बजे से कला मंडपम कैसरबाग लखनऊ में आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो भाई घड़ी में 6 बज चुके हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी से अपना प्लान कर लीजिए क्योंकि ये नाटक जो है 7 बजे शुरू हो जाएगा। और खूबसूरत सा गाना दे रहा हूँ आपको, इस पर आप डांस भी कर सकते हैं। अवध की शाम है, हालांकि गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन कोई बात नहीं, शाम होते होते थोड़ी सी राहत तो हो ही जाती है। बहुत सारी बातें हैं लखनऊ शहर के बारे में आपको बताने के लिए और आपके पास भी कुछ खास हो तो बिल्कुल हमें बता सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ पर। फिलहाल सुनते रहिए शाम अवध सर्वेश के साथ।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हेलो FM, जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर।
4: हेलो, आप FM रेनबो से बोल रहे हैं?
2: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं।
5: अरे क्या बोल भैया,
2: अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।
6: सुबह 10 मिनट का वक्त और बीच बीच में आंधी बारिश का दौर चालू होता है, और लेकिन एक बार फिर से गर्मी अपने पूरे चरम पर आ चुकी है। भाई दिन में बहुत गर्म होने लगा है एक बार फिर से, और अगले 4-5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो अपना पूरा ख्याल रखें, अपने को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, पना पीते रहें, और बेल का शरबत मिल जाए तो वो भी पीते रहें। कहने का मतलब यह है कि पानी की कमी शरीर में बिल्कुल ना हो। और खूबसूरत से गाने FM रेनबो पर आप सुनते रहें। सुन रहे हैं आप शाम अवध सर्वेश के साथ। बहुत सारी बातें और भी सुनाऊंगा, लेकिन एक गाना आपके लिए लगा दिया है मैंने, सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे।

0: की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।